0: नमः। नमस्कार दोस्तों, दिव्य दर्शन का एक और बहुत ही पवित्र और बहुत ही नया एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं। आज हमारे साथ केवीएस रमन साहब हैं। केवीएस साहब पहले भी हमारे दिव्य दर्शन में शरीक हो चुके हैं, पार्टिसिपेट कर चुके हैं। उन्होंने हमें बताया था आध्यात्म के बारे में, रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में। आज हम फिर रमन साहब का स्वागत करते हैं और कुछ और दिव्य दर्शन के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। रमन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। तो हमारे सुनने वालों के समक्ष आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में?
1: नमस्कार समीर भाई साहब, मैं आपको और आपकी पूरे टीम मेंबर्स को और आपका जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं उन सबको मैं तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे दोबारा आपने एक शिरकत करने का मौका दिया है, और सुनने वालों को मेरी ओर से प्रणाम।
0: बहुत बहुत

0: और जो सच है, तो जाहिर से बात है उसमें त्रुटि की या कोई डिफेक्ट की या फिर कोई गलती की गुंजाइश है ही नहीं। तो क्या ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म ये एक ही चीज है या इनमें कुछ डिफरेंस है?
1: मेरे विचार से कि हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। धर्म धर्म जो है वो एक मनुष्य का अपना बनाया हुआ एक एक चीज है जो अपने रोजमर्रा इसमें हम काम चलाने के लिए हम उसको धर्म एक, एक, एक सही रास्ते पे चलने का एक हम अपने अपने आप से एक बनाई हुई चीज है। और हर आदमी अपने अपने परिस्थिति और अपने अपने बर्थ और जहां वो रहता उसके हिसाब से और कुछ चीजें वो फॉलो करता वो धर्म है। मगर सनातन धर्म अगर बोले तो ये मात्र एक मनुष्य के लिए नहीं है, ये सारे सजीव और निर्जीव पर भी ये लागू होता है।

0: नियम कानून कह लीजिए, प्रोटोकॉल कह लीजिए, फॉर्मेट कह लीजिए, या एक व्यवस्था कह लीजिए, अगर बड़ी सी प्यारी सी लैंग्वेज में कहें तो इस प्रकृति की जो व्यवस्था है, इस प्रकृति की जो व्यवस्था है वो है सनातन। ऐसा मुझे लगता है रमन सर आप कह रहे हैं, करेक्ट? ओके, अमेजिंग। फिर अगर सनातन शब्द को, जैसे एक वर्ड हुआ सनातन, उसको अगर हम थोड़ा सा और बेहतर समझने की कोशिश करें, यहां तो पहले हमने ये समझा कि सनातन एक व्यवस्था है जो पूरी प्रकृति को चलाती है या पूरी प्रकृति पर लागू है। अब हम सनातन को और समझें, इस वर्ड का, इस शब्द का मीनिंग क्या होगा?
1: सनातन धर्म एक्चुअली, ये जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, एक संस्कृत शब्द है
0: जी।
1: इस शब्द के कई मायने, कई अर्थ हैं, जैसे फंडामेंटल ज्ञान, आई मीन तात्विक ज्ञान, स्थायी विश्वास, और एक सम्माननीय व्यवस्था। इन सबको हम सनातन के एक भिन्न भिन्न, आई मीन डिफरेंट डिफरेंट मतलब निकलते हैं। लेकिन जनरली सामान्यतः धर्म को हम दो प्रकार के में बांटते हैं, जो एक है सनातन धर्म, एक वर्णाश्रम धर्म
0: जी।
1: इन दोनों में सनातन धर्म सभी के लिए सामान्य रूप से एक आध्यात्मिक पहचान, एक स्पिरिचुअल पहचान देता है, स्पिरिचुअल पहचान देता है। वेरस सनात, एक अगर वर्णाश्रम की बात करें तो वो जीवन के परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित कर्तव्य है, सभी जीवों के अलग अलग एक उसमें डेफिनेशन उसमें आ जाता है। मगर सनातन में जैसे मेन अगर की अगर बात करें तो सभी जीवों के साथ अगर हम प्रेम दिखाना, सेवा भाव, पियटी और अच्छे कर्मों का पालन करना, ये इन इन एक आप विस्तार रूप से अगर बोले तो इसको सनातन शब्द का ये मतलब अर्थ निकलता है। जी जी,
0: करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया, और बहुत ही साधारण सा भाषा में। तो जाहिर से बात है, इस शब्द को अगर हम लोग धर्म के साथ जोड़ते हैं तो फिर ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर या व्यवस्था बन के खड़ी होती है। बहुत सुंदर रमन जी, सनातन धर्म, अब हम लोग ने सनातन को समझा, धर्म को समझा और उनको मिलाया, अब इसमें कर्म और धर्म को, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इस व्यवस्था में? चलिए, धर्म को तो हमने फिर भी समझा था, अभी कर्म के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए ना कि इस व्यवस्था में कर्म की क्या महत्वपूर्ण है, कर्म की क्या इंपॉर्टेंस है?
1: वैसे कर्म धर्म दोनों ही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं सनातन धर्म में, दोनों को ही फंडामेंटल लॉ कहा जा सकता है, जो मनुष्य के आध्यात्मिक प्रगति, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए और जीवन के परिणामों को गवन करता है, ये दोनों कर्म और धर्म, धर्म और कर्म दोनों करता है। कर्म का जो सिद्धांत है, वो कर्म चाहे वो विचार से हो या शब्दों से हो या कार्य से हो, वो कोई ना कोई परिणाम देता है, व्हाट एवर यू डू उसका वो एक रिएक्शन देता है या उसका एक रेसिप्रोकेशन उसका होता है। कर्म का जो भी काम करें हम, चाहे हम कभी कभी हम विचार से भी अगर कुछ करते हैं, जैसे किसी के साथ क्रोध होना भी एक किसी विचार ही एक टाइप का विचार है, दैट ऑल्सो उसका एक परिणाम यह है कि वी गेट इनटू, उसके बाद हम खुद बाद में सोचते हैं कि हमने नहीं करना चाहिए था, या हमारे टेंशन बढ़ जाता है, ये सारी चीजें, हर चीज का एक, हर कर्म का एक परिणाम होता है ये। और इसलिए सनातन धर्म में, इसलिए क्योंकि कर्म, हम वी कीप ऑन डूइंग कर्म, ये अतीत और फ्यूचर
0: को,
1: हाँ, भूत और भविष्य, इनफैक्ट ये अतीत और प्रेजेंट को का जो एक इसका जो रिजल्ट जो देता है वो हम

0: में वर्तमान में इसका दिखाई देता है, वर्तमान हमारा ये निर्धारित करता है। तो व्हाट वी कॉल इन हिंदी में जैसा एक सेइंग है, जो जैसे बोएगा वो वैसे काटेगा या पाएगा। तो इसीलिए ये, क्योंकि कर्म किसी न किसी का परिणाम देता है, तो हर व्यक्ति को ये हमें सिखाता है कि सनातन धर्म सिखाता है कि वी हैव टू बी नो, अपने जो भी कर्म करें वो अच्छा कर्म करें, क्योंकि जो जितना अपने उस हिसाब से हमको कहने, हम तो ये कहा जाता है कि भाई आपके पुनर्जन्म में ऐसा होता है ऐसा होगा, लेकिन कभी कभी आपको तुरंत भी उसका एक परिणाम आपको मिल जाता है। तो इन सब के वजह से, क्योंकि कर्म से परिणाम मिलता है, तो हमारे कर्म जो है हमेशा एक अच्छा एक कर्म होना चाहिए।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही बात है। और जैसा आपने बहुत प्यार से बताया, उसी चीज को मैं एक बार बहुत छोटे से मैं सिंपल रिपीट करना चाहता हूँ मेरे अपने फायदे के लिए, कि मैं उसको याद रख सकूं, कि हम जैसे काम करते हैं तो कई बार तो उनके फल जो होते हैं वो हमें थोड़ा सा भविष्य में मिलते हैं, या कई बार तो बिल्कुल वर्तमान में ही मिल जाते हैं। तो सामने के सामने है साहब, जो काटा जो आपने बोया वही काटा, तो जब ये सामने दिखता है तो उसको मानने में फिर परेशानी ही क्या, आइए ना इसको मान लेते हैं। बहुत सुंदर रमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं यहाँ पर, एक प्यारा सा भजन सुनते हैं और फिर मैं वापस आपके सामने हाजिर होता हूँ।

0: बहुत ही सुंदर। रमन जी, सनातन धर्म के में पुनर्जन्म की अवधारणा को भी कहा गया है कि मतलब हम रीबर्थ की बात करें, दोबारा जन्म लेते हैं सनातन धर्म में, तो उसको आप कैसे समझाएंगे? सनातन धर्म इस चीज को कैसे समझाता है?
1: सनातन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। सनातन धर्म या पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन या इसी विश्वास पर आधारित है अपना सनातन धर्म। और जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, इवन भागवत गीता में कभी निकल करके आता है कि आत्मा अजर है अमर है चास्ति, आत्मा अजर है और अमर है, और वह केवल एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता। तो इट इज द फॉर्म बिलीफ ऑफ सनातन धर्म। से भागवत गीता के सेकंड चैप्टर के 20th श्लोक में है
0: जी,
1: कहा है कि न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भवित्वा न भूय है अजो नित्यः शाश्वतोयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
0: सुंदर।
1: आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। इसका मैं आपको थोड़ा सा सारांश बता रहा हूं। और ना ही एक बार अस्तित्व में आने के बाद वो कभी समाप्त होती है। आत्मा जन्म रहित शाश्वत अमर और अजर है। शरीर के नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होती है। दिस इज दी कंसेप्ट और दिस इज दी बिलीफ ऑफ सनातन धर्म।
0: जी,
1: यही सनातन धर्म माना गया है कि पुनर्जन्म में उनका इसका सनातन धर्म का विश्वास है
0: जी,
1: ऐसा ही समझाया गया है।
0: बहुत सुंदर, अमेजिंग। सो जाहिर सी बात है, बहुत क्लियरली हमें आज ये बहुत साधारण शब्दों में ये चीज समझ में आ रही है कि पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, उसको सनातन में कैसे समझाया गया है। बिल्कुल ठीक। तो बस एक छोटा सा भजन यहां सुने और फिर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, वो पूछते हैं रमन जी से।

0: और अमन जी, आपने पुनर्जन्म के बारे में हमें बताया कि सनातन धर्म इसको कैसे समझाता है। अब सनातन धर्म मोक्ष के बारे में क्या कहता है, उसके पाने का रास्ता क्या बताता है, थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालिए।
1: सनातन धर्म में मोक्ष मानव जीवन का एक परम लक्ष्य है, मेन जो हमारा फाइनल अल्टीमेट, हाँ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज मोक्ष एज पर सनातन धर्म। जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म का निरंतर चक्र जो है ये हम लोग सब समझते हैं, जानते हैं, सनातन धर्म मानता है और क्योंकि हम लोग उसको फॉलो करते हैं तो हम भी इस चीज को मानते हैं कि हर प्राणी का जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म रिसाइकल होता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है, निरंतर ये चक्र चलता रहता है। इस दुख, इसको अगर दुख मानते हैं, इसको इफ वी कैन समझते हैं कि ये इस तरह बार बार जन्म लेना, कष्ट सहना,
0: पेनफुल होता है, फिर से मर गए, फिर पेनफुल प्रोसेस, पेनफुल फॉर
1: जी। तो इससे मुक्ति इससे मुक्ति पाना ही जो है हमारा मेन लक्ष्य जो है वो सनातन धर्म में बताता है। जब व्यक्ति का आत्मा अपने वास्तविक रूप से पहचान लेती है और उसके बाद जब व्हेन इट रीचेस द अल्टीमेट, दैट इज व्हाट इज मोक्ष, एंड वी ऑल उसी के लिए हम स्ट्राइव करते हैं और कोशिश करते हैं। जैसे हम कई मार्ग भी इसके लिए चुनते हैं, जैसे भक्ति मार्ग है, नॉलेज के थ्रू होता है, कर्म के थ्रू होता है और मेडिटेशन, ये कुछ कुछ कुछ कुछ एक सनातन धर्म में बताए गए हैं, कुछ मार्ग हैं, कुछ रास्ते हैं, तो इनकी कोशिश को हम फॉलो करके हम फाइनली मोक्ष की ओर जाने की हम कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट वी कीप स्ट्राइविंग और जीवन मुक्त लिबरेट होने की कोशिश करते हैं ये सब चीजें करके। ये है इसका सम्मान।
0: जी, आपने बिल्कुल ठीक कह दिया। बहुत ही आराम से हमें तीन रास्ते तो सामने दिख ही रहे हैं, कर्म का रास्ता है, योग का रास्ता है, मेडिटेशन का रास्ता है, धर्म। तो जाहिर से बात है इनमें से किसी को भी अपनाकर हम मोक्ष की तरफ चल सकते हैं। अब वो हमारी विलक्षणता पर, हमारी शिद्दत पर, हमारी कॉन्सेंट्रेशन पर, हमारी चाहत पर निर्भर करेगा कि हम कितनी तेजी से मोक्ष की तरफ जाएं। बहुत सुंदर। अब अगर आज के समय की बात करें, देखिए सनातन तो किसी समय से था, किसी समय तक रहेगा, चलता ही जा रहा है, लेकिन अगर हम आज की बात करें जब हम और आप हैं, तो इस धर्म को, सनातन धर्म को कोई भी एक साधारण व्यक्ति कैसे समझे, और अगर उसे समझ, वैसे तो आज के प्रोग्राम में आप ही की बात सुनकर बहुत सारे लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी और वो उसको अपनाना चाहे, तो क्या करें हम?
1: क्या करें, इट्स बेसिकली बहुत ही एक ट्रिकी सवाल है
0: जी।
1: क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू साउंड नो नेगेटिव, इट्स क्वाइट, कुछ कोशिश ही करके ही इसको चेंज किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है आज के दौर पे, ये मुझे लगता है। आई विश आई एम रॉन्ग। हम इसको सनातन धर्म को समझा अपनाया कैसे जा सकता है, इसके लिए हमें वो मूल ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है, करना पड़ेगा, जैसे उपनिषद है, रामायण है, और ऐसे चीजों का हमको अध्ययन करना पड़ेगा। लोगों के पास इसके लिए कितना टाइम है आज, और उसको अच्छी तरह समझाने वाला कौन है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन अगर मनुष्य अगर कोई चीज करने की ठान लेता है तो वो करता है, करना कर देता है
0: जी।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि हम कम से कम अपना कर्तव्य जो है रोजमर्रा जिंदगी का, जो हमारा जो कर्तव्य है, उसी को हम ईमानदारी से पालन करें। वो दैट में भी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बीइंग सनातनी। बाकी हम लोग तो योग और मेडिटेशन तो आजकल जगह जगह सब लोग इंटरेस्टेड भी हैं और करते भी हैं, हाँ तो हो भी रहा है, इसका भी एक ये भी एक माध्यम है। और आत्म रियलाइजेशन इन सब चीजों से आता भी है, एक सेल्फ रियलाइजेशन इन सब चीजों से आता है, योग और मेडिटेशन के द्वारा। छोटी छोटी चीजें जैसे दूसरों का हर्ट नहीं करना, अहिंसा, दया, क्षमा, ईमानदारी, दीज आर ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच कैन

0: है सनातन होने के एक और हमको शायद ले जा सकता, ये एमिनट्स में स्मॉल हम्बल सोच।
1: बिल्कुल सही है सर। बहुत ज्यादा गूढ़, जैसे आपने कहा उपनिषद ग्रंथ वगैरह का हम अध्ययन करें, पहली बात तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा इंटरेस्ट की बात भी हो जाती है, फिर वो बहुत गूढ़ ग्रंथ हैं, उनको समझाने वाला भी कोई उचित गुरु हो जो हमें ढंग से समझा सके, उसके बाद आज के टाइम में इंटरेस्ट भाई वक्त भी नहीं है, तब भी कई परेशानियों से जूझते हुए फ्रस्ट्रेट होकर अचानक से घूम जाएं और हमें लगे कि नहीं चलिए अब सनातन को अपनाया जाए क्योंकि शांति प्राप्त करनी है, तब ये सब चीज़ें जो बहुत सरल भाषा में आपने बताई है वो हमें अपनानी चाहिए, वही होगा। और अगला जो मेरे दिमाग में कौंध रहा था सवाल वो ये था कि आज की जो नई जनरेशन है उसको भला कैसे सनातन धर्म से जोड़ दिया जाए, तो मुझे लगता है यही मेथड्स जो आपने बोले हैं। जी
0: नहीं, यही है जो, क्योंकि ये कुछ चीजें जो है बहुत सरल हैं, हमें क्योंकि झूठ नहीं बोलना ये तो बचपन से सिखाया जाता है, सत्य बोलना बचपन से सिखाया जाता है, दूसरे किसी प्राणी को तंग नहीं करना ये भी सिखाया जाता है, घरों में सिखाया जाता है, स्कूलों में सिखाया जाता है, ये दीस आर ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो हम विच हैज बिकम दी पार्ट ऑफ अवर लाइफ, और इनको सही मायने में उसको और अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, उसके बारे में और जानकारी लेना और थोड़ा इसका वाइडन, इसको थोड़ा सा हरिजन को थोड़ा सा वाइडन करना, दीस आर ऑल द स्मॉल थिंग्स टुवर्ड्स स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स नो इसके ओर जाने का, एक सनातन के ओर जाने का एक स्मॉल चीज है।
1: सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, मुझे इस चीज पे ध्यान आता है, कई बार बचपन से हम सुनते आए कि गायत्री मंत्र इसीलिए बनाया गया था कि साहब बहुत बड़ी बड़ी बड़े मंत्रों का उच्चारण आप ना कर सकें, तो चलिए एक सिंपल सा गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए, आपको वही लाभ मिल जाएगा जो बहुत सारे मंत्रों को पढ़ने से मिलेगा, तो उसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि साहब और कुछ नहीं सही तो गायत्री मंत्र ही पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव तो आ ही जाएगा, पवित्र तो आप इससे भी होंगे और पवित्र आप उससे भी होंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, तो ये छोटे छोटे मेथड्स, प्रोसीजर्स, व्यवस्थाएं अपनाने से भी हम सनातन धर्म को पा सकते हैं। जाहिर से बात है हम ये सारी बातचीत इसलिए कर रहे हैं, सनातन धर्म को पाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि हम शांत होना चाहते हैं, साफ सुथरे पवित्र और एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपनी जिंदगी को जिएं, शांति से जिएं, अच्छी तरीके से जिएं, मतलब खुश रहें, परेशानी ना हो। अब आपने जैसे सनातन धर्म को समझा, आपने सनातन धर्म को अपनाया, उसकी जो भी आप प्रैक्टिसेस जो आपने हमें बताई वो आपने की, उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, कुछ आपको फील हुआ कि मेरी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, थोड़ा सा वो शेयर कीजिए ना हमारे साथ।
0: हाँ बिल्कुल, इसके हर चीज का जैसे पहले भी होता है कि हर कर्म का एक रिएक्शन होता है, एक उसका एक परिणाम होता है, तो ये जैसे स्मॉल छोटी छोटी चीजें जो हम अपने डेली रूटीन में भी जो करते हैं उसको आप, जैसे मैंने पहले एक क्रोध का बताया था कि जब हम क्रोध भी करते हैं तो उसका एक कभी कभी हमको खुद को बाद में खराब लगता है कि मैंने ऐसा ही रिएक्शन क्यों दिया, ऐसा क्यों किया, और उसी तरह जो हम कभी अच्छी चीजें करते हैं तो उससे भी हमको सुकून मिलता है, हम कुछ ना एक छोटे से किसी रास्ते में जाते हुए किसी प्राणी को जस्ट हेल्प ही कर दिया, उसको मतलब किसी से बचा दिया, कोई बच्चे पत्थर मार रहे हैं तो उस, तो ये एक दूसरे प्राणी की ओर जो हमारे एक वो दर्शाता है, एक लव दर्शाता है, और वो भी करके आते हैं तो हम बाद में लगता है कि आज हमने ये किया, तो ये सब चीजें उसी तरह जैसे हमको शुरू से एक चीज बताया गया है, मेरी माँ कहती थी कि अगर किसी को उपकार ना करें कम से कम उसको अपकार ना, किसी को आप अगर उपकार नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपके वजह से किसी को एक हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, और हम उस ऑफिस में जब रहते थे हम कोशिश यही करते थे कि हमारी वजह से किसी का मन ना दुखे, हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो, ये हम बहुत इस चीज को हम उसके ऊपर ध्यान रखते थे। ये और इससे जो है स्लोली आपका जो एक पॉजिटिव ऑरा आपके समक्ष वो रहने लगता है। और अगला भी अगर आप जैसे आप व्यवहार करते हैं वैसा ही दूसरा भी आपके साथ व्यवहार करने लगता है, उसके ऊपर भी उसका एक असर पड़ता है। ये एक दूसरे के साथ इस तरह असर पड़ता है। हमें इस ये छोटी छोटी चीजें फॉलो करने में ऐसा असर हमको हमने भी हमें भी ज्ञात हुआ और दूसरे भी इस चीज को हमारी वजह से उनके ऊपर भी इसका एक इन्फ्लुएंस हमने महसूस किया कई बार।
1: ओके ऑफ कोर्स, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे जैसा हम महसूस करते हैं, कोशिश करते हैं, और उसके परिणाम भी हमें हाथों हाथ मिलने भी लगते हैं और बहुत सारी चीजें महसूस होती हैं। बड़ी प्यारी बात कही। तो लीजिए थोड़ा सा एक पॉज लेते हैं, एक प्यारे से भजन के लिए रुकते हैं, फिर वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर रमन जी, किसी व्यक्ति को सनातन धर्म को और ज्यादा गहराई में समझना हो तो कौन कौन से ग्रंथ या कौन से लिटरेचर आप सजेस्ट करोगे कि हम पढ़ें, अध्ययन करें, कुछ करें, किस तरीके की किताबें या ग्रंथ?
1: बस ग्रंथ इसमें तो जो मेन चीज आपको बताने वाली जो चीजें हैं वो हैं वही मूल ग्रंथ जो है, हमारे जो मूल ग्रंथ हैं वेद है, भागवत गीता है, उपनिषद है, इवन रामायण और महाभारत से भी हमको कई इसके और इसके बारे में हमको ज्ञात हो सकता है, होता है। लेकिन कई कई किताबें ऐसे हैं जो अगर आप खोजें तो गोरखपुर की गीता प्रेस वालों का यहाँ से कई चीजों का प्रकाशित उनका है, तो वो भी जो है आजकल सर्फिंग करने में आपको, क्योंकि शुरुआत एक बेबी स्टेप से ही हमको करना पड़ता है। इमीडिएटली हम इमीडिएटली हम उपनिषद या तो हमें क्या भागवत या किसी और चीजों की कोशिश करेंगे तो हम आधे में टाइगर्स हो जाएंगे, आधे तक जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं। हमें वो चीज जब चीज समझ में नहीं आएगा तो हम मन इधर उधर भटकने लगता है। तो स्मॉल छोटे पैमाने से शुरू करें, ये सब चीजें हमको सर्फिंग करने से मिल जाएगा। गीता प्लस गोरखपुर वालों के बहुत सारे वो हैं, और विवेकानंद जी का जो लेख है वो पढ़ सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें ही हैं, हम अदरवाइज बुक अगर बोलें तो हम मूल ग्रंथ जो है उसी से हमको गूढ़ इसका एक ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं इस बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ साहब। गीता प्रेस गोरखपुर एक ऐसा उपक्रम है जो किसी जमाने से चला आ रहा है। भारत की संस्कृति को उसने अभी भी पकड़ के रखा है। मैं हिंदू धर्म या सनातन धर्म या किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने भारतीय संस्कृति की बात की है। अब उसमें सभी लोग आते हैं और के उसके सारे जितने पुराने गूढ़ लिटरेचर हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उनको अभी तक उन्होंने संजाया है, संजोया है, बचाया है। मुझे इस बात की सचमुच बहुत खुशी है। मेरे पास उनकी बहुत सारी किताबें, पुस्तकें, बुक्स मौजूद हैं, खास करके पुराण, करीब करीब सारे पुराण मेरे उन्हीं के यहाँ के प्रिंटेड मौजूद हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि आप गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर का भी बहुत बड़ा सहारा ले सकते हैं सनातन धर्म को समझने के लिए। बाकी जैसा विवेकानंद जी की कहा, लेखनी की बात कही रमन साहब ने, तो वो भी है, उपनिषद वगैरह भी है, महाभारत रामायण भी बताया रमन साहब ने, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद रमन साहब। एक बहुत रिलेटिवली बहुत ज़्यादा सफाई साफ तौर पर हमें समझ में आया है कि सनातन धर्म दरअसल क्या चीज़ है, उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, किस तरीके से वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है और कैसे हम उसे अपना सकते हैं। बहुत बड़ा आयाम आज खुला है हमारे सामने। जाहिर सी बात है हमें थोड़ा और सीखने की आवश्यकता तो है, फिर भी इसकी शुरुआत करने के लिए, प्रारंभ में हमारा हाथ पकड़कर चलाने के लिए रमन साहब आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। आप आए, पधारे, हमारे इस प्रोग्राम में अपनी बातें रखी, बहुत अच्छा लगा, आपका आभार है सर।
1: धन्यवाद समीर जी, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इन विषयों के बारे में कुछ आपस में बांटू, आपस में कहूँ, मुझे इस लायक समझा। मैं आपको और एस एन रेडियो के जितने भी हमारे और साथी हैं, आपके और साथी हैं, उन सब को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो सुनने वाले जो हमारे जो मित्र हैं उनको भी मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो हम लोग सब व्हाट्सएप में है, नंबर है, आप बेझिझक हमें बताइए कि हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद समीर जी।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SM रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। चैट GPT पे क्या सर्च करें और क्या नहीं। आज की कहानी थोड़ी हटके है, थोड़ी करंट है, और ऑनेस्टली बहुत जरूरी है। कल शाम शायद आप में से कई लोगों ने देखा होगा एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन, जहां बात हो रही थी AI की, चैट GPT की, और हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं। और तब मुझे लगा कि ये बात सिर्फ डिस्कशन तक नहीं रहनी चाहिए, इसे हम सबको समझना चाहिए। चैट GPT पर क्या सर्च करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आज के टाइम में चैट GPT सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक दोस्त जैसा है, एक गाइड जैसा है, और एक टीचर जैसा है। लेकिन हर दोस्त की तरह इसे यूज करने का भी एक तरीका होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या करें, यानी डूज। पहला, क्लियर सवाल पूछें। दोस्तों, अगर आप वेग सवाल पूछेंगे, जैसे करियर में क्या करूं, तो जवाब भी वेग मिलेगा। लेकिन अगर आप पूछते हैं मैं लॉ बैकग्राउंड से हूं, मीडिया में आना चाहता हूं, क्या ऑप्शंस हैं, तो जवाब भी प्रिसाइस मिलेगा। सीख क्या है? जितना क्लियर सवाल उतना क्लियर जवाब। नंबर टू, सीखने के लिए यूज कीजिए। चैट GPT एक शॉर्टकट मशीन नहीं है, ये एक लर्निंग पार्टनर है। अगर आप सिर्फ ये कहेंगे आंसर लिख दो, तो आप लिख तो देंगे लेकिन समझ कभी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप पूछते हैं ये कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, तो आप सच में सीखेंगे। और दोस्तों, नॉलेज ही असली पावर है। नंबर थ्री, क्रिएटिव काम में यूज कीजिए। स्क्रिप्ट्स में, कैप्शंस में, आइडियाज में, चैट GPT सब में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। लेकिन एक बात याद रखिए, उसे कॉपी पेस्ट मत कीजिए, उसे अपना बनाइए, अपनी आवाज दीजिए, अपना टच दीजिए, तभी वो चीज असली लगती है और आपकी लगती है। नंबर फोर, फैक्ट चेक जरूर करें। दोस्तों, चैट GPT स्मार्ट है लेकिन परफेक्ट नहीं, कभी कभी गलतियां हो सकती हैं। इसलिए अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो डबल चेक जरूर करें, स्पेशली न्यूज, लीगल, मेडिकल, फाइनेंशियल चीजों के लिए। नंबर फाइव, रिस्पेक्ट के साथ यूज करें। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जिस तरह हम इंसान से बात करते हैं वैसे ही AI से भी करनी चाहिए। क्लियर, पोलाइट और रिस्पेक्टफुल, क्योंकि जब आप सही तरीके से बात करेंगे तो जवाब भी बेटर मिलेगा। अब बात करते हैं क्या ना करें, यानी कि डोंट्स। नंबर वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्सनल डेटा शेयर ना करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी अपना पासवर्ड, अपना OTP, अपनी बैंक डिटेल्स या कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चैट GPT पर शेयर ना करें। टेक्नोलॉजी पावरफुल है, लेकिन हमें समझदार बनना पड़ेगा। नंबर टू, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करें। अगर चैट GPT ने कुछ बोल दिया तो वो फाइनल ट्रूथ नहीं है, उसे गाइड की तरह मत देखिए, अपना जजमेंट यूज करिए। नंबर थ्री, शॉर्टकट के लिए यूज मत करें। असाइनमेंट्स, एग्जाम, काम, अगर आप सिर्फ शॉर्टकट के लिए यूज करेंगे तो शायद काम हो जाएगा,
लेकिन आप ग्रो कभी नहीं करेंगे। और दोस्तों, ग्रोथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, इमोशनल डिपेंडेंसी मत बनाइए। ये बहुत सटल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी लोग अपनी हर प्रॉब्लम, हर डिस्कशन एआई से पूछने लगते हैं, लेकिन याद रखिए, जिंदगी के पर्सनल डिसीजंस सिर्फ आपको लेने होते हैं। एआई गाइड कुछ नहीं कर सकता। नंबर 5, कंपैरिजन मत करें। एआई बेटर है, ह्यूमन स्लो हैं। ये सोच गलत है। एआई एक टूल है, इंसान क्रिएटर है। टूल कभी क्रिएटर से बड़ा नहीं होता। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक लड़का था रोहन, उसने चैट जीपीटी यूज करना शुरू किया हर चीज के लिए, असाइनमेंट्स, ईमेल्स, इवन मैसेजेस टू फ्रेंड्स। धीरे धीरे उसने खुद सोचना एकदम बंद कर दिया। एक दिन उसकी टीचर ने पूछा, ये आंसर तुमने लिखा है? रोहन ने कहा, हाँ। टीचर मुस्कुराए और बोले, लिखा तुमने है या किसी और ने? उस दिन रोहन को समझ आया, यूज करना गलत नहीं है लेकिन खुद को खोना एकदम गलत है। आज की बात का सार यही है दोस्तों, चैट जीपीटी एक पावरफुल साथी है लेकिन यूज

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: मिडिल क्लास प्यार इतना सीधा होता है कि लड़का रोज बस स्टॉप पर खड़ा रहता है, लड़की आती है, दोनों एक दूसरे को देख

देखते हैं और 6 महीने बाद लड़का हिम्मत करके बोलता है, एक्सक्यूज मी, ये 522 यहीं से जाती है? प्यार नहीं हुआ, ट्रांसपोर्ट की इंक्वायरी शुरू हो गई।

सेवन डॉग्स, एक कॉर्गी और दोस्ती का सच। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी ना किसी हीरो की है ना किसी विलन की, आज की कहानी सात डॉग्स की है। हां जी, और बिलीव कीजिए ये कहानी आपको हंसाएगी भी, हैरान भी करेगी और एंड में थोड़ा सा चुप भी कर देगी। तो चलिए सीन सेट करते हैं। रात का टाइम है, चाइना का एक शहर चैंगचून। ठंडी हवा चल रही है, सड़क पर हल्का सा फॉग है और एक लंबा सुनसान हाईवे जहां एक आदमी लू नाम का अपनी कार चला रहा है। नॉर्मल ड्राइव, हल्का सा म्यूजिक, थोड़ा सा बोर्डम और फिर एकदम से उसकी हेडलाइट्स के सामने कुछ हिलता हुआ दिखता है। लू आंखें से कोरता है, ये क्या है? पहले लगता है प्लास्टिक के बैग्स होंगे, फिर लगता है शायद कोई जानवर और फिर जब वो थोड़ा सा और पास आता है तो उसका दिमाग लिटरली फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक नहीं, दो नहीं, पूरे सात डॉग्स चल रहे थे। और सिर्फ चल नहीं रहे थे, डिसिप्लिन के साथ चल रहे थे, जैसे कोई परेड हो, जैसे कोई मिशन हो। और सबसे आगे कौन रेडी? एक छोटा सा कॉर्गी। हाँ, वो क्यूट सा शॉर्ट लेग्स वाला थोड़ा गोल मटोल सा इंस्टाग्राम का सुपरस्टार टाइप डॉग कॉर्गी। लू के मुंह से बस एक ही बात निकली,

0: ये तो उल्टा हो गया। लीडर तो जर्मन शेफर्ड होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहां तो पूरा सिस्टम ही अलग था। कॉर्गी आगे कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे कह रहा हो लाइन में रहो सब, मैं देख रहा हूं। उसके पीछे एक हस्की, एक लैब्राडोर और एक बड़ा सा जर्मन शेफर्ड। लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट आता है। वो जर्मन शेफर्ड इंजर्ड था, उसका एक पैर ठीक नहीं था और वो हल्की सी लंगड़ाहट के साथ चल रहा था। और अब जो आगे होता है वो देखकर लू सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, वो अंदर से हिल जाता है। बाकी के सारे डॉग्स उस इंजर्ड डॉग के आसपास चलने लगते हैं, जैसे सिक्योरिटी कवर हो, जैसे बॉडी गार्ड्स हो। कोई आगे जाता फिर पीछे मुड़कर देखता, तू आ रहा है ना। कॉर्गी बीच बीच में रुकता और लिटरली लगता कि वो कह रहा है कि भाई स्पीड कम करो, सब साथ साथ चलेंगे। दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, अंधेरी रात, ठंडी हवा और सुनसान हाईवे, और बीच में सात डॉग्स का एक ग्रुप, एक इंजर्ड दोस्त और बाकी सब उसे छोड़ने की बजाय उसके साथ साथ चल रहे हैं। ऑनेस्टली अगर ये मूवी होती तो बैकग्राउंड में स्लो मोशन होता और म्यूजिक होता तेरा यार हूं मैं। लू ने तुरंत वीडियो रिकॉर्ड किया। अगली सुबह इंटरनेट पर धमाका, लोगों ने नाम रख दिया द सेवन डॉग्स गैंग। मीम्स बनने लगे, किसी ने लिखा ये फास्ट एंड फ्यूरियस का एनिमल वर्जन है, किसी ने बोला कॉर्गी इज द बॉस रिस्पेक्ट, और एक बंदा तो सीरियस होकर लिख रहा था ये डॉग सीक्रेट मिशन पर है। दोस्तों इंटरनेट कभी सिंपल चीज को सिंपल रहने कहां देता है। कुछ लोगों ने फैन फिक्शन लिख दिया, एक स्टोरी में कॉर्गी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था, इमेजिन। दूसरी में ये सब डॉग्स एक माफिया गैंग से भाग रहे थे, और एक वर्जन में तो जर्मन शेफर्ड उनका इंजर्ड सोल्जर था और बाकी सब उसे सेफ जगह लेके जा रहे थे। फिल्मी है ना, बिल्कुल। लेकिन एक बात तो सच है, ये डॉग्स एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे थे। दोस्तों अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, सोचिए अगर ये इंसान होते तो क्या होता। ग्रुप आउटिंग है, एक बंदा स्लो हो गया, कोई कहता भाई तू ऊबर ले ले, कोई कहता हम आगे मिलते हैं, और कोई सीधा बोल देता तू प्रॉब्लम है यार। सच बोलूं, हम फास्ट दुनिया में जीते हैं जहां पेशेंस कम है और साथ चलना एक लग्जरी बन गया है लिटरली। लेकिन उस रात चैंगचुंग के हाईवे पर सेवन डॉग्स ने हमें दोस्ती का असली मतलब सिखाया। उन्होंने दिखाया दोस्ती का मतलब स्पीड मैच करना नहीं, दोस्ती का मतलब है पेस एडजस्ट करना। अगर दोस्त स्लो हो तो आप रुकते हो, अगर दोस्त गिर गया तो आप हाथ बढ़ाते हो, और अगर दोस्त टूट रहा है तो आप उसके आसपास खड़े हो जाते हो जैसे वो डॉग्स खड़े थे। और लीडर कॉर्गी, सबसे छोटा, सबसे अनएक्सपेक्टेड, सबसे अंडरडॉग, लेकिन सबसे रिस्पॉन्सिबल। दोस्तों ये भी एक लेसन ही है, लीडर साइज से नहीं बनता, लीडर एटीट्यूड से बनता है। और वो इंजर्ड जर्मन शेफर्ड, कभी कभी स्ट्रॉन्ग लोग भी गिरते हैं, एंड इन दिस केस सबसे स्ट्रॉन्ग लोग भी, और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात है जब कोई उन्हें छोड़ देता है, पीछे रहने देता है और आगे बढ़ जाता है। अब कहानी का एक और थोड़ा डार्क साइड, कुछ लोग कहते हैं ये डॉग सेफ नहीं थे, कुछ वर्जन्स कहते हैं वो खो गए थे, और कुछ कहते हैं उनका एंड अच्छा नहीं था। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन दोस्तों कभी कभी एंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सफर, और उनका सफर एक मैसेज दे गया। तो आज अपने आप से एक सिंपल सा सवाल जरूर पूछेगा, आप कौन हैं? वो कॉर्गी जो सबको साथ लेकर चलता है, वो जर्मन शेफर्ड जो स्ट्रगल करता है, या वो जो किसी को बीच रास्ते में छोड़ देता है। जिंदगी लंबी रोड ट्रिप है दोस्तों, कभी स्मूथ हाईवे है, कभी ब्रोकन रोड, लेकिन अगर साथ सही हो तो सफर हमेशा खूबसूरत लगता है। और अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके स्लो होने पर रुक जाते हैं, आपका वेट करते हैं, तो ट्रस्ट में उन्हें कभी मत छोड़िए, क्योंकि आज के टाइम में ऐसे लोग नहीं मिलते, और मिलते हैं तो संभलते नहीं। इसी के साथ आज की ये थोड़ी फनी, थोड़ी फिल्मी और दिल को फिर भी छू लेने वाली कहानी यहीं समाप्त करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। अगली स्टोरी तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, असली दोस्ती वो नहीं जो आगे बढ़ जाए, असली दोस्ती वो है जो रुक कर कहती है, चल साथ चलते हैं। नमस्कार।
1: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय।
1: घर में एसी 24 डिग्री पर चला दो तो पापा तुरंत आकर 26 पर कर देते हैं। बोलते हैं, बेटा ठंड लग जाएगी, पर असली रीजन बिजली का बिल उनके दिमाग में लाइफ टिकर की तरह चल रहा होता है। और जब लाइट चली जाती है, देखा मैंने बोला था ना ज्यादा मत चलाओ, देखा बिजली चली गई। ऐसा लगता है जैसे बिजली डिपार्टमेंट को उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी हो।
2: Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm.

हर्मिन्यूटिक सिर्फ एक वर्ड नहीं, एक सुपर पावर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई कहानी में। आज का एपिसोड थोड़ा हटके है, थोड़ा हैवी लग सकता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ एंड तक आप हंसोगे भी, सीखोगे भी और थोड़ा स्मार्ट भी फील करोगे, क्योंकि आज का वर्ड है हर्मिन्यूटिक। सच सच बताओ, पहली बार सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ये कौन सी बीमारी है? ये किसी साइंटिस्ट का नाम है या ये किसी एलियन का पासवर्ड है? मैंने तो जब इसे पहली बार ऑनेस्टली सुना तो मुझे लगा ये यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा जाने वाला कोई सवाल है। और अगर किसी ने कैजुअली बोल दिया ये एक हर्मिन्यूटिक इशू है तो आदमी तुरंत सीरियस हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी वही सोच रहा था, अंदर से कुछ समझ नहीं आया ना। चलिए आज इस वर्ड का पोस्टमार्टम करते हैं। हर्मिन्यूटिक होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में हर्मिन्यूटिक का मतलब है सिर्फ सुनना या पढ़ना नहीं, बल्कि समझना। और सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर तक जाके समझना। मतलब वर्ड्स के पीछे क्या है, उनका टोन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है और इंटेंशन यानी इरादा क्या है। क्योंकि दोस्तों, जो कहा जाता है वो हमेशा वही नहीं होता जो मतलब होता है, और यहीं से शुरू होता है हर्मिन्यूटिक थिंकिंग। चलिए रियल एग्जाम्पल से समझते हैं जहां हम सब एक्सपर्ट्स हैं, थोड़ा सा मजा लेते हैं। एग्जाम्पल वन, माँ बोलती है बेटा मैं ठीक हूं। लिटरल मीनिंग माँ ठीक है, बट रियल मीनिंग यानी कि हर्मिन्यूटिक वर्जन, तूने 4 दिन से फोन नहीं किया, मैं याद कर रही थी। समझे? चलिए दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, शायद थोड़ी और क्लैरिटी आए। बॉस बोलता है गुड वर्क। आप सोच रहे हैं प्रमोशन आ गया, लेकिन हर्मिन्यूटिक वर्जन कहता है कॉन्टेक्स्ट चेक करो भाई, शायद मतलब हो ठीक है लेकिन और बेटर करो। समझे या अभी भी नहीं? चलिए तीसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। गर्लफ्रेंड बोलती है मैं कुछ नहीं हूं तुम्हारी लाइफ में। लिटरल मीनिंग सेल्फ डाउट, रियल मीनिंग यानी हर्मिन्यूटिक वर्जन, तुम्हारी लाइफ में मैं ही सब कुछ हूं, समझे? और अगर आपने गलत समझ लिया तो बस हर्मिन्यूटिक फेल एंड रिलेशनशिप फेल। हम गलती कहां करते हैं दोस्तों? प्रॉब्लम सिंपल है, हम सुनते ज्यादा हैं, समझते कम हैं। हम वर्ड्स पकड़ लेते हैं लेकिन इमोशंस, पीछे के इमोशंस, उन्हें मिस कर देते हैं। कोई गुस्सा करता है, हम बोल देते हैं एटीट्यूड है, लेकिन हो सकता है कि वो हर्ट हो। कोई चुप रहता है तो हम बोल देते हैं एरोगेंट है, लेकिन हो सकता है कि वो स्ट्रगल कर रहा हो। दोस्तों, अगर हम सब थोड़ा सा हर्मिन्यूटिक यूज कर लें तो आधी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाएंगी। अब थोड़ा सा फैमिली एंगल से देखते हैं। सोचिए अगर बॉलीवुड में हर्मिन्यूटिक होता, हीरो बोलता मैं तुमसे नफरत करता हूं, हीरोइन तुरंत समझ जाती इसका मतलब है वो मुझसे प्यार करता है, और 3 घंटे की मूवी 10 मिनट में खत्म हो जाती। नो सॉन्ग्स, नो ड्रामा, नो क्लाइमेक्स, कितनी बोरिंग हो जाती ना लाइफ। सोच के देखिए, हर्मिन्यूटिक सिर्फ फनी एग्जांपल्स तक लिमिटेड नहीं है, ये एक पावरफुल तरीका है सोचने का, समझने का और जीने का। जब आप किसी बात को समझने की कोशिश करते हो तो आप जज नहीं करते, आप कनेक्ट करते हो, और ये डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। जज करना इजी है, समझना एफर्ट लेता है, और आजकल लोग एफर्ट ही नहीं लेना चाहते, इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं, रिलेशनशिप्स वीक हो रही हैं, और लोग कहते हैं लोग बदल गए। नहीं दोस्तों, मॉडर्न दुनिया और हर्मिन्यूटिक्स की क्राइसिस। आजकल व्हाट्सएप मैसेज आता है ओके, हम सोचते हैं बस एक ओके, और सामने वाला सोचता रहता है गुस्सा है, एटीट्यूड है, मैंने क्या गलती की और क्या नहीं। दोस्तों, ओके का भी हर्मिन्यूटिक होता है, कभी मतलब होता है ठीक है, कभी मतलब होता है बात मत करो, और कभी मतलब होता है मैं बिजी हूं,
और कभी होता है मैं गुस्सा हूं लेकिन डायरेक्टली नहीं बोलूंगा। एआई और हर्मनेटिक, थोड़ा स्मार्ट बन जाओ। आजकल हम सब एआई भी यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी, गूगल और क्या क्या नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यही है, हम जो पढ़ते हैं उसे फाइनल ट्रूथ मान लेते हैं, लेकिन हर्मनेटिक कहता है कॉन्टेक्स्ट को समझो, सोर्स को समझो और इंटेंट यानी इरादे को समझो, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन का एक ही एंगल नहीं होता, और बिना समझे सिर्फ कॉपी कर लेना वो नॉलेज नहीं, शॉर्टकट है। शॉर्टकट कभी लॉन्ग टर्म में काम नहीं आता, याद रखिए। एक छोटी सी कहानी और सुनते हैं। एक लड़का था अमन, उसकी एक हैबिट थी हर बात को लिटरल लेना। एक दिन उसकी माँ बोली, बेटा घर जल्दी आना। अमन 5 मिनट में घर आ गया। माँ हैरान, अरे इतनी जल्दी कहां से आ गया? अमन बोला, आपने ही तो बोला था जल्दी आना। माँ बोली, अरे मेरा मतलब ये था कि लेट मत होना, दोस्तों डिफरेंस समझे, वर्ड सेम मीनिंग अलग, यही है हर्मेनिटिक। और आज की सबसे बड़ी बात, जिंदगी सिंपल हो सकती है मेरे दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, सिर्फ रिएक्ट ना करें, रिफ्लेक्ट करें, सिर्फ सुने नहीं उसे फील करें, सोचें और समझें, लोग क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्यों कह रहे हैं। तो अंत में नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले तू मुझे समझता ही नहीं है, आप सीधा बोलना, मैं तो हर्मेनिटिक लेवल पे समझ रहा हूँ। वो कंफ्यूज हो जाएगा और आप इंटेलिजेंट लगोगे, विन विन सिचुएशन। आज का वर्ड थोड़ा टफ जरूर था दोस्तों, लेकिन उसका मैसेज बहुत सिंपल और बहुत जरूरी, समझना सीखो लोगों को, सिचुएशंस को, और सबसे इम्पोर्टेंट खुद को, क्योंकि जब आप समझने लगते हो तब जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती, क्लियर लगती है। इसी के साथ आज का ये फन, फनी, थोड़ा इंटेलेक्चुअल और थोड़ा दिल से जुड़ा हुआ एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगली स्टोरी तक सिर्फ सुनिए नहीं, समझने की आदत डालिए, क्योंकि याद रखिए जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स वर्ड्स से नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग से होती है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: देसी मिडिल क्लास लग्जरी। इंडियन मिडिल क्लास के पास सब कुछ होता है, बस उसे यूज करने की परमिशन नहीं होती। ड्राइंग रूम का सोफा सिर्फ गेस्ट्स के लिए, नया डिनर सेट सिर्फ खास मौके के लिए। और वो खास मौका कब आता है? जब डिनर सेट का डिजाइन आउटडेटेड हो जाता है। हम लोग चीजें फ्यूचर के लिए संभाल के रखते हैं भाई, और फ्यूचर आता है डीक्लटर करने। What?

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग है शब्दों की सतरंगी दुनिया का। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार आपसे मुखातिब हूं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम मिलवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जिनकी पहचान सिर्फ एक नहीं कई आयामों में फैली हुई है। पत्रकारिता के क्षेत्र में 2 दशकों का अनुभव, दूरदर्शन राजस्थान पर 500 से अधिक कार्यक्रमों की एंकरिंग, राष्ट्रीय चैनलों पर राजनीतिक विश्लेषण और साथ ही एक संवेदनशील हिंदी कवि, ये सब एक ही नाम से जुड़ते हैं और वह नाम है श्री विवेकानंद जी शर्मा। सीकर जिले के अजीतगढ़ जैसे ग्रामीण परिवेश से निकलकर मीडिया, राजनीति और साहित्य की दुनिया में अपनी सशक्त पहचान बनाना यह सफर अपने आप में प्रेरणादायक है। इनकी लेखनी में समाज की सच्चाई है, विश्लेषण में गहराई है और कविता में संवेदना। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं एक ऐसे शख्स से जो शब्दों से विचार भी गढ़ते हैं और कविता से दिल भी छूते हैं। स्वागत है आपका विवेकानंद जी हमारे कार्यक्रम में।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और श्रोताओं, एक खास बात और आपसे आज करना चाह रहा हूं। आज हमारे इस कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग में आप जहां एक और गीत तो हमेशा की तरह सुनेंगे ही, लेकिन बीच बीच में आप आज के हमारे मेहमान विवेकानंद जी की कविताओं का आनंद भी आप ले पाएंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और मन बना लीजिए एक अच्छे से अनुभव के लिए। तो विवेकानंद जी, सबसे पहला प्रश्न और शुरुआती प्रश्न मेरा आपसे यही है कि जहां तक मेरी जानकारी है, आपका जन्म और शिक्षा एक गांव अजीतगढ़ सीकर से शुरू होकर जयपुर तक पहुंची, इस बड़े शहर तक पहुंचती, तो उस ग्रामीण पृष्ठभूमि ने आपको व्यक्तित्व और सोच को किस तरह से गढ़ा, कुछ उसके बारे में कुछ साझा कीजिए। पुराने दिनों की याद लगाइए, पुराने दिन की यादों में गोता लगाइए, कुछ बताइए।
2: बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। वास्तव में मुझे लगता है कि जो गांव में रहने का जो समय था, और खासतौर पर बचपन की बात करें, हर किसी के जीवन में वो स्वर्णिम काल होता है जी। और मेरा भी ये सौभाग्य रहा कि मेरा बचपन गांव में बीता, गांव की गलियों में घूमते फिरते, और जैसे जैसे बड़े हुए मुझे याद आता है बचपन में स्कूल जो थी हमारी, सरकारी स्कूल में पढ़े तो घर से करीब आधा किलोमीटर दूर 400 मीटर के आसपास स्कूल होगी। आज के दौर में जब शहर में रहते हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते उस समय चाहे सर्दी गर्मी बरसात जो भी होगी, घर में जो कोई कपड़े का थैला होता था उसके अंदर अपने कॉपी किताब रखी, उसको कंधे पर टांका और फिर दौड़ पड़ते थे स्कूल के लिए। आधे घंटे की इंटरवल होती थी, उस आधे घंटे में दौड़ के वापस घर पहुंचते थे, 3-4 मिनट 5 मिनट में घर पहुंचते थे, 10-15 मिनट में जो कुछ खाने को मिलता था, दही रोटी दूध ये कोई अचार जो भी कुछ मिल गया वो खाया फटाफट 15 मिनट में और फिर दौड़ के अपने स्कूल में पहुंच जाते थे। मुझे लगता है आज की नई पीढ़ी जो ऑटो में बैठ के वैन में बैठ के स्कूल जाती है और सुबह निकल जाते हैं 7 बजे, शाम को 4 बजे 5 बजे तक आ रहे हैं, इतना भारी बोझ वो थैला लटका के, मुझे लगता है वो समय ही बदल गया। उस समय के स्कूल, उस समय की चीजें, हर शनिवार को बाल सभा होती थी, अंताक्षरी हुआ करती थी, अलग अलग महापुरुषों की जयंतियों पर जो कार्यक्रम होते थे उनमें जाकर सामने मंच पर जाकर बोलना, आज ये सब जो चीजें हैं बहुत कम मात्रा में है और इनका भी स्वरूप बदल गया है।
1: नहीं, मजा आ गया, आपने तो मुझे भी अपना बचपन याद दिला दिया। जब घर भाग के आते थे तो पराठा खाना और इस तरह की जो बातें होती थी, हमें भी आप अपनी दुनिया में ले गए, बचपन की दुनिया में।
2: मजा आ गया, कैसे भूला जा सकता है बचपन का।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो आपने बीएससी, एलएलबी, बीजीएमसी और एमए जैसी विविध शिक्षा ली है, विज्ञान, कानून, मीडिया और साहित्य, ये सब का आपने अध्ययन किया है, और क्या ये सब मिलकर किसी तरह से आपकी पत्रकारिता और विश्लेषण को अलग से कोई दृष्टि देते हैं, कोई अलग नजरिया देते हैं, कुछ इसके बारे में बताएंगे?
2: जी बिल्कुल, आपने अच्छी बात पूछी है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ और वही कहता हूँ जो बड़ों से मैंने सुनी है, ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आप जिस भी विधा का ज्ञान लेंगे जीवन में कहीं ना कहीं वो काम आता है। बचपन में परिवेश घर परिवार का ऐसा मिला कि बहुत से संस्कृत के श्लोक याद हुए, बहुत सी कविताएं याद हुई, बहुत सी दोहे चौपाइयां वो याद हुई, और लगभग जहां तक मुझे याद है मैं छठी सातवीं कक्षा में पढ़ता था तो मुझे ये सब दोहे चौपाई श्लोक कविताएं ये इतनी याद थी कि एक बार मैं शुरू होता तो शायद 2 घंटे लगातार बोल सकता था।
1: ओके,
2: तो ये चीज मेरे में धीरे धीरे परिवार के संस्कारों के कारण आई, लेकिन चूंकि मैं पढ़ने लिखने में भी ठीक था तो इसलिए घर वालों ने प्रारंभ में, उस समय ये स्थिति होती थी कि यदि बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसको साइंस दिला दो, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा।
1: सही बात, तो
2: इस कारण मैं विज्ञान की उस दिशा में गया और मैंने बीएससी की। बीएससी के बाद चौराहे पर था क्या किया जाए, तो सारे मित्र जो है वो एलएलबी कर रहे थे तो मैं भी लॉ में पहुंच गया, और एलएलबी करते करते मुझे लगा कि यार गलत जगह फंस गए, कहां रोज सच को झूठ, झूठ को सच करने का काम करना पड़ेगा, आत्मा को मारने का काम करना पड़ेगा। वहां से फिर मैं पत्रकारिता में आ गया और पत्रकारिता में काम करते करते कवि सम्मेलनों की दुनिया में मैं आ गया। लेकिन ये सब काम करते करते विज्ञान आपको तर्क बुद्धि देता है, आपको विज्ञान जो है पढ़ने वाले विद्यार्थी एकदम से आंख बंद करके किसी चीज पर भरोसा नहीं करते। तो मुझे मेरी पत्रकारिता में, राजनीतिक विश्लेषण में इस चीज का ये लाभ मिला विज्ञान पढ़ने का। कानून की थोड़ी बहुत जानकारी हुई तो उसके कारण भी थोड़ा सा इस सारे क्षेत्र में लाभ मिलता ही है। तो मुझे लगता है कि जो आपके भीतर होता है, जो बचपन में जो साहित्य के प्रति रुचि थी, आखिर में घूम फिर के ये बीएससी, एलएलबी ये सब कर कर आगे और फिर उसी क्षेत्र में आगे जहां कहीं बचपन का आनंद था।
1: नहीं, सही बात, वो एनालिटिकल पावर तो आपको मिलती है, वो हर चीज में काम आती है, चाहे चुनाव का विश्लेषण आप कर रहे हैं। चलिए आगे बातचीत करते हैं। बिल्कुल। और 2005 में आपने राजस्थान पत्रिका से शुरुआत की, फिर अनेक बड़े संस्थानों में संपादकीय जिम्मेवारियां उठाई, तो पीछे मुड़कर देखें तो पत्रकारिता के इस 20 साल के सफर को आप कैसे देखते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें ब्रीफ में?
2: देखिए, जो 2005 में जब मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया, उस समय की स्थितियां और आज की स्थितियां बहुत अलग हैं। एक गांव से मैं आया था तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मैं जयपुर में कैसे अपना एक स्थान बना सकता हूँ, कैसे यहाँ रह सकता हूँ। और उसके लिए जो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि मेहनत के अलावा कोई दूसरा आपके पास में विकल्प ही नहीं होता, जब आप पर संकट सर्वाइवल का होता है तो आप अपनी जान झोंक देते हैं। लगभग मेरे साथ भी वही स्थिति थी कि फेल होकर वापस गांव चला जाऊं, बजाय इसके कि 18 घंटे भी काम करना है तो करेंगे। तो प्रारंभ में मेहनत से कभी घबराए नहीं, जैसी चुनौतियां थी, जैसी स्थितियां थी, बाकी मेरे साथ में काम करने वाले मित्र लोग यदि 6 घंटे काम करते थे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, मुझे 16 घंटे लगाने थे तो मैंने लगाए, और मुझे लगा कि वो जो शुरुआती दौर की मेहनत थी, वो जिजीविषा थी, वो जीवटता थी, वो चुनौतियों से डटकर मुकाबला करने की जो स्थिति थी, आज लोग चाहे उसको संघर्ष का नाम देते होंगे लेकिन वो सब सहजता से परिस्थितिवश हो ही जाता है।
1: नहीं, सही बात है, उस टाइम राजस्थान पत्रिका तो अपने आप में एक लीडिंग न्यूज़पेपर भी था, तो मेहनत भी बहुत करना पड़ती थी पत्रकारों को, तो मुझे याद है। तो चलिए, आपकी इस मेहनत, जीवट और जिजीविषा के नाम पर हम एक अच्छा सा गाना सुनते हैं, थोड़ी देर उस गाने का आनंद लेते हैं।

0: आज जो है, जिसे हम कहें कि नागरिक पत्रकारिता, हर एक व्यक्ति के हाथ में फोन है, हर एक व्यक्ति फैक्ट चेक कर सकता है, और यदि मीडिया संस्थान, मीडिया समूह यदि कुछ कोई बात गलत प्रचारित प्रसारित करता है तो उसको टोकने वाले लोग भी बहुत हो गए हैं। मुझे लगता
1: बहुत
0: है ये एक अच्छा संकेत है।
1: नहीं, बहुत सारा स्वरूप बदल गया है बिल्कुल। तो चलिए अब थोड़ा सा बातचीत का रुख बदलते हैं और आपके काव्य क्षण, हम इसको कह रहे हैं काव्य क्षण का एक ब्रेक लेते हैं। अब
0: जी
1: इस बातचीत को थोड़ा सा काव्यमय बनाते हैं। तो कोई अपनी पहली छोटी सी कविता हमारे साथ साझा कीजिए, तो हमें थोड़ा सा अंतराल, इस काव्य अंतराल कहते हैं इसको हम, तो
0: जी
1: वो मिले
0: जी
1: तो आप सुनाइएगा।
0: आपने छोटी सी कविता की बात कही तो मैं सबसे पहले माँ शारदे की आराधना का एक मुक्तक, चार पंक्तियों का एक मुक्तक आपके समक्ष, सभी
1: स्वागत
0: श्रोताओं के
1: स्वागत
0: समक्ष निवेदित करता हूँ। कि
1: स्वागत
0: माँ की
1: स्वागत
0: हुई कृपा तो गूंगा जिह्वा अपनी खोलेगा, माँ की हुई कृपा तो गूंगा जिह्वा अपनी खोलेगा, प्रेम प्यार के मीठे मीठे बोल कभी तो बोलेगा, और जिस पर कृपा शारदे करती वो पीछे ना रह सकता, अपनी प्यारी कविताओं से वो दुनिया को तोलेगा, अपनी प्यारी कविताओं से वो दुनिया को तोलेगा।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विवेकानंद जी, मजा आ गया, आनंद आ गया। तो अब थोड़ा सा हम मीडिया और डिजिटल युग की तरफ आते हैं, क्योंकि हमने प्रिंट मीडिया की बात कर ली। अब ये बताइए कि जैसे डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के इस दौर में पारंपरिक पत्रकारिता कितनी प्रभावित हुई है, और प्रभावित हुई है तो क्या अच्छे रूप में हुई है या थोड़े से एडवर्स रूप में हुई है, इसके बारे में क्या विचार रखते हैं?
0: देखिए, मुझे लगता है कि सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, इस बात के भी दोनों पहलू हैं। अब हम यदि पहले नुकसान की बात करें तो आप देख सकते हैं, जैसे हम अभी पहले चर्चा कर ही रहे थे, सूचनाओं की भरमार है अब आपके पास में। पहले उन सूचनाओं के लिए अखबार देखा करते थे, और चूंकि मेरा अभी भी बहुत से समाचार पत्रों में, संस्थानों में बहुत सा संपर्क है, मेरे बहुत से मित्र लोग अभी भी काम करते हैं, तो मैं देखता हूं कि जो गिरावट आई है वो गिरावट ये आई है कि एक ही व्यक्ति को चार चार काम करने पड़ते हैं। पहले एक पत्रकार होता था, केवल खबर लिखने का काम होता था, पूरी
1: अच्छा
0: तन्मयता से खबर लिखता था। आज वही पत्रकार उसी संस्थान के लिए, उसका डिजिटल संस्करण होगा तो उसके लिए वीडियो भी बनाएगा, उसकी वेबसाइट होगी तो वेबसाइट के लिए भी उसी को खबर लिखनी है। अब अखबार में खबर लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, वेबसाइट का थोड़ा सा अलग हो सकता है, और उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है तो फिर उसके लिए प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। तो एक ही व्यक्ति को जब चार काम देते हैं, तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक दौर में जिन समाचार पत्रों को पढ़कर हम लोग भाषा सीखते थे, उन समाचार पत्रों में बहुत सारी अशुद्धियां आने लगी हैं। जिन समाचार पत्रों को हम ये मानते थे कि ये मानक है, ये पैमाना है भाषा की शुद्धता का, वो अखबार आज आप उनमें 10-10 कमियां, 10-10 गलतियां निकाल सकते हैं। तो ये जो एक तरीके से डिजिटल की दौड़ है, अंधी दौड़ है, इसका ये एक बड़ा नुकसान है। लाभ इतना है कि आपको घर बैठे, आपको ऑफिस में बैठे बैठे और दुनिया भर की, जहां की जो सूचनाएं चाहिए वो आपको मिल जाती हैं। मुझे याद आता है एक दौर में जब हम समाचार पत्रों में काम करते थे, एजेंसियां जो है वो न्यूज भेजती थी और फैक्स के माध्यम से न्यूज आती थी। आप लोगों ने भी देखा होगा,
1: बिल्कुल
0: कागज
1: बिल्कुल,
0: चलता था, रोल उसका चलता रहता
1: रोल
0: था और वो
1: चलता, फैक्स
0: खबर
1: आता।
0: आती रहती थी। लेकिन अब देखिए, अब टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है उसके कारण आज कोई फैक्स की आवश्यकता ही नहीं है आपको, सब कुछ आपको मेल पर मिलेगा, सब आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उन पर मिल जाएगा, और तुरंत हर हाथ में। जिस तरीके से मोबाइल और तेज गति का इंटरनेट आया है, इसने सूचनाएं पहुंचाने की गति भी बहुत बढ़ा दी है, और साथ ही साथ फिर से उस बात को दोहराऊंगा कि नागरिक पत्रकारिता के कारण पत्रकार भी अब जांच के दायरे में हैं कि ये जो सूचना, ये जो रिपोर्ट दे रहे हैं ये सही है या नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो नुकसान वाली बात है, अभी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले ही आपको ध्यान होगा, बॉलीवुड के महान अभिनेता धर्मेंद्र का जो निधन हुआ, एक बहुत बड़े चैनल ने निधन होने से पहले ही वो खबर चला दी उनके निधन की, है ना। ठीक इसी तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें हमारे को जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है, चुनाव परिणाम हम देखते हैं तो सबसे आगे मैं, सबसे आगे मैं, इस चक्कर में बहुत से चैनल जो है वो अपने मन से भी कुछ चीजें वो बढ़ा के दिखा देते हैं, तो ये कुछ अतिरेक भी

0: होने लगा है।
1: नहीं, बहुत ही गहरी बात बताई आपने मुझे, ये बात तो बहुत ही प्रभावित की कि एक पत्रकार को वेबसाइट और डिजिटल और टीवी सबके लिए काम करना पड़ता है, ये बात तो मुझे आज पहली बार पता लगी। लेकिन ये भी बात आपने बहुत जोरदार बताई मुझे कि आजकल जो न्यूज आती है, कई बार मैं भास्कर का ऐप देखता हूँ तो उसमें कई बार स्पेलिंग मिस्टेक मिल जाती है जो कि पहले कभी नहीं
2: मिलती है, बहुत सी
1: अखबार में मिलती है।
2: हाँ, मैं नाम की बात नहीं करूंगा और केवल एक अखबार की बात नहीं है, बहुत सारे समाचार पत्रों में ये स्थिति देखने को मिलती है कि भाषा का स्तर तो गिरा ही है। जो एक तरीके से प्रभावशाली और साहित्यिक भाषा होती थी वो तो अलग बात है, जो त्रुटि है भाषा की, मात्रा छोटी आएगी बड़ी आएगी, उनमें भी बहुत सारी गिरावट देखने
1: वो
2: को
1: भी बहुत है। और थोड़ा स्तर की बात है कि जो एक मानदंड होता था भाषा का वो नहीं रहा है, थोड़ी थोड़ी सतही भाषा, मैं कहूंगा बाजरू तो नहीं कहता लेकिन सतही भाषा आ गई है वहां। चलिए आप थोड़ा सा ट्रिकी सा सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे शर्मा जी, आज मीडिया की विश्वसनीयता पर भी कुछ बताइए। जैसे आज स्पीड ज्यादा है या सत्य है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे?
2: नहीं, विश्वसनीयता का बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत अच्छा, बहुत प्रभावी विषय है ये, और ये मीडिया संस्थानों में काम करने वाले लोगों के लिए और इनके जो मीडिया संस्थान को चलाने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये आत्ममंथन का विषय है। जिस तरीके से पेड न्यूज की बात आजकल होने लगी है और नैरेटिव सेट करने की जो बात होने लगी है, उसमें कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में तो सब लोग हैं। और मैं अक्सर एक बात और कहता हूं कि एक दौर में पत्रकारिता मिशन हुआ करती थी और आजकल मिशन के साथ पहले के जुड़ जाता है, उससे भी मीडिया संस्थान अछूते नहीं है। तो मिशन और कमीशन का जो ये अंतर है, ये अपने आप में ये गहरा संकट है लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही चिंताजनक है और बहुत ही कंसर्न का इशू है। तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने अभिव्यक्ति को लोकतांत्रिक बनाया है या भ्रम बढ़ाया है? खासतौर से चुनावों के दौरान तो ऐसा कंफ्यूजन सा हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या सुने और क्या ना सुने।
2: देखिए, जो बात अभी हम कर रहे थे उससे जुड़ी हुई बात है ये, कि मिशन और कमीशन वाली जो बात है, तो डिजिटल के इस दौर में निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि पहले जो निर्भरता समाचार पत्रों पे या कुछ चैनल्स पर ही थी, उसमें तो कमी आई है। पहले जो उनकी मोनोपोली होती थी, और मैं कहता हूँ कि चुनाव के, चूंकि मेरा तो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में और सर्वे वगैरह के कारण मेरा बहुत से राजनेताओं से भी संपर्क है, तो जब चुनाव होता है उस समय असलियत सामने आती है मीडिया संस्थानों की भी, और उसी समय असलियत सामने आती है पॉलिटिकल पार्टीज की भी। और बाहर से लोग चाहे जो कुछ कहें, लेकिन भीतर का दलदल कैसा है वो यदि सामान्य व्यक्ति जानेगा तो उसका विश्वास उठ जाएगा। किस तरीके से एक एक नेता से इन संस्थानों के प्रतिनिधि जाकर संपर्क करते हैं, उनको पैकेज देते हैं, और आपको आश्चर्य होगा आलोक जी, इस तरह के पैकेज दिए जाते हैं कि आप इतने लाख रुपए देंगे तो आपकी नेगेटिव खबर नहीं छपेगी, आप इतने लाख रुपए देंगे तो आपकी पॉजिटिव खबर छपेगी, और आप इतने लाख रुपए देंगे तो आपकी पॉजिटिव छपेगी और आपके प्रतिद्वंदी की नेगेटिव छपेगी। इस स्तर तक भी जो है मैनेज होते हैं।
1: ये मैनेजमेंट तो बड़ा वो है। चलिए, लेकिन आपने बहुत सारी
2: अंदर का सच निकाल कर रख दिया है आपके सामने।
1: बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बहुत ही आंखें खोल देने वाला आई ओपनिंग सा है सारा। आई ओपनिंग तो क्या है, लेकिन सत्य जब बिल्कुल सामने कोई विश्वसनीय व्यक्ति बोलता है तो फिर उसमें एक वजन आ जाता है। तो चलिए, लेकिन थोड़ा सा हम इसको काव्य में बनाते हैं, मीडिया और समाज पे आधारित कोई छोटी सी कविता या व्यंग पंक्तियां जो कुछ भी आप सुनाना चाहें सुनाइए, हम थोड़ा सा रुख बदल लेते हैं।
2: जी जी जी, आपने मीडिया वाली बात कही तो मैं नाम तो नहीं लूंगा, पर एक संस्थान में जब मैं काम करता था और मेरी एक खबर वहां फ्रंट पेज की लीड खबर जाने वाली थी और रुक गई, तो जब वो खबर रुक गई तो मैंने पता किया, तो बाद में पता लगा कि वो खबर किसी ऐसे संस्थान से संबंधित थी जो समाचार पत्र के बड़े विज्ञापन दाता थे।
1: अच्छा।
2: तो चूंकि मैं मिशन के लिए पत्रकारिता में आया था तो मेरे रक्त में उबाल आया, और रक्त में उबाल आया तो कलम से लगातार कुछ 16 पंक्तियां निकली, ऐसी मैं 8 पंक्तियां आपके समक्ष निवेदित करता हूं, उसमें भाव जो है वो आप समझ लेंगे एकदम कि क्या बात कहना चाहता हूं। तो मैंने उस समय जो कुछ प्रयास किया मेरी भावनाओं को व्यक्त करने का, वो ये था कि सच्चाई का गला घोंटते गुणी जनों को देखा है, सच्चाई का गला घोंटते गुणी जनों को देखा है, धनबल के आगे तो उनको घुटने टेकते देखा है, बाहुबल के आगे उनको मिमियाते भी देखा है, और उन्हीं को राष्ट्रवाद की डिंगे हांकते देखा है। ये मन के भाव यहां से शुरू होते हैं, फिर आठ पंक्तियां और लिखते हैं, और फिर आखिर में उसका समापन मैं करता हूं, क्योंकि ये केवल एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये भी है कि समाचार पत्रों को चलाने के लिए जिस अर्थ की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, और जो प्रबंधन के लोग हैं उनका विषय भी यदि आप देखेंगे, तो फिर आखिर की चार पंक्तियां मैं लिखता हूं कि मैं नहीं कहता गलत राह पर तुमने चलना सीख लिया, मैं नहीं कहता गलत राह पर तुमने चलना सीख लिया, मैं नहीं कहता कठिन राह को कैसे तुमने ठीक किया, किंतु अवलोकन आत्म का भी बहुत जरूरी चाहिए, और जैसे भी हैं आप और हम दोनों को दर्पण चाहिए, जैसे भी हैं आप और हम दोनों को दर्पण चाहिए।
1: तो बहुत मतलब दर्पण चाहिए आपको, सच दिखाने के लिए दर्पण चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया, बिल्कुल सुंदर, बहुत सुंदर और बहुत ही सटीक।
2: ये एकदम जो प्रत्यक्ष अनुभव किया वहीं से निकले हुए शब्द।
1: लेकिन आपने बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही एकदम गहरे असर करने वाली कविता सुनाई हमारे को, मजा आ गया। चलिए आप थोड़ा सा आपके दूसरी विधाओं की तरफ आते हैं। दूरदर्शन राजस्थान पर 500 प्लस कार्यक्रमों की एंकरिंग, ये एक बहुत बड़ा अनुभव है। दूरदर्शन पर काम करने का अनुशासन और गरिमा कैसी होती है, कुछ इसके बारे में अनुभव आपका बताइए, हमारे साथ साझा कीजिए।
2: जी, बहुत ही अच्छा और सकारात्मक अनुभव है मेरा दूरदर्शन पर काम करने का। सकारात्मक और अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बाकी अन्य जो निजी चैनल हैं उन पर भी मेरा आना जाना रहता है, तो एक बड़ा अंतर जो दिखता है और जो मैंने खुद ने भी महसूस किया कि जो प्राइवेट चैनल्स पर बहुत से लोग अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ बनकर जाते हैं, ऐसे बहुत से लोग दूरदर्शन पर आकर फेल होते हुए मैंने देखे हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, फेल होते हुए इसलिए देखे हैं क्योंकि प्राइवेट चैनल पर आप जाते हैं, मान लीजिए आपका 25 मिनट का शो रहता है और उस 25 मिनट के शो में एंकर 3-4 मिनट शुरू में प्रारंभ में ले लेता है, 20 मिनट आपके पास बचते हैं और उस 20 मिनट के लिए आपने 5 एक्सपर्ट बैठा रखे हैं, तो वो पांचों लोगों में होड़ लगी रहती है कि कैसे भी करके हम ज्यादा से ज्यादा अपनी बात रखें, तो उनको मुश्किल से 3 मिनट 3.5 मिनट मिलते हैं। दूरदर्शन पर जो हम शो करते हैं उसमें यदि हमने 2 लोगों को भी एक्सपर्ट के रूप में बुलाया है और कम से कम कार्यक्रम का समय भी हमारा आधे घंटे का है, तो उनको लगभग लगभग 12-13 मिनट कम से कम एक एक व्यक्ति को मिलते हैं। कुछ कार्यक्रम हम ऐसे भी करते हैं जो 50-55 मिनट का कार्यक्रम है और एक्सपर्ट अकेला ही है, तो ऐसे में यदि उनके पास में कंटेंट है, उनका अध्ययन है, तो वो वहां बोल पाते हैं। नहीं तो मैंने बहुत से ऐसे स्वनाम धन्य ऐसे ऐसे विशेषज्ञों को देखा है कि जो 10-15 मिनट बाद में बगले झांकने लगते हैं, तो वहां अध्ययन करने वाला व्यक्ति वहां उसी प्रकार का व्यक्ति चल सकता है जिसके पास कंटेंट है। ये एक बड़ा अंतर दूरदर्शन के कार्यक्रमों में और बाकी अन्य चैनल्स के कार्यक्रम में देखने को मिलता है।
1: हाँ, मतलब अगर मैं मोटे शब्द मतलब एक आम भाषा में कहूँ, दूरदर्शन में लफाजी नहीं चलती।
2: हाँ, लफाजी नहीं चलती, जबरदस्ती के आरोप प्रत्यारोप नहीं चलते। हाँ, फैक्ट पर जो है बात, वो फैक्ट पर बात होती है, और ये दूरदर्शन की पहचान पहले भी थी आज। हाँ,
1: बिल्कुल सही बात, एक बहुत ही गरिमामय ऐसा होता है, डिसेंट होता है सारा कुछ।
2: हाँ,
1: तो अगर ये जो आपका एंकरिंग का इतना लंबा और यादगार अनुभव है, इसमें से कोई ऐसा पल निकाल के लाइए, कोई यादगार पल जो आज भी आपके दिल में बसा है, कोई ऐसी याद हो गोता लगा के हमारे को सुनाइए कोई ऐसा।
2: देखिए, बहुत सारे अनुभव हैं क्योंकि सैकड़ों कार्यक्रम हो गए हैं, तो बहुत सारे अनुभव हैं। एक कुछ विशेष अनुभव की बात करें तो कुछ कार्यक्रम ऐसे हुए कि जिनमें एक्सपर्ट आए, और सामान्यतया हमारा जो 28 मिनट का कार्यक्रम हुआ करता है उसमें एक एक्सपर्ट आते हैं, तो हम ये कल्पना करके चलते हैं कि 7 प्रश्न हम करेंगे तो उसमें कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, जिसमें लगभग ये मान के चलते हैं कि 3 मिनट एक्सपर्ट बोलेगा, 1 मिनट एंकर बोल लेगा।
1: ठीक है।
2: 5-7 बार ऐसा हो गया कि जो एक्सपर्ट आए उनसे हमने सवाल किया और उन्होंने एक लाइन में जवाब देके और वो चुप हो गए। तो ऐसे करते करते जो 7-8 प्रश्नों के बारे में हम सोचते थे, उसके बजाय हमने 15 प्रश्न कर लिए और देखा कि समय अभी भी 18 मिनट ही हुए और 18 मिनट में 15 प्रश्न हो गए। तो ऐसे में फिर बाद में उस कार्यक्रम को, चूंकि 28 मिनट चला ना था, तो बाद में मुझे खुद को ही एंकर के साथ में एक्सपर्ट की भूमिका का भी निर्वहन करना पड़ा कि हाँ ठीक है आप 2 लाइन बोल रहे हैं तो उस 2 लाइन को और विस्तार देके कैसे 10 लाइन में मुझे करना है, तो ये भी कई बार करने को मिला। एक बार और एक गजब अनुभव ऐसा हुआ कि एक कार्यक्रम मेरा चल रहा था, वो कार्यक्रम जैसे ही पूरा हुआ तो एक्सपर्ट तो स्टूडियो से बाहर चले गए और ऊपर पैनल पर जो प्रोड्यूसर बैठते हैं उन प्रोड्यूसर का, हम जो ईपी लगाते हैं, ईयर प्लग लगाते हैं, तो उनका संदेश आया कि एक्सपर्ट को बाहर जाने दीजिए, एंकर को बैठे रहना है।
1: अच्छा,
2: और फिर मैं जब बैठा रहा तो उन्होंने कहा कि आपको एक कार्यक्रम और अभी करना है, क्योंकि उस कार्यक्रम के लिए जो एंकर आने वाले थे वो किसी कारण से स्टूडियो नहीं पहुंच पाए, बाहर बारिश बहुत अधिक है और उनकी गाड़ी खराब हो गई और वो फंस गए हैं, तो इसलिए अगला कार्यक्रम भी आपको ही करना है। मुझे न गेस्ट का पता, न मुझे विषय का पता,
1: स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट ही नहीं होगी
2: हाँ
1: कुछ
2: हाँ
1: भी होगा।
2: विषय विषय का भी नहीं पता कि क्या टॉपिक क्या
1: क्या
2: है,
1: हो, क्या टॉपिक
2: लेकिन
1: क्या,
2: उन्होंने
1: ओके
2: कहा कि 3 मिनट में शुरू करेंगे, एक्सपर्ट नए आ गए। उसी समय उन्होंने बताया, माँ शारदे की कृपा से वो कार्यक्रम भी हमने उसी तरह संचालित किया कि जैसे
1: मजा
2: किसी को महसूस भी नहीं हुआ।
1: गया जी। ये तो बिल्कुल जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप बहुत छोटे छोटे जवाब देते हो, मेरे को संभालना मुश्किल हो जाएगा किस तरह से मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल,
2: हाँ
1: ये बहुत बहुत सही बात बताई आप। चलिए, इसी इस दूरदर्शन की याद पे और इन सब बातों की आपकी याद पे सुन के रुक के एक गाने का आनंद ले लेते हैं हम, फिर आगे
2: जी
1: बातचीत शुरू करते हैं।

0: और माँ शारदे की कृपा, ये दोनों मिलती हैं तो मुझे लगता है कि एक एंकर का स्तर फिर ठीक हो पाता है।
1: चलिए, ये बहुत ही अच्छी बात बता दी है आपने, और ये तो सीखने वाली बात है और तैयारी तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात।
0: बिल्कुल
1: तो अब इसी पे, चूंकि आपने ये बात हुई, एंकर की भी बात हो गई, कवि की भी बात हो गई, और आपने बताया कि कविता से भी थोड़ा सा लोग जुड़ जाते हैं अगर ऑडियंस सामने लाइव बैठी हो, तो एंकर और कवि दोनों रूपों को अगर जोड़ती हुई कोई चरणता हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें तो वो स्वागत है आपका। कुछ सुनाइए इसके बारे में।
0: मैं अभी आप कह रहे हैं तो एक कविता की कुछ पंक्तियां हिंदी भाषा पर जो है मैं आपके समक्ष और श्रोताओं के समक्ष निवेदित करना चाहता हूं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है वो हमारी मातृभाषा में होनी चाहिए, और भाषाओं का ज्ञान जो है वो जरूरी है। आप दुनिया भर की भाषाएं पढ़िए, उनका ज्ञान लीजिए, लेकिन आपको जिस भाषा में सपने आते हैं उस भाषा में यदि आप प्रारंभिक शिक्षा लेंगे तो फिर जीवन बहुत आनंदित होता है। और भाषाओं में कई बार जो है वो हम लोग देखते हैं, नई जो पीढ़ी है वो अपनी हिंदी भाषा को लेके और थोड़ा सा हेय दृष्टि वो रखती है, तो इसलिए मैंने एक ये कविता लिखने का प्रयत्न किया। निवेदित करता हूँ कि हिंदी तो बिंदी है जी हाँ भारत माँ के भाल की, हिंदी तो बिंदी है जी हाँ भारत माँ के भाल की, और लाली माँ लगती है ये रूप राशि के गाल की, ये भारत का आभूषण है माता का गलहार है, विश्व पटल पर भाषाओं में इसका भी सत्कार है, संस्कृत की बेटी है ये तो संस्कृति की संवाहक है, अंग्रेजी के पीछे भगते फिर क्यों बेटे नाहक हैं, इसे बढ़ाएं इसे बचाएं अपनी जिम्मेदारी है, असंस्कारी दौर में इसकी अपनी पहरेदारी है, असंस्कारी दौर में इसकी अपनी पहरेदारी है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि आपको अन्य भाषाएं भले कार दे देंगी, संस्कार आपको माँ हिंदी की शरण में आने पर ही मिलेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही वो है, और कई बार हमारे पब्लिक सेक्टर्स में जो हिंदी दिवस होता है उस पर यही बात चर्चा में होती है कि केवल एक हिंदी दिवस पे हम हिंदी की बातें करते हैं और बाकी बाकी पूरे साल इसको भूल जाते हैं। मेरे को याद आता है बहुत सारी ऐसी बातें हैं,
0: तो अपनी भाषा का अभिमान होना चाहिए हमें, ये जो स्वाभिमान है ये गर्व का विषय है कि हमारी भाषा ऐसी भाषा है जिसमें किसी तरह की दरिद्रता नहीं है। एक एक शब्द के लिए हमारे पास में, आप पैर की बात कीजिए कितने तरह के शब्द मिल जाएंगे, आप रिश्तों की बात कीजिए तो चाचा ताऊ बुआ फूफा मामा कितने शब्द मिलेंगे, और
1: उनमें
0: दूसरी
1: अंकल और आंटी
0: भाषाओं
1: के
0: में
1: सिवा
0: हिंदी।
1: कुछ नहीं। हाँ
0: तो ये यदि आप देखेंगे तो हमें गर्व होता है कि हम जो है एक ऐसी भाषा जो देववाणी से निकली है उसके
1: बिल्कुल।
0: अनुयायी हैं।
1: चलिए, आप थोड़ा सा आपका राजनीतिक विश्लेषण जो आप करते हैं उसके बारे में रुख कर लेते हैं। आप कई राष्ट्रीय चैनलों पर आते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में, तो आप ये बताइए, राजनीति को अब समझना आसान हुआ है या जटिल हो गया है? क्योंकि आजकल की जो राजनीति है उसको या तो पत्रकार समझ पाते हैं या पॉलिटिकल लोग समझ पाते हैं, आम आदमी का कहीं उसमें कुछ लेना देना है, कुछ है या नहीं है?
0: देखिए वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है व्यक्ति की उसमें रुचि कितनी है। मैं जब पत्रकारिता के क्षेत्र में आया तो मेरे को जिस तरीके से रिपोर्टिंग करनी होती थी, तो जब रिपोर्टिंग करनी होती थी तो उस विषय की जानकारी भी चाहिए, तो उस विषय के बारे में पढ़ना मैंने शुरू किया, और फिर जब पढ़ना शुरू किया तो फिर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ में बैठना उठना शुरू किया, वहां से व्यावहारिक ज्ञान आता है लोगों के साथ बैठ के। राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करने वाले बहुत से मेरे मित्र हैं तो उनके साथ कई कई घंटों बैठता था, और पुराने नेताओं के वो जो कहानी किस्से सुनाते थे, भैरव सिंह जी शेखावत के, शीश राम ओला के, है ना,
1: मोहनलाल
0: अलग अलग जो
1: सुखाड़िया के।
0: पार्टियों के, हाँ, तो उनके जो वो किस्से सुनाते थे उससे पता लगता था कि माइंडसेट क्या था व्यक्ति का। फिर जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, तो ये कागजों में क्या लिखते हैं, इनकी नीतियां क्या हैं, इनकी विचारधारा क्या है, और फिर इनके जब सरकार होती है तो किस तरह के फैसले होते हैं, किस आधार पर ये सरकार चलाते हैं, उनकी योजनाओं में किस चीज की झलक मिलती है, तो ये जब आप अध्ययन करते हैं, लोगों से सुनते हैं, खुद विश्लेषण करते हैं, तो धीरे और साथ में आम जनता से जब मिलना होता है, मेरा तो ये एक सौभाग्य रहा कि अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उन विधानसभा चुनाव में मेरे को सर्वे करने का अवसर मिला। करीब करीब 28-30 विधानसभा क्षेत्रों में मैं गया, तो लगभग राजस्थान के 1500

0: से अधिक गांवों में मेरा जाना हुआ, तो वहां भी मैं सीखने का प्रयास करता हूँ। गांव में बैठा हुआ, चौपाल पर बैठा हुआ व्यक्ति, वो शहर के व्यक्ति से कहीं ज्यादा राजनीति समझता है। वो चाहे उसने किताबें कम पढ़ी होंगी, लेकिन जो उठापटक होती है वो उस मामले में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शहरी लोगों से बहुत आगे है।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया बताया आपने। और इनफैक्ट आपने मेरे अगले सवाल का भी जवाब दे दिया। मैं चुनावी सर्वे के बारे में, मेरा सवाल था अगला वाला, कि ये जो
0: अच्छा
1: चुनावी सर्वे कंटेंट और रणनीति पर काम करने का आपका अनुभव है, तो पर्दे की पीछे की राजनीति के बारे में कुछ थोड़ा सा शॉर्ट में बता पाएंगे कैसे चलती है,
0: जी जी
1: खासतौर से
0: बिल्कुल
1: चुनावी
0: बिल्कुल।
1: समय में?
0: वैसे तो देखिए ये राज की बात है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूं कि
1: खोल दीजिए
0: 2010 के आसपास से भारत की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है। 2010 से पहले की राजनीति को देखते हैं, खुद राजनेता जो है वो, अधिकांश राजनेता पढ़ने लिखने वाले होते थे, विद्वान होते थे। मैं ऐसे बहुत से नेताओं को जानता हूं कि जो ट्रेन में सफर करते थे तो साथ में कोई ना कोई दो पुस्तकें जरूर होती थी।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: आज जो दौर है वो मैनेजमेंट का दौर है, और ये कहते हुए मुझे कोई हिचक और झिझक नहीं है कि यदि आपके पास में धन है तो उससे बुद्धि भी खरीदी जाती है। और आपके सलाहकार, आपकी मैनेजमेंट की टीम में कैसे लोग हैं, आपके पास कंटेंट वाले कैसे लोग हैं, आपको जाकर बोलना है मंच पर, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, रॉ मटेरियल तो आपको मिल ही जाता है। और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं कि पूरा रेडीमेड ही जो है उनको कंटेंट परोस दिया जाता है, उनको जाके केवल उसका वाचन करना होता है। तो परिवर्तन है, मैनेजमेंट का भी एक बड़ा रोल हो गया है। कंपनियां, मैनेजमेंट, पीआर कंपनियां जो है,
1: सही
0: चुनाव में
1: बात
0: काम करने वाली कंपनियां इतना तक तय करती हैं कि नेताजी को किस तरह के कपड़े पहनने हैं,
1: हाँ, बिल्कुल सही
0: नेताजी को
1: बात
0: जूते और चप्पल कैसे पहनने हैं, उनको कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कितना खाना है, तमाम चीजों पर, आपकी दाढ़ी कैसी रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी, बाल कैसे रहेंगे, तमाम चीज, और चश्मा कैसा लगाओगे आप, ये इतना तक मैनेजमेंट होने लग गया है आजकल।
1: भाई। ये इमेज बिल्डिंग का जो एक्सरसाइज हो गई है, बिल्कुल सही बात
0: जी
1: बता
0: जी
1: रहे हो आप। बिल्कुल, ये चश्मा कैसा पहनना है और लुई वेटो के कपड़े पहनने हैं, कौन से किसके पहनने हैं, बहुत सही बात है। अभी बात हो ही रही थी ना निशिकांत दुबे के बारे में।
0: हाँ
1: सही बात है। चलिए, तो फिर यहाँ रुक के हम जो ये विरोधाभास है हमारे जीवन में और राजनीति पे, इस पे रुक के एक गाना सा सुन लेते हैं कोई, एक अच्छा सा, और फिर आगे चलते हैं।

0: विवेकानंद जी, अब तो थोड़ा सा आपके कविताओं की तरफ आते हैं, आपके इस जीवन की तरफ आते हैं।
1: जी
0: पत्रकार और विश्लेषक के भीतर से कवि कब और कैसे जन्मा, ये और आपकी ये जो ज्यादातर कौन से विषय हैं जिनके आसपास आपकी कविताएं घूमती हैं, इनके बारे में कुछ बताइए हमें।
1: देखिए, मैं तो वैसे अभी भी अपने आप को कोई कवि नहीं मानता। मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी दो तरह के काम है, एक रिपोर्टिंग का काम होता है, दूसरा विचार का काम होता है। तो
0: जी
1: विचार जो है वो हम कोई लेख पढ़ते हैं, संपादकीय पढ़ते हैं, कोई व्यंग पढ़ते हैं, उससे हमारा एक माइंडसेट भी बनता है। तो मैंने पत्रकारिता के शुरुआती दौर में ही रिपोर्टिंग करने के साथ साथ कॉलम लिखना शुरू किया। और
0: अच्छा
1: संयोगवश मेरे मन में यह था कि इस भीड़ से अलग लिखना है और भीड़ से अलग दिखना है, तो उसके लिए कुछ नया प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैं जो कॉलम लिखता था, उस कॉलम का मैं समापन, एक तरीके से उसका जो सार है, यदि मान लीजिए मैंने 250 शब्दों का कोई व्यंग लिखा है कॉलम में,
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: उसका सार मैं 4 पंक्तियों की कोई तुकबंदी करके किया करता था।
0: ओके ओके अच्छा
1: तो वो तुकबंदी, जो 4 पंक्तियों की तुकबंदी होती थी, उसमें एक तरीके से उसका सार आ जाता था। और मेरे कुछ मित्र, कुछ मेरे इस तरीके के शुभचिंतक जो है, वो उनको नियमित पढ़ते भी थे और मेरा उत्साहवर्धन भी करते थे। संयोग से एक बार एक कोई कार्यक्रम हो रहा था जामडोली जयपुर में, और उसमें मेरे एक मित्र थे, उनके जिम्मे वो कवि सम्मेलन का कार्यक्रम आ गया। उन्होंने मेरे से कहा कि आपको भी काव्य पाठ करना है। मैंने कहा जी मैं काव्य पाठ कहाँ करूंगा, मैं तो लिखने वाला आदमी हूँ। मंचों पर काव्य पाठ, मंचों पर मैं विषय जरूर रखता था, व्याख्यान वगैरह देता था मैं, पर मैंने कहा कविता सुनाना मंच पर बड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपका नाम बोलूंगा वहां और 4-5 हजार लोग रहेंगे, आप नहीं आओगे तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी, आप देख लेना। मैं बिना तैयारी के वहां पहुंच गया और फिर वही मंच पर बैठे बैठे कुछ दोहे मैंने बनाए। और जब देखा कि उन दोहों को, जब मैं दोहे में सुना रहा था, तो सामने जो पब्लिक थी वो जोरदार मेरा उत्साहवर्धन किया। उन्होंने खूब तालियां मिली, खूब उनकी मेरे को दाद मिली, और उस वहां से मेरा एक आत्मविश्वास बढ़ा और मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, अपन इस दिशा में भी थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। ज्यादातर विषय जो है तात्कालिक विषय मैं लेता था। कोई मतलब कभी मेरे को याद नहीं आता कि मैंने कागज पेन लेकर बैठा हूं कि हाँ मेरे को कविता लिखनी है। मुझे कहीं से कुछ दिखा, कोई घटना, कोई परिस्थिति, उसी में से कुछ ना कुछ पंक्तियां, चाहे दोहे के रूप में निकली हो, चाहे किसी अलग छंद के रूप में निकली हो, चाहे मुक्तक के रूप में निकली हो, तो इसी आधार पर संवेदनशीलता जो है वो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। और विचार व्यक्त करने का आपका यदि अभ्यास रहता है, वो चाहे गद्य में हो चाहे पद्य में हो, वो यदि अभ्यास है तो फिर चीजें थोड़ी आसान होने लगती हैं।
0: बहुत सुंदर, मजा आ गया आपकी बात सुनकर। अच्छा, अब विवेकानंद जी, हम करीब करीब आखिरी पायदान पर आ गए हैं।
1: जी
0: मैं आपसे एक प्रश्न, आज के युवा पत्रकार एंकर या कवि बनना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने सब विधाओं का आपके पास अनुभव है, तो इनको आपको अगर कोई तीन में सबसे महत्वपूर्ण सलाह देनी होगी तो क्या देंगे आप?
1: देखिए, मैंने जब पढ़ाई पूरी की थी तो मेरे मन में भी कोई ये विचार नहीं था कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है। मुझे ये था कि मुझे कोई ना कोई काम, अपना काम करना है, अपने तरीके से करना है, और किसी के अधीन रहना ये कहीं ना कहीं मेरे मन को कचोटता था। तो इसलिए मैंने ये लाइन चुनी पत्रकारिता की। कवि सम्मेलनों की तरफ आया, लेखन की तरफ आया, चुनाव की रणनीति वगैरह की, ये जो लाइनें हैं। और आज मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी भी अक्सर ही एक बात कहते हैं कि आप नौकरी मांगने वाले मत बनिए, नौकरी देने वाले बनिए। तो आप चाहे कवि बनना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, पीआर इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हैं, चुनावी क्षेत्र जो है उसमें आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में आना चाहते हैं, यदि कोई भी क्षेत्र जो आप सोचते हैं, सबसे पहली और पहली आवश्यकता है आपका अध्ययन। उस क्षेत्र के संदर्भ में आपको नॉलेज जो है वो जरूरी है, और नॉलेज, प्रामाणिक नॉलेज चाहिए। आजकल जो एक शब्द चलता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उससे काम नहीं चलेगा। आपको प्रामाणिक जानकारी होना वो बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और तीसरी, तो पहली बात हो गई आपका ज्ञान, प्रामाणिक ज्ञान वो आएगा अध्ययन से, दूसरी बात परिश्रम, और तीसरी जो बात है वो है फिर धैर्य। ये नहीं होगा कि आज आपने पौधा लगाया और कल वो आपको फल देने लग जाए। और हमारे यहाँ तो जो गीता में कहा जाता है कि कर्म करो फल की इच्छा, फल की जो है बात वो ईश्वर पर छोड़ दो, फल की इच्छा मत करो, तो अपने आप देर सवेर परिणाम आता है, सुखद आता है। और किसी बार किसी क्षेत्र में आप काम करते हुए असफल भी हो जाते हैं, तो फिर ये सोचकर आगे बढ़िए कि ईश्वर ने कहीं इससे बड़ी भूमिका के लिए आपका चयन किया है। निराश और हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, परिश्रम करते जाइए, जीवन अपने आप आनंदित होगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि पसीना जो होता है, परिश्रम का पसीना, उसकी महक ही कुछ अलग होती है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपने इतनी तीन बातें इतनी बढ़िया बताई हैं। आशा है श्रोताओं, मुझे आशा है कि ये जो विवेकानंद जी ने बातें बताई हैं ये हमारे लिए बहुत सार्थक रहेंगी। तो विवेकानंद जी, आज की सार्थक और प्रेरणादायक बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार हमारी तरफ से।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि जब आपने बीच बीच में मेरे से बहुत सारी कविताएं सुन ली हैं, तो इस कार्यक्रम का समापन भी एक दोहे के साथ में हो जाए। क्योंकि किसी बहुत बड़े कवि ने एक बात कही है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो दो पंक्तियों का एक दोहा, दुमदार दोहा, जिसमें एक तीसरी पंक्ति और आती है, तो उसमें वर्तमान परिस्थितियों पर मैंने कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखा है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके लिए मैंने लिखा कि गर्मी से

0: तन भी शीतलता पाए, नीम से रोग भगाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: चलिए, तो श्रोताओं, आपके अनुभव, आपके विचार और आपकी कविताओं ने निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को सोचने पर मजबूर किया, विशेषकर युवाओं के लिए जो आपका संदेश प्रेरणा का स्रोत है। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। फिलहाल मुझे, आलोक कुमार को दीजिए अनुमति। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी एक नए व्यक्तित्व, नई प्रेरणा के साथ। नमस्कार और सुनते रहिए जिंदगी के रंग गीतों के साथ। धन्यवाद।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ जिंदगी के रंग गीतों के संग इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
0: अजय मुक्केबाज MC मेरी कॉम
2: भारत की MC मैरी कॉम ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने रोमानिया की स्वेलुटा कुटा को 7-1 से हराया है।

0: अरे भाई कमाल हो गया, लगातार चौथी बार गोल्ड मेडल, कुल 5 प्रतियोगिताओं में 4 बार गोल्ड मेडल।
1: वो छोटी सी बामुश्किल 5 फुट ऊंचाई वाली मैरी कॉम, अरे उसने तो अभी सितंबर 2007 में प्यारे से जुड़वा बेटों को जन्म दिया था।
2: अरे भाई 27 साल की उम्र में 1 साल के 2-2 बच्चों के साथ लगातार चौथी बार, अरे वो कमाल है, मैरी कॉम कमाल है।

0: नवंबर 2008 के आखिरी सप्ताह में जब पूरी दुनिया मुंबई में आतंकवादी हमलों को लेकर भारत के प्रति दुख और चिंता व्यक्त कर रही थी, तभी देश के सुदूर उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की एक छोटे से कद की छरहरी महिला ने दुनिया को भारत की ताकत की वानगी पेश कर दी।
1: दो साल तक घर गृहस्थी में व्यस्त रहने के कारण मुक्केबाजी से दूर रहने और महज चार महीने के अभ्यास के बाद एमसी मैरीकॉम ने 46 किलो संवर्ग में एक बार फिर अपना लोहा मनवा लिया। चीन की मिंगबो सिटी में संपन्न प्रतियोगिता में मैरीकॉम के मुक्कों के आगे कोई नहीं टिक पाया।

0: interesting. I can see a great cheering crowd. Mario of the United States has punched to the right. Mary Kom of India defended very well and punched back. And now, showers of punches from Mary.
1: आश्चर्य की बात है कि मैरी कॉम पहले 400 मीटर दौड़ और भाला फेंक में हिस्सा लेती थी और राज्य की चैंपियन भी थी। 1999 के बैंकॉक एशियाई खेलों में मणिपुर के डिंको सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था और उसी से प्रेरित होकर मैरी कॉम ने मुक्केबाजी सीखने का फैसला किया। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। मैरी कॉम मुक्केबाजी सीख रही है, ये बात जब पिता को मालूम हुई तो

0: बेटा मैरी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना?
1: पापा, मैंने मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैंने क्या किया है?
0: अरे गांव वाले कह रहे थे कि तुम स्कूल में मुक्केबाजी सीख रही हो। ये मारा पीटी लड़कों के खेल है बेटा, तुम्हें उसमें कूदने की कोई जरूरत नहीं है।
1: पापा, मेरे प्यारे पापा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि ये खेल लड़कों का और ये लड़कियों का है? पापू, ये कोई मारा पीटी थोड़ा ही है, खास तो अपना बचाव है, सब कुछ कायदे कानून में होता है।
0: अरे बेटा, कहीं किसी के घोंसे से तुम्हारी नाक टूट गई या तुम्हारा जबड़ा टूट गया तो फिर टूटी नाक वाली लड़की से कौन शादी करेगा?
1: पापा, आप चिंता ना करें, मैं जो करूंगी उससे आपका नाम ऊंचा ही होगा।
0: मेरा नाम ऊंचा होगा? क्या कह रही है ये?
2: और हुआ भी ऐसा ही। सन 2000 में ही पहली राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीत लिया। मैरी कॉम ने भाला फेंकने की अपनी ताकत और दौड़ने के अपने कौशल को अपनी मुक्केबाजी में शामिल कर लिया था।
3: ये खबर अखबारों में छपी, मैरी का फोटो भी था और घर वालों को एहसास होने लगा कि उनकी बेटी अपने परिवार, अपने गांव और अपने राज्य और देश का नाम रोशन करने की राह पर बढ़ रही है। मणिपुर, सात बहनें कहलाने वाले राज्यों में से एक सुंदर पहाड़ी राज्य। राज्य की राजधानी से सटा चूड़ा चंद्रपुर जिले का गांव कंगहुई। एम टोनिया कॉम मेहनत मजदूरी करने वाले एक गरीब व्यक्ति। घर के चूल्हे चौके में दिन भर खटती उनकी पत्नी एम अका कॉम और उनकी बेटी मैरी कॉम। दौड़ती खेलती दुनिया की दिक्कतों के बावजूद

0: सामाजिक संस्थाएं बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करने के इरादे से उनके परिवारों को कुछ आर्थिक मदद दिया करती थी।
1: और इसी प्रक्रिया में मेनगेट जंग ने जंग मैरीकॉम यानी एमसी मैरीकॉम, पहले लोकतक क्रिश्चियन मॉडल स्कूल और फिर सेंट जेवियर मोरंग में पढ़ाई करने लगी।
0: पढ़ाई से अधिक वो खेल कूद में आगे रहती। आदिम जाति लई स्कूल इम्फाल में वो हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकी, लेकिन मैरीकॉम के खिलाड़ी मन ने हार नहीं मानी और ओपन स्कूल के माध्यम से वो परीक्षा में फिर बैठी।
1: गरीब परिवार होने के कारण मैरीकॉम को समुचित पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता था, लेकिन मैरी का खेलों के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने महज 14 दिनों में मुक्केबाजी के आधारभूत गुर सीख लिए थे। उनके मुक्के में इतना दम था कि कई सालों से बॉक्सिंग सीख रही लड़कियां उनके शुरुआती दिनों में भी उनके सामने नहीं टिक पाईं।

0: अरे लगता है कोई सवारी आ रही है।
1: रिक्शा वाले भैया, एम्बेसी चर्च चलोगे?
0: अरे आपको ले जाने से कौन मना कर सकता है। बैठिए बैठिए बैठिए।
1: पैसे कितने लोगे?
0: अरे मैडम जी, जो देना हो दे देना, आपको तो रेट मालूम ही है ना।
1: ठीक है चलो फिर।

0: एक बात बोलूं आपसे?
1: बोलो।
0: अगर आप लाल रंग पहने तो बहुत सुंदर लगेंगी।
1: सुनो, ज्यादा बकबक नहीं, अपने काम से काम रखो।
0: बात क्या है कि आप तो दिखती ही ऐसी हैं, कुछ बोले बिना मन नहीं मानता ना।
1: ए, जरा रोको रिक्शा। अरे रिक्शा रोको, सुन रहे हो तुम?
0: अरे गुस्सा क्यों हो रही है? रोकता हूँ।
1: आइंदा किसी लड़की को अकेला देखकर कमजोर मत समझ लेना, समझे?
2: विषम परिस्थितियों में संयम से काम लेना, उनसे डटकर मुकाबला करना एक अच्छे खिलाड़ी का गुण होता है। इन्हीं गुणों के कारण एमसी मैरीकॉम सन 2000 से 2005 तक लगातार 5 बार महिला हॉकी की राष्ट्रीय चैंपियन रही। ऐसा नहीं है कि मैरीकॉम के साथ प्रत्येक कदम पर सफलताएं ही थीं।
3: उन्हें बैंकॉक में होने वाली थाईलैंड एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सिलेक्शन कैंप में शामिल होने के लिए जाना था। सफर के दौरान ट्रेन में उनका पूरा सामान चोरी हो गया। उसमें उनके कपड़े, दस्ताने, पैसे, यहाँ तक के पासपोर्ट भी था।
2: इतने नाजुक हालात का मैरीकॉम ने डटकर मुकाबला किया। उनके एक परिचित अंकल ने भरोसा दिया कि यदि मैरी का सिलेक्शन हो जाता है तो वो सारी व्यवस्थाएं कर देंगे।
3: उन हालात में मैरीकॉम ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की टीम में अपना स्थान बना लिया, लेकिन इस बार मैरी को खाली हाथ वापस आना पड़ा।
2: लेकिन मैरीकॉम ने हार नहीं मानी। अमेरिका में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। सन 2002 में तुर्की में उन्होंने द्वितीय महिला विश्व स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। एशियाई प्रतियोगिताएं तो लगातार मैरीकॉम के नाम रही हैं।
3: लेकिन इतने सारे सोने के तमगे मैरीकॉम के घर का चूल्हा जलाने और लगातार प्रशिक्षण व पौष्टिक आहार के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे थे। सन 2005 तक उनके पास न तो नौकरी थी और न ही कोई स्पॉन्सर।
2: शादी के बाद जब मैरी गर्भवती हुई तो लोगों को लगा कि अब इस चमत्कारी मुक्केबाज का करियर खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गर्भ के 7वें महीने तक मैरीकॉम मुक्केबाजी की रिंग में जाती रही। वो अपने पास पड़ोस के बच्चों को मुक्केबाजी का प्रशिक्षण देने लगी। इससे उनका अभ्यास बरकरार रहा।
3: 2 साल तक बॉक्सिंग रिंग से दूर रहने के बाद जब मैरीकॉम ने फिर से मुक्केबाजी के ग्लव्स पहने तो एक नया संकट उनके सामने था।
1: कोच सर, मैं फिर से रिंग में आना चाहती हूँ।
4: फिर से? देखो मैरी, तुमने खेल को बहुत कुछ दिया, लेकिन अब तुम्हारी हालत ऐसी नहीं लगती कि फिर से।
1: कोच सर, मेरा शरीर जब तक चलेगा तब तक मैं खेलूंगी। अब बताइए मेरी फिटनेस में क्या कमी है?
4: मैरी, तुम खेलती हो 46 किलोग्राम में, ठीक है ना?
1: जी सर।
4: जब तुम गर्भवती थी तब तुम्हारा वजन क्या था?
1: 67 किलो।
4: और अब?
1: 61 किलोग्राम।
4: देखो मेरी, 61 किलो वजन में तो कोई जगह खाली है ही नहीं। अब तुम 46 किलो कैसे बनोगी? यानी समझ गई ना?
1: कोई बात नहीं सर, मैं आपसे कुछ दिनों बाद मिलती हूँ।
4: कुछ दिनों बाद मिलती हूँ।

0: वजन कम करने की चुनौती को मैरी कॉम ने सहर्ष स्वीकार किया। उनके पति के ऑनलर ने इस घड़ी में उनका साथ दिया। ऑनलर मोटरसाइकिल पर होते और मैरी कॉम दौड़ लगाती। पंद्रह किलो वजन कम करना लेकिन अपनी ऊर्जा को बचाए रखना कोई साधारण काम नहीं था। साथ में दो बच्चों को भी पालना था। बच्चे केवल दो महीने के थे और मैरी कॉम को गुवाहाटी में हुई एशियाई चैंपियनशिप के लिए कैंप में जाना पड़ा।
1: उनकी गैर मौजूदगी में उनके दोनों बच्चों की देखभाल उनके पति ने की।
0: तभी तो जब चीन में संपन्न पांचवी महिला अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम को गोल्ड मेडल मिला तो उन्होंने

0: लेकिन रवानगी के समय मुझे हैरानी से देख रहे थे कि मम्मी उन्हें छोड़कर कहाँ जा रही हैं। उनसे दूर रहना मुश्किल था, लेकिन मैं मुक्केबाजी को उतना ही प्यार करती हूँ।
1: मैरी कॉम को पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार सहित कई सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। इम्फाल के खेल गांव की ओर जाने वाली सड़क का नाम MC मैरी कॉम मार्ग रखकर मणिपुर सरकार ने इस जीवट वाली मुक्केबाज महिला को

0: किसी ने पूछा, यदि आप मुक्केबाज नहीं होती तो?
1: तो मैं गायिका होती, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: अब मैरी कॉम का लक्ष्य है ओलंपिक में हिस्सा लेना।
1: मेरा सबसे बड़ा सपना है ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करना, और उम्मीद करती हूँ कि सन 2012 में लंदन ओलंपिक में मेरा ये सपना जरूर पूरा होगा।
2: खेल जिंदगी को मैरी कॉम की तरह एक ऊंचे मकाम तक पहुंचा सकते हैं, बशर्ते इसके प्रति लोगों का नजरिया बदले।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।

मार्च का महीना है, होली के रंगों के साथ ही स्वेटर रजाई बक्सों में बंद होने लगे हैं। पिछले यही तो दिन थे जब अचानक सुबैया सुबह सुबह आया था, चाय की चुस्की के साथ बोल पड़ा था, यहां के हल्ले गुल्ले भीड़ भाड़ से परेशान हो गए हैं, कहीं ऐसी जगह चलो जहां कुछ पल सुकून के मिले। ढेर सारे नक्शे किताबें पलटी थी हमने। अरे हाँ सुबैया, मेरा दोस्त, इससे तो मिल ले, मेरा मित्र, मेरा सहकर्मी, शांत, गंभीर, संकोची लेकिन जिज्ञासु,

हम पहुंच गए वहां जहां लगा कि शायद स्वर्ग की कल्पना यही होगी। वहां देखे सुने महसूस किए हर पल हर घटना को मैंने अपनी डायरी में दर्ज किया है। तो मेरी डायरी के सहयात्री बनेंगे

0: यमुना का उद्गम स्थान। यमुनोत्री तक की यात्रा आसान नहीं थी। एक ओर ऊंचे पहाड़, चढ़ाई, उस पर तेज ढलान, उन पर चढ़ना मेरे लिए मुश्किल था। जैसे तैसे उठते बैठते हांफते हुए चढ़ तो गए। साथ में कुछ लोग और भी थे, उन्होंने हिम्मत बनाए रखी।
1: अब मुश्किल लगेगी भाई।
2: चलो भाई, बस बस थोड़ी दूरी तो है।
0: अरे तुम तो अभी कम उम्र के हो सुरैया।
1: मैं थोड़ा सुस्ता लूँ।
2: ठीक है।

चढ़ते वक्त गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन पसीना नहीं आ रहा था। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक ओर गहरे खड्ड और घाटियां जो हरे भरे पेड़ पौधों से ढकी हुई थी, दूसरी ओर ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी दूर दिखाई दे रही थी। तेज हवा अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही थी, लेकिन पहाड़ियों का सिलसिला चलता ही जा रहा था।

0: अरे लगता है हम यमुनोत्री पहुंचने वाले हैं।
1: अरे चलो चलो, वो उस सामने ही यमुनोत्री है।
0: हाँ सामने? सच में?
1: हाँ हाँ,
0: इतना पास
1: सामने। चलो संभल कर।
0: अब मुश्किल लगेगी भाई।
2: फिर चढ़ना शुरू किया। सस्ताने से थोड़ी ताकत व हिम्मत बन गई।
3: बर्फ की सफेदी इतनी थी कि आसमान का नीलापन भी कम दिखाई दे रहा था। मेरे लिए ये एक नया अनुभव था। कुछ देर की चढ़ाई के बाद हम यमुनोत्री पहुंच गए।
1: अरे बस बस पहुंच ही गए। आ जाओ आ जाओ।

0: देखो सूर्य के किरणों का कमाल।
1: वाह रे कुदरत, बर्फ के इतने रंग। अरे मैंने कभी सोचा भी नहीं था सूर्य की किरणें बर्फ में रंग भर सकती हैं।
0: वाह, हम यही कोई समुद्र तल से 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर हैं। हर यमुनोत्री उत्तराखंड राज्य के टिहरी और उत्तर काशी जिले में पड़ता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है बदरपुच, जानते हो ये सुमेर भी कहलाती है।
1: अच्छा,
0: इसका एक भाग है कलिंद, यही यमुना का उद्गम है।
1: वाह सुभैया, खूब जानकारी इकट्ठा की है। लगता है बहुत सारे नक्शे देखे हैं, तभी यमुना को कालिंद भी कहते हैं। सर्दी बहुत थी, पहने हुए गर्म कपड़े सर्दी नहीं रोक पा रहे थे। पास में चाय का एक खोखा था, हमने चाय पी, कुछ गर्मी आई। कभी कभी सांस लेने में कठिनाई सी जरूर होती थी, हम हांफने लगते थे क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यमुनोत्री एक हिमनद यानी बर्फ का चलता हुआ ग्लेशियर है, इसी से यमुना नदी निकलती है। यमुनोत्री पीर पंजाल की पहाड़ियों का ऊपरी भाग है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। पीर पंजाल की पहाड़ियां छोटे और बड़े हिमालय के बीच का भाग है। यहां पर वायुमंडल की निचली परत ट्रोपोस्फीयर में तापमान ऊंचाई के अनुसार घटता जाता है, इसीलिए पहाड़ों पर तापमान कम होता है, सर्दी मैदान से अधिक पड़ती है। यमुनोत्री पर चारों ओर सन्नाटा था, हम केवल चंद ही लोग थे वहां, एकदम जीवन रहित। यहां तक कि परिंदे भी दिखाई नहीं पड़ते थे, केवल बर्फ ही बर्फ, वो भी दूर दूर तक। बर्फ पर चलने से पैर नीचे की ओर धस रहे थे। तापमान शून्य से कम होने के कारण पेड़ पौधे घास फूस कुछ भी नहीं उग पाते।

लोग टहलते हुए पहाड़ की दूसरी ढलान की ओर गए। वहां कुछ और ही देखने को मिला। बर्फ के नीचे से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था, और वो भी शून्य से कम तापमान पर, जहां सब कुछ जमा हुआ था।

0: सब कुछ जमा हुआ है, वहां पानी कैसे?
1: जब करीब जाकर देखा, बर्फ का निचला भाग खोखला था। अंदर हाथ डालने से पता चला कि बर्फ का खोखलापन दूर तक है।
0: इसका कारण क्या है, मैं सोचता रहा
1: और अंत में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बर्फ जमीन की गर्मी से पिघल रही है। एक पतली सी पानी की धार ढलान से नीचे की ओर बह रही थी।

पानी की धारा का रुख उत्तर की ओर था। इसके साथ साथ हमने नीचे उतरना शुरू किया। यहां छोटी छोटी कई और धाराएं भी मिल रही थी। पानी को हाथ में लेकर देखा, बहुत ठंडा था। ठंड से हाथ में ठिठुरन चढ़ गई। उतरते हुए देखा नीचे की ओर बर्फ कम हो रही थी। केवल दो पहाड़ों के बीच की घाटियों में काफी बर्फ थी। हिमालय पर्वत परतदार चट्टानों से बना है। परतों के बीच बीच में मिट्टी, कंकड़, पत्थर देखे जा सकते हैं। ऐसी बनावट कमजोर होती है, खास तौर से बरसात के समय। पानी जब मिट्टी, कंकड़, पत्थर के बीच से गुजरता है तो चट्टानें कमजोर होकर खिसकने लगती हैं। बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड का खतरा रहता है।

कुछ दूर चलने पर हमें मलबा दिखाई दिया। अब पहाड़ एवं ढलानों पर कहीं कहीं घास दिखाई देने लगी। मैंने एक चोटी से खड़े होकर देखा, कुछ दूर भेड़ बकरियां चरती दिखाई दे रही थीं।

पानी की धारा भी अब बड़ी हो गई थी। इसी के साथ हम नीचे की ओर उतर रहे थे। पानी की इस धारा को यमुना नदी मानने में कुछ झिझक हो रही थी, सो चरवाहों के पास जा पहुंचे।

0: अरे भैया जरा सुनना।
1: कहो बाबूजी।
0: क्या यही यमुना है?
1: यमुना नदी देख रहे थे?
0: हाँ
1: यही यमुना है।
0: क्या इतनी छोटी सी?
1: हाँ आगे चलकर बड़ी हो जाएगी।
0: अच्छा अच्छा हमने चारों ओर देखा कि घाटियों में बड़े बड़े पेड़ थे, ढलानों पर घास थी, चट्टानें काई से ढकी थी, कहीं कहीं नई घास निकल रही थी। चरवाहों के साथ साथ हम भी आगे बढ़ने लगे। यहां पर चरवाहों को बकरवाल कहते हैं। हमने स्थानीय बोली में उम्र में छोटे दिखाई देने वाले एक चरवाहे को रोका और भुला कहकर संबोधित किया। भुला का मतलब है छोटा भाई।

0: अरे सुनो भाई।
1: जी साहब।
0: भोला, इतनी ऊंचाई पर इतनी ठंड में भेड़ों के साथ क्यों आते हो?
2: साहब ऐसा है, गर्मियों के समय मैदानों में पानी और घास सूख जाती है। हिमालय के पहाड़ों में पानी घास फूस खूब मिलता है साहब।
0: अच्छा अच्छा, ये बताओ कि कब तक रहते हो यहाँ?
2: हम यहाँ आना शुरू करते हैं साहब अप्रैल मई में।
0: अच्छा।
2: पहले शिवालिक की पहाड़ियों में घास चराते हैं। यहाँ बड़े पत्ते वाले पेड़ हैं, भेड़ बकरियाँ कम खाती हैं, इसलिए यहाँ कम समय रहते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवालिक की पहाड़ियों के बाद आप कहाँ जाते हैं?
2: शिवालिक के बाद साहब धौलाधार के पहाड़ों में चराते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं क्योंकि धौलाधार के पहाड़ों में खूब घास मिलती है।
0: अच्छा।
2: गर्मियों में बर्फ पिघलने के बाद नई नई घास फूटती है जो भेड़ बकरियों को ताकत देती है। इसे खाकर ये अच्छी खासी तंदुरुस्त हो जाती है साहब। हम इन पहाड़ों में कई महीने रहते हैं। पहाड़ की चोटियों पर सर्दियों में बर्फ खूब जमती है साहब। जब घास कम होने लगती है तो हम आगे बढ़ जाते हैं।
0: अच्छा भोला, तुम्हारे बाल बच्चे?
2: हमारे बाल बच्चे सामान के साथ खच्चर या गधों पर बाद में आते हैं। छोटे बच्चों को सामान के साथ गधों पर बैठा देते हैं।
0: गधों पर?
2: हाँ, औरतें हाँकती हुई चली आती हैं। परिवार के साथ कुत्ते होते हैं साहब, वो हमारी रक्षा करते हैं साहब।
0: भाई तुम्हारा जीवन तो बहुत कठिन है भोला।
2: नहीं नहीं साहब, यही तो हमारी जिंदगी है, अच्छा लगता है साहब।
0: अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था क्या है?
2: साहब पढ़ाई लिखाई का तो कोई जुगाड़ नहीं हो पाता, क्या करें, बच्चों को भी यही काम करना पड़ेगा। पैसों का जुगाड़ हो तो पढ़ाई लिखाई की सोचे।
0: धौलाधार के बाद कहाँ जाते हो?
2: धौलाधार की पहाड़ियों के बाद छोटे हिमालय की पहाड़ियों की ओर निकलते हैं। वहाँ हरी घास खूब मिलती है साहब।
0: अच्छा।
2: छोटे हिमालय की ऊंचाई धौलाधार से भी ज्यादा है साहब।
0: अरे वाह।
2: ठंड भी ज्यादा पड़ती है।
0: तो ठंड से बचने के लिए क्या करते हो?
2: ठंड से बचने के लिए साहब हमारे पास ऊनी कपड़े जैसे कंबल, लोई, पट्टू के कोट होते हैं। रात में पड़ाव पर आग जलाते हैं, जंगली जानवरों से बचाव हो जाता है, और हमारे कुत्ते तो रक्षा करते ही हैं साहब।
0: अच्छा ये बता भूला कि सबसे लंबा पड़ाव किन क्षेत्रों में होता है?
2: साहब सबसे लंबा पड़ाव पीर पंजाल के पहाड़ों में रहता है।
0: पीर पंजाल?
2: जी, पीर पंजाल के पहाड़ों में डेरा डाल देते हैं, तंबू ही हमारा घर होता है। हम बकरवाल लोगों का जीवन तो घास फूस पानी चरागाह से जुड़ा हुआ है ना साहब।
0: लंबे पड़ाव के समय तुम क्या काम करते हो?
2: पहाड़ों के चढ़ने की थकान उतारते हैं साहब। जड़ी बूटियां इकट्ठी करते हैं।
0: अच्छा।
2: यही

0: भेड़ बकरियां दूर दूर तक चरती हैं। जगह जगह के बकरवाल यहाँ आकर इकट्ठा होते हैं और हमारी पंचायत भी यही होती है साहब।
1: अच्छा,
0: बहुत अच्छा।

बकरवाल से विदा लेने के बाद हमने नदी के साथ नीचे की ओर उतरना शुरू किया। एक सपाट भूभाग दिखाई दिया जहां तरह तरह के फूल खिले हुए थे। बड़ा अजीब सा लगा, जंगल में मंगल। फूलों को देखकर हमारी थकान दूर हो गई।

0: ऐसा निजाम है कुदरत का। हाँ, एकाएक ये फूल कहाँ से?
1: भाई ऐसे फूल हिमालय में एक खास ऊंचाई पर मिलते हैं।
0: पर क्यों?
1: एक खास वातावरण के कारण।
0: अब मैं कुछ समझा नहीं।
1: देखो सुबैया, तुमने देखा कि सबसे ऊपर बर्फीले क्षेत्र, काई व हरी भरी घास थी।
0: हाँ,
1: इसके बाद जंगली फूल और जड़ी बूटियां, फिर पेड़ पौधे, जीव जंतु व मानव बस्तियां।
0: अच्छा अच्छा, यानी एक खास आबो हवा में ही ऐसे फूल वाले पेड़ उग सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अब समझा।
1: तभी दूसरी ओर से एक और भेड़ बकरियों का समूह आता दिखाई दिया।

0: करीब गया।
1: सुनिए
2: जी साहब,
0: आप भी बकरवाल हैं?
2: नहीं नहीं साहब, हम तो भोटिया कबीले के हैं साहब।
0: भोटिया?
2: भोटिया?
0: हाँ। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताओ।
2: साहब, हमारा पुराना संबंध तिब्बत से था।
0: अच्छा।
2: पहले भारत चीन के बीच व्यापार करते थे साहब। 1962 में भारत चीन की लड़ाई के बाद व्यापार बंद हो गया साहब।
0: अच्छा।
2: अब हम केवल भेड़ बकरियां पालते हैं साहब। हम में से कुछ हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में याक भी पालते हैं साहब।
0: अच्छा, याक भी पालते हैं?
2: हाँ साहब, हमारा एक खास कबीला है साहब, जो गर्मियों में बद्रीनाथ केदारनाथ के आसपास रहते हैं साहब। माना हमारा आखिरी गांव है जो भारत चीन की सीमा पर है साहब। माना हमारा गर्मियों का ठिकाना है साहब। हम पांडवों को अपना पूर्वज मानते हैं साहब।
0: क्या कहा? पांडवों को?
2: हाँ साहब।
0: अरे वाह,
2: आज भी खास उत्सवों पर हम पांडव लीला का अभिनय करते हैं। ये उत्सव कई रोज चलता है साहब। बड़ा ही आनंद आता है।
0: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा।
2: और हाँ साहब, हम बड़े हिमालय से लेकर मैदानी भागों तक भेड़ बकरी चराते हैं साहब। हमारी औरतें ऊन की कटाई, बुनाई, कपड़ा बनाना, बेचना, सभी कामों में निपुण है साहब।
0: सभी कामों में?
2: हाँ, ऊन के बनाए गए कपड़ों को वो खुद ही बेचती है साहब।
0: क्या कहा? खुद ही बेचती है?
2: हाँ साहब।
0: कमाल की बात।
2: अच्छा साहब, नमस्ते साहब।
0: अच्छा, नमस्ते नमस्ते। बकरवाल और भोटिया में कुछ बातें समान है, जैसे भेड़ बकरियां पालना, चरागाह का प्रबंध करना, आने जाने के लिए घोड़े, रक्षा के लिए कुत्ते पालना आदि। ऐसे घुमंतू कबीले हिमालय में कई और भी हैं। भेड़ बकरियों का पालन इनका मुख्य धंधा है। चरागाहों के साथ घर ठिकाना सब बदलता है। गर्मी और सर्दी के ठिकाने अलग अलग होते हैं। भोटिया कबीले के सरदार से बातें करते करते कितनी दूर निकल आए पता ही नहीं चला। अब यमुना की धारा बड़ा रूप धारण कर चुकी है और मुझे लगा यमुना मुझसे कुछ कह रही है।

0: मेरा नाम यमुना है, लोग मुझे जमुना के नाम से भी पुकारते हैं। प्राचीन ग्रंथों में मुझे सूर्य की पुत्री सूर्य कन्या, यम की बहन यमी और कालिंदी भी कहते हैं। गंगा की तरह मैं पवित्र नदियों में से एक हूँ। मैं उत्तराखंड राज्य के यमुनोत्री हिमनद से निकलती हूँ, जो उत्तर काशी के टेहरी जिले में पड़ता है। यहाँ पीर पंजाल की पहाड़ियों की कुछ चोटियाँ हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। इन्हीं चोटियों के बीच यमुनोत्री हिमनद स्थित है। यहाँ बर्फ का ही साम्राज्य है। चारों ओर दूर दूर तक केवल बर्फ। वही मेरा उद्गम स्थान है। इसकी ऊंचाई कहीं 3000 मीटर तो कहीं 4000 मीटर है। बर्फ के पिघलने से मेरे जीवन की शुरुआत होती है। जमीन की गर्मी मुझे जीवन देती है। पहाड़ों की ढलान मुझे गति प्रदान करती है। कई सरिताएं मिलकर मेरा आकार और पानी की मात्रा बढ़ाती है। लेकिन आज मैं संकट में हूं। हिमनद जलवायु के परिवर्तन से सिकुड़ रहे हैं। इसका असर आप भी महसूस कर रहे होंगे।
1: हम यमुना के साथ जल्दी जल्दी आगे बढ़े, सोचा रुकने का ठिकाना तलाश करें। थोड़ी देर में बस्ती के पास पहुंचे। ये पहली बस्ती थी बरकोट। पहाड़ी की ढलान पर बसा था ये छोटा सा कस्बा, और साथ में यमुना नदी बह रही थी। सड़क के दोनों ओर घर, नीचे दुकानें, चाय व खाने के ढाबे थे। एक छोटे से होटल में हमने खाना खाया और अपना ठिकाना तलाश कर लिया।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है पशु पक्षियों पर आधारित प्यारे प्यारे बाल गीत।

0: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। लेखक प्रोफेसर के.जी. रस्तोगी। ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी। कार्यक्रम निर्माण रमेश रानी शर्मा। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार किसान भाइयों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का, सभी किसान पंच भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथी कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हमारे किसान साथी इस कार्यक्रम का इंतजार भी कर रहे हैं। और तो इंतजार की घड़ी अब खत्म है क्योंकि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM जो झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है वो लेकर आ गया है आप का मन पसंदीदार कार्यक्रम खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और खास तौर पर हम छोटे छोटे बिंदुओं पर बातचीत करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आज के

0: हमारे इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आज हम स्टार्टअप पर जरूर बात करेंगे, क्योंकि स्टार्टअप हमारे देश की एक महत्वाकांक्षा योजनाओं में से एक है कि स्टार्टअप में किस तरीके से हमारे किसान साथी एक आधुनिक पद्धति से, एक वैज्ञानिक पद्धति से और नई नई तकनीकी से किस तरीके से खेती कर सकते हैं, उस पर एक नजर डालेंगे। साथ साथ में पशुजन, जो चूंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है, गर्मियों के इस मौसम में खासतौर पर दुधारू पशु जो दूध देने वाले रहते हैं उनका ख्याल हम किस तरीके से रख सकते हैं, क्या खान पान उसका उनका होना चाहिए, उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। और साथ में हम तीसरी बात बताएंगे, जो हमारे कैलेंडर रहता है, मासिक कैलेंडर, यानी इस माह में हम किस तरीके से अपने पशुओं को क्या कुछ देना चाहिए, उस पर भी जिक्र करेंगे। और साथ में एक राजस्थान के उन्नतशील किसान जिन्होंने पानी कम पानी वाली फसलें यानी गेहूं की प्रजाति लगाकर अपने खेती में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, यानी खेती में उन्होंने एक लक्ष्य उन्होंने बनाया था कि हम कम पानी वाली फसलों करेंगे, और खास तौर पर उन लक्ष्य को उन्होंने पूरा किया और आज उनका नाम सभी की जुबान पर रहता है। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और साथ में आपको बता देना चाहते हैं कि कार्यक्रम खेती बाड़ी में श्रोता साथियों खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं, खासतौर पर ये देखते हैं कि गर्मियों का मौसम है और इस गर्मियों के मौसम में, चूंकि अभी हमारे झाबुआ जिले के हमारे साथी किसान साथी घर पर बैठे होंगे, क्या कुछ कर सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, आपको इस रिपोर्ट को हम सुनवाते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: आज के युवा स्टार्टअप्स के जरिए अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। एक तरफ इन्हें आर्थिक सहायता देकर सरकार भी इनका साथ दे रही है, तो वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से स्टार्टअप्स के कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट।
3: भारत बदल रहा है, देश के युवा अब एक नई बागडोर संभालने को तैयार है, जिसमें नौकरी तलाश करने की परिपाटी को छोड़ते हुए नौकरी देने पर फोकस किया जा रहा है। और इसी सोच को आगे ले जाने के लिए सरकार भी अपने अहम कदम उठा रही है, जिसमें स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी की तंत्र बनाना है। स्टार्टअप देश के युवाओं के लिए एक ऐसा मौका है जिसके जरिए वो खुद का काम शुरू करते हैं, खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि स्टार्टअप सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और इंजीनियरिंग आदि सेवाओं में ही किया जा सकता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप तेजी से कारोबार के मैदान में आ रहा है। स्टार्टअप से जहां युवाओं को रोजगार मिलता है, वहीं ये किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने में भी मदद करता है। इससे खेती में निवेश बढ़ता है और किसान की आय में भी बढ़ोतरी होती है।
4: हम लोग एग्री स्टार्टअप्स को यहाँ पे इंक्यूबेट करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं एग्री स्टार्टअप्स के लिए, जो कि भारत सरकार की स्टार्टअप नीति के तहत एनरोल्ड है। और उन स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग स्टेजेस पर, जैसे कि यदि आपके पास अपना कोई स्टार्टअप का विचार है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप एक अपना स्टार्टअप बनाएंगे, तो उसके लिए हमारा एक प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम है, जो कि एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, जहां पर आप आकर उस आइडिया को कॉन्सेप्ट नोट बनाने के लेवल तक जा सकते हैं। तो वो उस तरीके के प्रोग्राम्स भी हम रन करते हैं। देन फिर अगर आपका कॉन्सेप्ट प्रिपेयर्ड है और आप एक बेसिक लेवल पर हैं, लेकिन आपको उसको फाइनल प्रोटोटाइप के लेवल तक नहीं ले जा पा रहे, तो उसके लिए अलग प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर फंडिंग्स भी एसोसिएटेड हैं। जो भी फंडिंग भी ग्रांट इन एड की तर्ज के ऊपर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तीसरे तरह के प्रोग्राम्स वो हैं जिनके अंदर आपका अगर एक प्रोटोटाइप रेडी है और आप कमर्शलाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 25 लाख तक का फंड हम प्रोवाइड करते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की RKVY रफ्तार स्कीम के तहत हम उसके अंदर फंड्स दे रहे हैं। उसके अलावा महिला उद्यमियों के लिए भी हम वुमेन क्वेक करके एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके अंदर हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, उनको सशक्त बना रहे हैं कि वो कैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को आगे ले जा सके। तो कुछ प्रोग्राम्स और हैं जो हम किसान भाइयों के लिए करना चाहते हैं, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हम अपने स्टार्टअप्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जहां पे SCOs को जो जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को हमारे स्टार्टअप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके की पहलों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
3: कृषि क्षेत्र में आ रही नई नई तकनीकें भी एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रही हैं। पूसा मेले में ऐसे ही कई इनोवेटिव आइडियाज दिखाई दिए जो कृषि को और बेहतर बना सकते हैं।
5: हमारे स्टार्टअप का नाम रावटेक लैब्स है और हम क्वालिटी एनालिसिस सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये एप्पल को स्कैन करने की मशीन बनाई है हमने। तो इसमें नॉन इन्वेसिवली बिना कट करे, बिना जूस करे हम आपको बता सकते हैं कि इसकी मिठास कितनी है, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, कि ये कितने दिनों बाद सड़ना स्टार्ट हो जाएगा और ये इसकी मॉइस्चर कंटेंट कितनी है। सिमिलर प्रोडक्ट्स हमने बनाई है, एक ग्रेन एनालाइजर भी बनाई है जिसमें गेहूं जैसे ग्रेन्स की आप प्रोटीन कंटेंट, ग्लूटेन कंटेंट नॉन इन्वेसिवली चेक करके देख सकते हैं।
3: हमने पूसा मेले में लगे एक स्टॉल में मिनी ड्रोन देखा। ये ड्रोन खेतों की रखवाली करने और सूचनाएं देने में सक्षम है। महज 8 से 10 हजार कीमत का ये ड्रोन किसानों की एक बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है।
4: ये हमारा ड्रोन है, ये ड्रोन इनोवेशन के साथ हमने एसोसिएट करके ये चीज बनाया है। तो ये बेसिकली काम ये करता है, ये आपका सर्वेलेंस का काम करता है। जैसे आप इसको, ये आपके खेत में जाता है और आपके खेत में कोई भी मोशन होता है, कोई भी हलचल होती है, तो ये उस चीज को डिटेक्ट करता है और आपके फोन में इसकी फोटोज भेजता है। और इसमें स्पीकर भी लगा है, तो कोई एनिमल वगैरह आता है, जैसे अगर एक गाय आई है तो वो उसमें एनिमल किसी लायन का साउंड करेगा, तो लायन का साउंड करेगा तो उससे क्या होगा कि मतलब जो गाय है वो वहां से भाग जाएगी, वहां से हट जाएगी। तो ये आपको कुछ 10,000 का पड़ेगा एंड ये सब अलग अलग प्राइजेस है। ये आपको 6,500 का पड़ेगा एंड बाकी सब ये 4,500 का आपको पड़ेगा। एंड या दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट एंड किसानों को कहाँ मिलेगा, तो ये हमारा वेबसाइट है www.fivefarm.com, तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं। वहां पर आप लाइक साइट में जाके आप देख सकते हैं, काफी सारे सामान है हमारे वहां पे, तो आप वहां पे जाके गो आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं।
3: अब पढ़े लिखे युवा नए नए आइडियाज के साथ कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स कर रहे हैं। कृषि उद्यमिता में नए आयामों को बढ़ावा देने और युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से भी समय समय पर कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनके तहत युवाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी दी जाती है। युवा इनका लाभ लेकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
0: रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस खास रिपोर्ट को सुना। कार्यक्रम में बहुत सारी बातचीत, अब बहुत सारे सेगमेंट हैं जो आपको बताने हैं। सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम, अपना रेडियो अपनी बातें।
3: गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं, अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने भी लगा है जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। जब बात देश के उन हिस्सों की हो जहां अभी से तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है, ऐसे इलाकों में जरूरी हो जाता है कि पशु की हर तरह से समुचित सुरक्षा की जाए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से नुकसान की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए पशुपालकों और किसानों को चाहिए कि वो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। कौन से हैं वो पहलू, इस बारे में पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज से चर्चा की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने।
6: किसान भाइयों बहनों, बदलते मौसम में हमें अपने दुधारू पशुओं का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, जैसा कि आप जानते हैं गर्मियों का मौसम आ गया है और आगे तापमान में वृद्धि होने वाली है, तो ऐसे में हमें हमारे दुधारू पशुओं का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए?
7: देखिए, अभी सर्दी का मौसम गया है और अब गर्मी पूरे उत्तर भारत में शुरू हो गई है, बल्कि पूरे देश में ही गर्मी शुरू हो चुकी है। तो अब जिस तरीके से सर्दी में हमें कुछ विशेष प्रकार के ध्यान रखने होते हैं इस अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरीके से इस गर्मी के मौसम में भी हमें कुछ बदलाव करने होंगे। जिस तरह हम खुद भी जाड़े के मौसम में सूट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है तो हम अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो इसी तरीके से पशुओं के लिए भी कुछ हमें बदलाव करने पड़ते हैं। तो अगर इसमें बात की जाए सबसे पहले, तो जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला में वातावरण कूल होना चाहिए, ठंडा वातावरण होना चाहिए, क्योंकि इस समय अब गर्मी बहुत अधिक हो जाएगी तो बहुत अधिक गर्मी के कारण से पशुओं में हीट स्ट्रोक होने की संभावना बनी रहती है। तो पशुओं में हीट स्ट्रोक ना हो उसको कैसे बचाना है, जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला के ऊपर आप कुछ इस तरीके की चीजें डाल दें, कुछ उसके ऊपर बोरे फट्टे इत्यादि बिछा दें कि जिससे उसकी जो छत है वो अधिक गर्म ना हो। अगर आपकी पशुशाला में बिजली की व्यवस्था है, पंखा चल सकता है, तो कोशिश करें कि आप वहां पर पंखा भी चला दें, जिससे कि गर्मी को, तापमान को कम किया जा सके। दूसरा क्या है, जो पशुशाला के खिड़की दरवाजे हैं उनको खोल के रखें, जिससे कि हवा का पूरा आदान प्रदान होता रहे और बाहर से फ्रेश हवा पशुशाला के अंदर आए और अंदर की गर्म हवा जो है वो बाहर निकलती रहे। और आपने अगर बोरी फट्टे कुछ टांग के रखे होंगे खिड़कियों के ऊपर तो उनको भी हटा दें। तीसरा क्या है, जो दिन का बहुत अधिक गर्म समय होता है तो उस समय पे पशुओं को बाहर धूप में ना निकालें, या तो सुबह के मौसम में जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है उस समय, या शाम के मौसम में ही बाहर निकालें, धूप में ना निकालें, अधिकतर पशुओं को अपने छाई में रखें।
3: इसके अलावा गर्मी के दिनों में पानी की उपलब्धता बनाए रखें, जिससे पशु के शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे और वो बीमारी के शिकार ना हो पाए। साथ ही आहार में क्या तब्दीलियां करें, आइए जानते हैं।
7: गर्मी के मौसम में हम उन्हें थोड़ा सा इस तरीके का आहार देते हैं कि जो ज्यादा ऊर्जा पैदा करने वाला आहार हो, जिससे शरीर को थोड़ी गर्मी प्राप्त हो और जिससे कि वो ठंड के साथ में पशु लड़ सके। तो अब गर्मी के मौसम में उसको उतनी ज्यादा जो है उस तरीके के गर्मी पैदा करने वाले अनाज की आवश्यकता नहीं है, या उतनी ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप उसको हरा चारा दें, उसके साथ में थोड़ा भूसा खिलाएं, और जो दलिया या खली देते हैं उसकी मात्रा आप थोड़ी कम कर सकते हैं अगर बहुत अधिक गर्मी है तो। और तीसरा बिंदु है इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, वो पानी का। जो पानी है वो गर्म पानी पशु को ना पिलाएं, क्योंकि एक तो मौसम का वातावरण जो है पहले ही गर्म है, ऊपर से आप उसको गर्म पानी पिलाएंगे तो वो और अपने आप में समस्या बढ़ाएगा। तो कोशिश करें कि पशु को ताजा ठंडा पानी ही हमेशा पिलाएं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि पशु आपका हीट स्ट्रोक में आ रहा है, गर्मी की वजह से वो चारा उसने खाना थोड़ा कम कर दिया है, तो पशु को दिन में एक दो बार ठंडे पानी से नहलाएं, तो उससे भी पशु की जो हीट स्ट्रोक है वो थोड़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा आप जैसे बरसात का मौसम फिर आगे शुरू हो जाएगा तो उसमें कई तरीके की बीमारियां हैं, जैसे हेमरेजिक सेप्टिसीमिया है, ब्लैक क्वार्टर है, एंथ्रेक्स है, ये सारी बीमारियां भी होने का खतरा रहता है। तो इसलिए आवश्यक है इस मौसम में आप अपने पशुओं को नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलकर जो टीके लगवाए जाते हैं बीमारियों के, वो टीके भी लगवा लें, क्योंकि इस मौसम में ह्यूमिडिटी आगे बहुत अधिक हो जाती है, टेम्परेचर होता है, तो सभी प्रकार के बीमारियों के कीटाणुओं को पनपने के एक बहुत ही भरपूर वातावरण मिलता है और बहुत अधिक बीमारियां फैलती हैं। तो उनमें जो भी टीकाकरण है इस मौसम में लगने वाले, जो मैंने आपको नाम बताए, उनके टीके आप अवश्य लगवा लें। और खान पान का विशेष ध्यान रखें, पशु को गर्मी से हीट स्ट्रोक से कैसे बचाना है उसका ध्यान रखें। और इसके अलावा यदि कोई उसमें पार्टिकुलर कोई समस्या आती है तो उसके लिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलें और उसका इलाज कराएं। हाँ, एक बिंदु और है, पशुओं में इस मौसम में एक्टोपैरासाइट्स की प्रॉब्लम बहुत अधिक हो जाती है, बाह्य परजीवी, उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे टिक्स, किलनी वगैरह हो जाती हैं, तो उसके लिए आप अपने पशु चिकित्सक से मिलकर और उसके बाह्य परजीवियों के लिए जो दवाई आती है साइपरमेथ्रिन वगैरह, उसका 2% घोल जो है वो ऊपर से लगाया जाता है, तो बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए उसका प्रयोग करें। और पेट के कीड़े हो जाते हैं तो पेट के कीड़ों के लिए 3-4 महीने पे एक बार दवा दे देनी चाहिए, और इस समय गर्मी के मौसम में और अधिक बरसात आएगी तो संभावना रहती है पेट में कीड़े होने की, तो उसके लिए भी आप उसको डिवर्मिंग टैबलेट्स जो हैं वो खिला दें।
3: इन तमाम बातों का ध्यान रखकर पशुपालक न सिर्फ पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रख सकेंगे बल्कि उनसे बेहतर दूध उत्पादन भी लेते रहेंगे।
8: पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गोपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक क्वार्टर के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पाइका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का

0: गेहूं हमारे देश में रबी की प्रमुख फसल है। इसकी बेहतर उपज लेने के लिए किसान अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते आए हैं, जिससे उतनी ही भूमि में बढ़िया पैदावार ली जा सके। हम गेहूं उगाने के कई तरीकों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको जिन कामयाब किसान से मिलवाने जा रहे हैं, वो एक अलग ही विधि का प्रयोग कर रहे हैं। क्या है वो विधि, आइए जानते हैं। गेहूं की बाली को छू कर देख रहे ये है किसान शिवचरण मीणा, जो इस साल अपनी गेहूं की फसल को देख कर काफी खुश है। वजह भी साफ है, सीमित जगह, सीमित संसाधन और कम पानी में बढ़िया पैदावार, ऐसे में किसान का खुश होना लाजमी है। लेकिन शिवचरण ने ऐसा क्या किया जो उनकी पैदावार अपने इलाके में सबसे अच्छी हुई, जबकि राजस्थान की मिट्टी में खेती करना सामान्य खेती की तुलना में काफी कठिन है। लेकिन शिवचरण जी ने पहले समस्या को समझा और फिर समाधान निकाला। सबसे पहले जानते हैं उनकी मिट्टी की कहानी उन्हीं की जुबानी।
1: मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा खेत है बहुत क्षारीय था, और इस क्षारीयता को कैसे खत्म किया जाए इसके लिए हम बहुत सोच विचार किया। फिर किसान दीदी किसान चैनल के माध्यम से हमें मालूम चला कि खेती को कैसे सुधारा जा सकता है। कुछ कृषि अधिकारियों से हमने सहायता ली तो हमने देखा कि जमीन का सबसे पहले वाटर लेवल होना जरूरी है। तो हमने अपने जॉन डियर का वाटर लेवलर मशीन को खरीदा, उससे खरीदने के बाद इस खेत को वाटर लेवल किया, और वाटर लेवल करने के बाद में हमने इसमें देसी खाद और सरसों का डीकम्पोज करके उसका जो डंठल थे उसको इसमें मिलाया। उसके बाद हमने इसमें करीब 18 इंची गहरी MB प्लाउ से जोत निकाली। उससे जमीन की जो सख्त मिट्टी है नीचे 6 इंची के नीचे, जिसको कभी किसान जोतता नहीं है, उसको तोड़ने के बाद में और मिट्टी पलट होने से इसमें पानी सोर्सिंग के लिए जमीन को बहुत अच्छा हो गया, जिससे ये अच्छे से पानी सोख सकती थी और उसमें फसल का गड़ना ये खत्म हो गया। उसके बाद हमने इसमें रोटावेटर लगाया, और रोटावेटर लगाने के बाद जमीन एकदम भुरभुरा करके गेहूं के लिए हमने इसको तैयार किया। जो भी खाद हमने इसमें मिलाना था वो हमने मिट्टी में पहले ही मिला लिया था रोटावेटर से पहले।
0: शिवचरण जी ने इस तरह से तो खेत को उपजाऊ बना लिया, लेकिन समस्याएं अभी भी दस्तक दे रही थी, और वो थी पानी की कमी। इसके लिए उन्होंने गेहूं की खेती की नई तकनीक का इस्तेमाल किया, और वो थी बेड बनाकर गेहूं की बुआई करना। ये देखने और सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इसके परिणाम काफी सुखद रहे। तो आइए जानते हैं इस विधि के बारे में।
1: हमने बेड प्लांटर मशीन से इसमें 1 बीघा में 7 किलो बीज डाला है, और उस 7 किलो बीज शुरू में तो बहुत कम लगा, लेकिन उसके बाद जब हमने इसमें दूसरा पानी 20 दिन बाद दिया तब वो अपना रिजल्ट दिखाने लगा, जिसके बाद हमने इसमें कैल्शियम नाइट्रेट पर बीघा में 1 थैली 5 किलो की और गंधक 5 किलो इसमें डाला। उसके बाद खेत में कोई पौधे को एकदम विकास बहुत शानदार रहा, क्योंकि बेड पर होने के कारण इसमें क्या होता है कि पानी जड़ें जो पानी की तरफ ज्यादा जाती हैं, क्योंकि पानी इसके जड़ों में रहता है नीचे लाइन में और पेड़ ऊपर रहता है, तो पानी हमेशा पेड़ की जो जड़ें हैं वो पानी की तरफ दौड़ती हैं। तो पानी हम इसमें नीचे दे रहे हैं, तो इसकी वजह से जड़ों का विकास ज्यादा रहा और उससे पौधे का सर्वांगीय विकास हुआ।
0: आइए जान लेते हैं इस तकनीक में होने वाले फायदों के बारे में।
1: हमने 33 किलो बीज की बचत करी, उसके बाद पानी इसमें आधे से भी कम लगता है, क्योंकि 80% जमीन पे तो बेड बन जाते हैं, अब 20% नालियां रहती हैं, तो 20% नालियों में ही पानी देना है, जिससे अपन को सिर्फ उसमें नमी ही मिलती है पौधे के लिए, और पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, पौधे को सिर्फ नमी की जरूरत होती है। और इस पौधे की ये खासियत और है कि ये बेड पर होने के कारण ये गेहूं कभी प्रकृति प्रकोप या हवा से गिरेगा नहीं, और गिरेगा नहीं तो अपन को इसकी पूरी फसल मिलेगी। अगर पौधे अपन गेहूं तो अच्छे पैदा भी कर लेते हैं लो नॉर्मल भी किसान, लेकिन प्रकृति प्रकोप और हवा से उसको बचाया नहीं जा सकता अच्छा गेहूं, और गिरने के बाद गेहूं का प्रोडक्शन 50% से कम रह जाता है। तो सरकार भी यही बताती है कि पानी बचाना चाहिए खेती में, और पानी बचाएंगे तो वाटर लेवल है जमीन का वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, और खेती अपन कम पानी से ड्रिप के द्वारा या फवारे के द्वारा या बेड प्लांटर मशीन के द्वारा बहुत कम पानी में अधिक उपज ले सकते हैं। इसमें हमने कोई क्यारी नहीं बनाई, ये वाटर लेवल होने के कारण इसको हमने कतारों में लाइनों में बांट दिया खेत को 3-4 लाइनों में, जिससे हम 2-2 घंटे में पानी का स्रोत बदल देते हैं, बाकी इसमें रात भर हमें खड़े रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि

0: किसान रात में भी मोड़ता है पानी, दिन में भी मोड़ता है, तो उसको रात में बड़ी समस्या होती है सर्दियों में। तो इस विधि से करने से हम बहुत संतुष्ट रहे हैं और हमारा प्रोडक्शन बाकी गेहूं से 20-25% ज्यादा रहेगा। इससे हमें साहब कम से कम आधा खर्चा आया है नॉर्मल पद्धति से गेहूं में और पानी में, और प्रोडक्शन हमारा 25% ज्यादा रहा है। यानी इसमें गेहूं 20 से 22 क्विंटल के लगभग बैठेगा और नॉर्मल पद्धति से 12 से 15 क्विंटल से ज्यादा नहीं बैठ सकता।
1: विशेषज्ञों से ली गई सलाह से शिवचरण जी के खेतों की तस्वीर बदल रही है। उनकी इस कामयाबी के साक्षी बने बाकी किसान भी अभी से अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं।
2: आप तक देखा होगा कि बुवाई की पद्धति अलग अलग होती है। एक किसान छिड़कने वाली विधि से बुवाई करता है, दूसरा सीड ड्रिल से बुवाई करता है, लेकिन एक ये जो पद्धति है अभी अपनाई है, ये नई टेक्नोलॉजी और अच्छी जो उन्नत किसान है वो इस पद्धति को अपना रहे हैं। इसको कहते हैं बेड कल्टीवेशन। बेड कल्टीवेशन में हमें काफी फायदा है। इसके अंदर बीज की मात्रा बहुत कम लगती है, पानी की मात्रा हमें बहुत कम उपयोग में लेनी पड़ती है और फसल बहुत ही अच्छी इसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी इसके अंदर फसल उपजाऊ होती है। मैं किसान साथियों से ये निवेदन करता हूं कि पुरानी टेक्निक से हटके और ये टेक्निक अपनाएं। ये जो फसल की है, ये शिवचरण मीना जी ने अपने खेत में नई टेक्नोलॉजी से ये फसल का उत्पादन किया है। मैं इससे प्रभावित होकर सब किसानों को ये बताना चाहता हूं कि एक बार देखें और ये ही तरीका आप अपनी खेती में अपनाएं, जिससे कि आपको पैसे की, खाद की, पानी की और बीज की सारी बचत हो और उपज इसमें अच्छी आप प्राप्त करें।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 FM। आपनू रेडियो, आपड़ी बातें।

0: किसान भाइयों बहनों, जब भी बात आती है कृषि के क्षेत्र की तो इसमें बदलाव के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं ताकि हमारे पर्यावरण को स्वस्थ बनाया जा सके, देश की मिट्टी को भी मजबूत बनाया जा सके और साथ ही साथ हमारे किसानों की उन्नति हो सके, हमारे किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि हो सके। बता दें, इसी दिशा में एक प्रणाली की शुरुआत की गई है जिसे नाम दिया गया है अक्षय कृषि। जी हाँ, अक्षय कृषि परिवार द्वारा इस प्रणाली की शुरुआत की गई है जिससे आप जान सकते हैं कि हमारे देश की मिट्टी को हम स्वस्थ कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर मिट्टी स्वस्थ होगी तो हमें अच्छी गुणवत्ता वाली उपज भी मिलेगी, लागत में भी कमी आएगी। तो क्या है ये अक्षय कृषि, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में।
1: ऋग्वेद में कहा गया है, कृषि मित कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्य मानः, अर्थात कृषि करो और सम्मान के साथ धन अर्जित करो। ये शब्द किसानों के लिए कितने सुखद हैं। कृषि शुरू से ही हमारी सभ्यता की समृद्धि का प्रतीक रही है जिससे धरती का, मानव जीवन का और धरा पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों का पोषण होता आया है। लेकिन खेती की कुछ बदलती तकनीकों ने प्राकृतिक खेती को हाशिए पर ला दिया है। एक बार फिर हमें जागरूक होने की जरूरत है, प्राकृतिक खेती के महत्व को समझने की जरूरत है और इसके लिए सबसे पहला कदम है लोगों में जन चेतना लाना। इन्हीं उद्देश्यों को पाने के लिए अक्षय कृषि अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत 2 मई को उपराष्ट्रपति जी ने नई दिल्ली में अपने निवास पर अक्षय कृषि परिवार द्वारा भूमि सुपोषण और संरक्षण पर चलाए गए राष्ट्रव्यापी अभियान पर आधारित पुस्तक भूमि सुपोषण का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास विषयों से संबंधित प्रकाशनों का अनुवाद हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में होना चाहिए जिससे आम किसान उनसे लाभान्वित हो सके। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि देश के एक बड़े भाग में विशेषकर पश्चिमी और दक्कन के क्षेत्र में मिट्टी के सूख कर रेतीली बनना गंभीर चिंता व्यक्त का विषय है। एक अनुमान के अनुसार हर साल प्रति हेक्टेयर 15 टन मिट्टी नष्ट हो रही है, इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे फिर से स्वस्थ बनाया जाए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के अधिक प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है और उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। देश के अधिकांश राज्यों में ज्यादातर भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, साथ ही फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है, भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की नमी कम हो गई है जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहे हैं। नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों की कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है, ऐसे में मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गौमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है बल्कि भूमि की जैविक संरचना को बचाया जा सकता है।
2: विगत वर्ष 2021 में भूमि के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया आपका यह अभियान सर्वदा अभिनंदनीय है। मुझे यह जानकर विशेष संतोष है कि आपके इस अभियान में 33 राष्ट्रीय संगठन भी जुड़े, अपने देश के 20 राज्यों में लगभग 18,000 सालों तक पहुंचकर वह इस महत्वपूर्ण विषय पर जागरूकता पैदा की। राष्ट्र हित में आपके प्रयास सफल हो, मेरी हार्दिक शुभकामना। देश के एक बड़ा भाग में विशेषकर पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्र में मिट्टी सूख कर रेतली बन रही है, फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है, भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की समी कम हो गई है जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहा है। नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों का कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है। कृषि में रसायनों का प्रयोग से भूमि पर दुष्प्रभाव एक वैश्विक समस्या है, इट इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम। एक अनुमान के अनुसार विश्व भर में अगले 20 वर्षों में अनाज की पैदावार 40% कम हो चुकी होगी और आबादी लगभग 10 बिलियन तक बढ़ चुकी होगी। भारत भी इस आपदा से अछूता ना रहेगा। दिस इज ए रियल वार्निंग टू ऑल ऑफ अस। इसलिए आवश्यक है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे पुनः स्वस्थ बनाया जाए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के नगन प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है, उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गौमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है, बल्कि भूमि के जैविक संरचनाओं को बचाई जा सकते हैं।
1: इस दौरान उपराष्ट्रपति ने आग्रह किया कि कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अनुसंधान संस्थानों के पाठ्यक्रमों में प्राकृतिक जैविक खेती को शामिल किया जाए।
2: हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार सभी सदियों तक कृषि केंद्रित रहा है। भारतीय शास्त्र में कहा गया है, जीव जीवनम कृषि, अर्थात जीव का जीवन ही कृषि पर आधारित है। कृषि हमारा संस्कृति प्रकृति से अलग नहीं हो सकती। भारतीय परंपरा में कृषि और ग्रामीण व्यवस्था के ऊपर प्रामाणिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जैसे पराशर कृति कृषि पराशर, पराशर तंत्र, सुरपाल कृत वृक्षायुर्वेद, मलयालम में परशुराम कृत कृषि गीता, सारंगधर की लिखी उपवन विनोद आदि। मैं अपेक्षा करता हूं कि कृषि शोध संस्थान प्राकृत कृषि के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करेंगे और किसानों को हमारी प्राचीन पद्धतियों से परिचित कराएंगे। कृषि विश्वविद्यालय जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करे और कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और उद्यमिता को प्रोत्साहित करे। सतत और स्थायी विकास के लिए प्राकृतिक कृषि जरूरी है।
1: प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के सकारात्मक प्रयासों से जुड़े मनोज सोलंकी जी का कहना है कि हम अपने इस प्रयास और पुस्तक के माध्यम से ज्यादा किसानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे धरती को बड़े पैमाने पर संभालने की जिम्मेदारी उठाई जाए।
3: भारतीय कृषि का मूल जो चिंतन है, उस चिंतन को आधार को लेके जो प्राकृतिक कृषि पूरे देश में बढ़ोतरी हो, उसके लिए अक्षय कृषि परिवार जो कार्य कर रहा है, उसका एक भाग रूप आज भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान का ये एक विशेष सांग का जो विमोचन है वो आज हुआ है। और इस विशेष सांग में भारत का जो भूमि के प्रति जो समझ है वो, और किसानों की जो प्राकृतिक खेती की जो समझ है वो, जो प्रकृति के आधार से है, उस सब को सम्मिलित करते हुए पूरा बुक का लेखन हुआ है। और लेखन के आधार से ये बुक है, ये विषय को पूरे भारत में प्रारंभ होगा और ये बुक का जो कंटेंट है वो कई लोगों के इस कार्य को आगे ले जाने के लिए कार्य आएगा, काम में आएगा। और जो कृषक जो इस कृषि करना चाहते हैं उसको भी इसमें से काफी मार्गदर्शन मिलेगा और आने वाले समय में प्राकृतिक कृषि आगे ले जाने के लिए जो कई साइंटिस्ट, कृषक साइंटिस्ट सब लगे हैं, उसको एक बल मिलेगा और ये विषय धीरे धीरे आगे बढ़े, उसके लिए ये भूमि, ये जो पुस्तक का जो विमोचन हुआ है वो काफी प्रभावशाली रहेगा।
4: अक्षय कृषि परिवार की ओर से भूमि सुपोषण विशेषांक का विमोचन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री वेंकैया नायडू जी के करकमलों द्वारा यहाँ पर किया गया है। उपराष्ट्रपति भवन में यह कार्यक्रम दिल्ली में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आदरणीय कृषि मंत्री जी, पूज्य स्वामी काड़ सिद्धेश्वर जी, मनोज भाई सोलंकी और माननीय भागैया जी उपस्थित थे। यह विशेषांक की कल्पना गत 5 वर्ष से चल रहे प्रयासों के फलस्वरूप यह विशेषांक की निर्मिति हुई है। सर्वप्रथम अक्षय कृषि परिवार ने विभिन्न लोगों के, मुख्यतः किसानों के, जो प्राकृतिक कृषि के साथ कार्य कर रहे हैं, ऐसे किसानों के अनुभवों के प्रलेखन का कार्य प्रारंभ किया। साथ साथ में प्राकृतिक कृषि से जुड़े वैज्ञानिक, सामाजिक संस्थाएं, शोधकर्ता, ऐसे सभी लोगों के साथ भारत में वार्तालाप किया। इस वार्तालाप में जो ध्यान में आया कि भारत में कृषि भूमि का क्षरण अत्यंत तेज गति से हो रहा है। इसको ध्यान में रखकर भूमि सुपोषण एवं संरक्षण जन अभियान किया गया और उस जन अभियान के अगला चरण यह भूमि सुपोषण का विशेषांक निर्मिति यह हुआ। इस विशेषांक में 17 आर्टिकल्स समाहित किए गए हैं। आज विद्यमान में भूमि को से लेकर जो एक सॉइल की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, हम लोग भूमि के एक समग्र संकल्पना को इस बार चर्चा में लाना प्रारंभ करना चाहते हैं। भूमि सुपोषण यह एक समग्र संकल्पना है। इसको हम लोगों ने भारत के अथर्ववेद के भूमि सूक्त से लेकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा चल रहे प्रयासों का सम्मेलन इसमें किया गया है। हमारा परंपरागत ज्ञान, हमारे कृषकों के पास जो मौखिक ज्ञान की परंपरा है, वो भारत के उत्सव और त्योहार, भारत के देशज बीज, भारत के बैल आधारित यंत्र, ऐसे समग्र लोगों समग्र विषयों को सम्मिलित करते हुए यह विशेषांक की निर्मिति की गई है।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो, आपड़ी बातें।
1: पशुपालन शुरू से ही किसानों की समृद्धि का प्रतीक रहा है। पहले के समय में जिसके पास जितने ज्यादा पशु वो उतना बड़ा किसान या पशुपालक माना जाता था। हालांकि आज तस्वीर कुछ अलग है। आज समृद्धि का आकलन पशु की नस्ल से होता है। समय के साथ पशुपालन के तौर तरीके बदल रहे हैं। किसान कम पशुधन में भी बेहतर मुनाफा कमाने के तरीके आजमा रहे हैं। बेहतर उत्पादन के लिए पशु के आहार आवास से लेकर उन्हें सही चिकित्सा व्यवस्था दी जा रही है, क्योंकि अब दुधारू पशु केवल दूध के लिए नहीं है, बल्कि दूध से बने उत्पाद जैसे घी, मक्खन, दही, पनीर, खोया, मिल्क पाउडर बनाकर अच्छा

0: ले रहे हैं।
1: पशुपालन क्षेत्र में अगर देखते हैं तो नॉर्मल हम जब बात करते हैं, आय की बात करते हैं, वो नॉर्मल उत्पाद जो होता है, जैसे दूध होता है, जैसे अंडे होते हैं, अगर मुर्गी रखते हैं तो अंडे होते हैं, और मुर्गियों से भी मांस का उत्पादन हो सकता है और भेड़ बकरियों से भी मांस का उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, ये तो नॉर्मल आपका इनकम पे आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वैल्यू एडिशन का भी एक चीज होता है। जैसे हम नॉर्मल दूध बेचते हैं, वो अगर 40 या 50 रुपए में बेच रहे हैं, पर अगर उस दूध से हम पनीर बना लेते हैं या घी बना लेते हैं या खोआ बना लेते हैं या इवन दही बना लेते हैं या श्रीखंड बना लेते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा इनकम बढ़ जाती है, जो कि भारत सरकार की कुछ योजना के तहत इसका भी जिक्र किया गया है। जैसे हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक स्कीम भारत सरकार चला रही है, जो कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत ये स्कीम है। तो उसमें ये दिया जाता है, कोई अगर फार्मर हो या फार्मर इंडिविजुअल फार्मर हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से हो, SHG से हो या ग्रुप 8 के कंपनीज हो, तो ये सारे चीजें हैं, अगर इन कैटेगरीज में आते हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, जैसे वो खोआ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं या उसके साथ दही या और डेयरी प्रोसेसिंग आइसक्रीम बना सकते हैं।
0: साथ इनके गोबर और मूत्र से जैविक खाद और कीटनाशक बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई संस्थाएं गोबर का इस्तेमाल कई तरह की सजावटी चीजें बनाने में कर रही हैं, जिसने मुनाफे को कई गुना कर दिया है। वहीं अन्य पशुओं जैसे भेड़ बकरी को, जिन्हें मांस के लिए पाला जाता था, इनसे मिलने वाले मांस को प्रोसेस करके भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। इस तरह के कदम में सरकार भी सहयोग कर रही है।
1: मीट एंड मीट प्रोसेसिंग की बात करें, जैसे हम नॉर्मल मांस खाते हैं, मांस के साथ अगर वो कुछ एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे सॉसेज हो गया, नगेट्स हो गए, अगर ये सब बना सकते हैं उसके लिए, वो प्रोसेसिंग के लिए भी इस स्कीम के तहत प्रोविजन रखा गया है। कोई भी अगर उद्यमी इससे इस स्कीम के जरिए जुड़ता है तो उसको जो भी लोन कंपोनेंट है, वो लोन कंपोनेंट पे हम भारत सरकार की तरफ से 3% की छूट देते हैं।
0: इस तरह किसान पशुपालन में संभावनाओं को पहचान कर सही दिशा में प्रयास करके बेहतर लाभ कमा सकते हैं।
2: किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे पशुपालक कैलेंडर पर। तो वर्तमान समय में किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने हैं जिससे आपके पशु स्वस्थ रह सके, जानने के लिए आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर।
0: अधिक गर्मी से पशुओं में लू लगना, जल एवं लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पशुओं को धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए इसके लिए लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दे या पानी में मिलाकर दे। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे इसके लिए पशु को संतुलित आहार दें। पशुओं के आहार में गेहूं का चोकर और जौ की मात्रा बढ़ाएं। इस माह में भेड़ के ऊन कतरने का काम कर लें।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।
2: खेती किसानी के क्षेत्र में किसान भाइयों बहनों, प्रतिदिन कुछ नया हो रहा है, हमारे किसान कुछ अलग कर रहे हैं, युवा भी खेती किसानी की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और अपनी कड़ी मेहनत से बता दें आपको सफल भी हो रहे हैं। आज के हमारे सफल किसान भी कुछ ऐसे ही हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर।
0: कुछ उत्पाद उस स्थान की पहचान बन जाते हैं जहां वो पैदा किए जाते हैं और उनमें मौजूद पोषक तत्व उन्हें हमारे आहार का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन देश के हर कोने में इस तरह के उत्पाद आसानी से मिल सके और किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिल सके, इसके लिए युवा वर्ग आगे आ रहा है और अपने छोटे छोटे उद्यमों से अन्य सारी बाधाओं को दूर कर रहा है। ऐसे ही एक उद्यमी से हमारी मुलाकात हुई दिल्ली के आहार मेले में, जहां वो अमल फार्म के नाम से कई उत्पाद बेच रहे हैं, जिसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग यानी GI टैग पा चुकी उपज भी शामिल है। उनके उत्पादों की लिस्ट तो वैसे लंबी है, लेकिन उनमें खास है काला नमक चावल, मिथिलांचल मखाना, काजू, मसाले, दालें, सत्तू, भास्कर बताते हैं कि उनके उत्पादों की पैकिंग में एक खास बात है और वो ये है कि हर उत्पाद के पैकेट के पीछे एक QR कोड दिया गया है जिसको स्कैन करने से उत्पाद के बारे में ये जानकारी मिल जाती है। किसान का नाम, उत्पाद किस स्थान का है, फसल के बारे में जानकारी। अमल फार्म की इस पहल से हम उन किसानों को भी जान पाएंगे जो खेत में पसीना बहाकर उन फसलों को बनाए रख रहे हैं जो खास पहचान बन चुके हैं। आज का युवा डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके अपने उत्पाद को सुलभ बाजार उपलब्ध करा पा रहे हैं। ऐसे में अमल फार्म से प्रेरणा लेकर किसान और युवा वर्ग दोनों लाभ ले सकते हैं।
3: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से जो बातचीत हुई उसको सुना और जाना किस तरीके से हमारे जो सफल किसान थे उन्होंने कितनी अच्छी बातचीत बताई है, किस तरीके से गेहूं की नई नई तकनीकी से हम अपनी खेती को कर सकते हैं। चूंकि हम अगर झाबुआ जिले की बात करें तो झाबुआ जिले में पथरीला इलाका है, हम एक बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इस पर अपनी कृषि विस्तार अधिकारी से सलाह ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ साथ ही हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। नमस्कार।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आप लो रेडियो आपड़ी बातें।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग का एक और खास एपिसोड। ये वो महफिल है जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज के मेहमान का नाम शायद थोड़ा मुश्किल लगे लेकिन उसका मतलब बहुत खूबसूरत है। अमिया काला, अमिया यानी अमृत। एक ऐसा सफर जहां परंपरा भी है, परिवार की लेगेसी भी है और खुद की पहचान बनाने की एक खूबसूरत कोशिश भी है। हम वेलकम करते हैं अमिया काला जी का आज के हमारे जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। अमिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के एक नए एपिसोड में। कैसा फील कर रहे हैं आप?
2: जी, आपने मुझको बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी सर।
2: वाकई में एक बहुत बड़ा बात है ये।
1: हम बहुत एक्साइटेड हैं आज आपके इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी सर आपके नाम से। जैसे मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी हमारे गेस्ट्स को बताया कि अमिया का मतलब ही इतना खूबसूरत है, अमिया का मतलब है अमृत। तो आपके नाम से जुड़ी अगर कोई कहानी है जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहेंगे तो वो क्या होगी, कैसी होगी, और आपके नाम का जो मतलब है वो आपके लिए सिर्फ एक शब्द है या सच में आप इसको एक जिम्मेदारी की तरह अपने जीवन में उतारते हैं और जिससे भी मिलते हैं उसके जीवन में अमृत घोलने की कोशिश करते हैं?
2: मैम, बच्चों का नाम ज्यादातर जब पड़ जाता है, जब उनको कुछ न बोलना आता है न कुछ आता है। मेरी मासी थी, मतलब मासी हैं, उन्होंने मेरा ये नाम रखा था कि ये बहुत खूबसूरत नाम है और थोड़ा सा डिफरेंट है। और थ्रू आउट लाइफ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस नाम को प्रोनाउंस करने में ही लोगों को रही। ज्यादातर लोग इसको अमिया बोलते हैं जो कि जिसे कच्ची कैरी बोला जाता है, बट बेसिकली अमिया है। अगर हम लिखें तो अ मा पे बड़ी की मात्रा य, जिसका नाम जिसका मतलब अमृत होता है। और बचपन से आई बीन लकी टू हैव वंडरफुल पेरेंट्स। मेरे मम्मी पापा ने जिंदगी में हमेशा यही सिखाया कि जब कोशिश हमेशा ये करो कि आप सबका अच्छा ही करो, बिहेव वेल, सबके साथ अच्छे से पेश आओ, सबके साथ अच्छा सा व्यवहार करो। कर्टसी कॉस्ट नथिंग एंड इट पेज अ लॉट। तो मैं शुरू से हर जिंदगी के हर मुकाम पे मेरी यही कोशिश रही है कि मैं सबको इज्जत दूं, सबसे प्रेम से बात करूं। और मेरे को याद नहीं कि जिंदगी में आज तक एक या दो जनों के अलावा मेरा कभी किसी से कोई कुछ मनमुटाव रहा हो या मेरा झगड़ा भी हुआ हो किसी से। एंड इसी के कारण है कि सब लोगों से हमेशा मुझको भी बहुत बेपना प्यार मोहब्बत मिली है। और अब भी मेरे व्यवहार के कारण ही जयपुर में एक बहुत प्रतिष्ठित क्लब है, जय क्लब, वहाँ पे बिसाइड्स ये कि मेरे फादर वहाँ के प्रेसिडेंट रहे हुए और उनकी भी रेप्यूटेशन इतनी अच्छी थी, तो उसी के कारण, उनके नाम के कारण और मेरे व्यवहार के कारण ही इस बार मैं भी एग्जीक्यूटिव कमेटी में बहुत अच्छे नंबर ऑफ वोट से इलेक्ट हुआ।
1: जी जी, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट सर, दैट इज अमेजिंग।
2: और वेरी मच,
1: सच में आपकी कहानी ये बताती है कि किस तरह आपने अपने नाम को सच में जिया है, उसको जीवन में उतारा है। तो दोस्तों, हर इंसान अपनी पहचान की तलाश में कहीं ना कहीं मुसाफिर होता है। इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे आज का हमारा पहला गीत, मुसाफिर हूँ यारो, फिल्म परिचय।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक अम्मिया जी। आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ सर, इफ नॉट आप मुझे करेक्ट करें।
1: अमिया नहीं है, अमिया है।
0: अमिया
1: अमिया
0: अमिया
1: या
0: ओके अमिया जी। तो सर, जैसे अभी आपने हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें बताया कि आपकी फैमिली लेगेसी इतनी स्ट्रांग है, आपके फादर, आपकी फैमिली इतनी एक जगह होल्ड करती है सोसाइटी में, और आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां पे मेडिकल प्रोफेशन एक बहुत स्ट्रांग लेगेसी रही है आपकी। तो पहला पार्ट ये है कि आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं, किस फैमिली से आप हेल करते हैं, किस तरह का आपका बचपन रहा, किस तरह के आपके एक्सपीरियंसेस रहे बड़े होने में, और कैसे आपको अपना रास्ता चुनना इतना डिफिकल्ट था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपना खुद का रास्ता बनाया। आप जो आज कर रहे हैं, आपने जो सब किया है, वो सब आपकी खुद की इंडिपेंडेंट चॉइसेस और डिसीजन मेकिंग थी। तो कैसे रहे ये फैसले, कितने मुश्किल थे, कितने आसान थे, क्या एक्सपेक्टेशंस के बोझ थे, और आपकी ख्वाहिशें किस तरह से आपके जीवन में आपके साथ मैनिफेस्ट होती गई, ये थोड़ा सा अगर आप इस पे लाइट थ्रो करें।
1: मैम, मेरे ग्रैंडफादर वाज ऑलवेज इन टू सर्विस, मेरे जो दादाजी थे, एंड वो काफी साल बाहर रहे जयपुर के, और मेरे जो नाना जी थे वो जयपुर के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स में से एक थे। ही वॉज ऑल्सो द फिजिशियन एंड काउंसलर टू द सीएम्स एंड गवर्नर्स ऑफ राजस्थान फॉर लॉन्ग, एंड देन माय मॉम एंड माय मेरी मदर और मेरे फादर दोनों डॉक्टर्स थे, दोनों मेडिकल कॉलेज में थे, और बोथ got to know it, there was a love marriage, and दोनों के common interest थे, दोनों को music बहुत पसंद था, दोनों को लिखने का बहुत शौक था, और मेरे father की तो हमेशा से तमन्ना ये थी कि उनके दोनों बच्चे medical science में आए, because he had a very lovely reputation and a huge clientele as a doctor, पर unfortunately I was never interested into science and I was never a very good student in science. उस जमाने में arts का कोई वजूद ही नहीं होता था, late 80s में। आज की दुनिया में और उस जमाने की दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। आदमी या तो कॉमर्स लेता था या साइंस लेता था। आर्ट्स को तो मतलब इस दृष्टि से देखा जाता था कि ये आदमी मतलब कुछ काम का नहीं है, इसलिए इसने आर्ट्स ले ली। तो मेरे फादर ने बहुत कोशिश करी मुझको समझाने की, लेकिन मैंने उनको बोला कि देखिए, मैं लूंगा तो भी मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, मेरे को बहुत मुश्किल होगी, तो प्लीज लेट मी हैव कॉमर्स, एंड देन आई टुक कॉमर्स, एंड अनफॉर्चुनेटली जैसे ही मैं कॉलेज लाइफ में घुसा, माय मदर हैड अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, एंड उसके बाद शी वॉज पैरालाइज फॉर इयर्स। तो उसके बाद मेरे फादर ने मुझको बिजनेस लाइन में डलवा दिया, ज्वेलरी लाइन में, एंड उसके बाद बस धीरे धीरे आई स्टार्टेड टेकिंग ट्रेनिंग ऑफ ज्वेलरी, मैंने उसमें काम किया, मैं बॉम्बे भी गया कुछ टाइम के लिए, और फिर मैं जयपुर आके, बिकॉज माय मदर वाज नॉट कीपिंग वेल, आई केम बैक इन जयपुर एंड सेटल हियर। और बहुत ज्वेलरी एक अच्छी इंटरेस्टिंग फील्ड है, पहले मैं स्टोन्स में था, बट मैं उसके बाद आई हैड मतलब पैशन फॉर डिजाइनिंग या डूइंग समथिंग डिफरेंट, तो मैं ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में आया, जिसमें एक बहुत अच्छा, एक जमाने में बहुत अच्छा नाम भी किया, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस हिसाब से ज्वेलरी में प्राइसेस होती गई, तो कॉमन आदमी के लिए ज्वेलरी ट्रेड बहुत मुश्किल होता गया। आज और जहां बाकी तो ऐसा है कि मैं और भी बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व हूं, तो
0: जिसकी हम आगे चर्चा भी करेंगे, बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी के सभी ट्रेड्स को खोलने की कोशिश करेंगे जी। तो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स, इजी होते हुए भी बहुत कॉम्प्लेक्स एक जीवन रहा। आई थिंक चॉइसेस बहुत इजी नहीं रही, और अगर आप आर्ट्स लेते तो आप आई थिंक बहुत अमेजिंग डिजाइनर होते, जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ, बट उस जमाने
1: डिजाइनर होता या कुछ भी होता, बट प्रोबेबली हो सकता है इट कुड हैव बीन समथिंग एल्स, बट हर आदमी की डेस्टिनी पहले से डिसाइडेड होती है, एंड इट वॉज पेनफुल एक्सपीरियंस लूजिंग अ मॉम एट अ वेरी अर्ली एज,
0: राइट?
1: या सो जिंदगी में एक वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था अपने आप में,
0: बिल्कुल।
1: जी
0: वो वॉइड एक ऐसा है जो कोई फिल नहीं कर सकता. लूजिंग अ
1: बिल्कुल
0: पेरेंट इज आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस सर. एंड खैर डेस्टिनी इज डेस्टिनी एंड सच में डेस्टिनी सब कुछ डिसाइडेड होता है. हम सिर्फ पपिट्स हैं उसके हाथ के. खैर आगे चलते हैं. आपने अपने पेरेंट्स के बारे में हमें बताया कि वो सिर्फ डॉक्टर्स नहीं थे बल्कि म्यूजिक और पोएट्री का भी बहुत शौक रखते थे, जो एक बहुत ही डिफरेंट ब्लेंड है फॉर अ डॉक्टर टू हैव. जनरली हम डॉक्टर्स को नहीं देखते कि वो बहुत शौकीन होते हैं म्यूजिक और आर्ट्स एंड कल्चर के लिए. तो खैर आपको एक बहुत सुंदर एनवायरमेंट मिला होगा घर पे, आपकी पेरेंटिंग में, आपके ग्रोइंग अप ईयर्स में, घर में डिस्कशंस होते होंगे. तो आपको क्या लगता है कि उनकी जो सेंसिटिविटी थी, उनका जो नजरिया था, क्या आपके अंदर वही उतर के आया और वही उसी उसी एक शौक ने आपके अंदर वो सॉफ्टनेस पैदा करी, या किस तरह से आपकी म्यूजिकल जर्नी, आपकी पोएट्री जर्नी किस तरह से शेप हुई?
1: आपको बड़ा ताज्जुब होगा ये जान के कि जब मेरा बचपन था तो मेरे मदर फादर लिखते जरूर थे या सुनते जरूर थे, और उस जमाने में मुझको मतलब 1% भी न तो शायरी का शौक था और न मेरे को पुराने गानों का शौक था. मेरे पेरेंट्स के कमरे में हमेशा 50s 60s के गाने चला करते थे और हमको लगता था कि ये क्या है, मतलब वी जस्ट यूज टू क्लोज, हम अपने घर कमरे का दरवाजा बंद कर लेते थे कि ये म्यूजिक हमारे उसका नहीं है. और वी वर किड्स, सो माय फादर बीइंग अ डॉक्टर ही हैड काफी समय वो अपने क्लिनिक में और अपने पेशे को देते थे. मेरी मदर बिसाइड बीइंग अ डॉक्टर एक परफेक्ट मदर थी एंड परफेक्ट हाउस वाइफ थी. शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग ऑल्सो. और मतलब इवन टिल लेट, जब तक वो ठीक थी, जयपुर में बहुत रेस्टोरेंट्स नहीं होते थे तो वो कोशिश करती थी कि सब कुछ घर में ही बनाए. तो मेरे को जब तक मतलब आप ये मानिए कि 85-86 में जाकर के जब मैं आई थिंक 11th स्टैंडर्ड में आया, उस जमाने में मैंने कुछ अंग्रेजी में लिखना चालू किया था जो मेरी स्कूल मैगजीन में भी छपा और लोगों को बहुत पसंद आया. और उसके बाद मैं 4 लाइनर्स 6 लाइनर्स 8 लाइनर्स लिखने लगा एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेरा कुछ चीजें आर्चीज में सेलेक्ट भी हुई थी.
0: और
1: फिर ऐसा टाइम आ गया था कि आर्चीज की सेल्स धीरे धीरे गिरने लग गई थी बिकॉज द टेक्नोलॉजी वॉज चेंजिंग. तो और आज आर्चीज का कुछ अस्तित्व ही नहीं है. तो वो कार्ड्स कभी हकीकत में सर्कुलेशन में नहीं आए. दैट वॉज अनफॉर्चुनेट. और फिर 93-94 के बाद मेरा कुछ न कुछ ऐसा रहा कि मेरा लिखना एकदम बंद हो गया मेरी वेडिंग के बाद, बिकॉज आई हैड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मोर वर्क. एंड इन 96 आई लॉस्ट माई मदर, सो दैट वॉज अ बिग सेटबैक. एंड उसके बाद सीधे 2013 में मैंने वापस लिखना शुरू किया. एक दिन मैं बहुत खराब मूड में था, वन ऑफ द लो डेज, और पहली जो कविता मैंने लिखी वो मैंने अपनी मदर की याद में लिखी थी. और मैंने जिन 5-6 जनों को भेजी थी तो वो खुद वो पढ़ करके उनकी आंखों से आंसू आ गए. इनफैक्ट 1-2 जनों ने भी तो मेरे को कॉल भी कर लिया कि तुम ठीक तो हो, एवरीथिंग ऑल राइट, यू सीम टू बी वेरी लो. तो बस उस दिन से वापस सीखने का सिलसिला शुरू हुआ.
0: देखिए किस तरह से पेन अपनी जिंदगी में हमारे शौक को कैसे शेप कर सकता है, कैसे जो चीज कहीं ना कहीं हम दबा देते हैं अपने दिल के किसी कोने में वो पेन वापस लेके आता है. तो पेन इज नॉट ऑलवेज बैड, इट्स एक्चुअली अ कैटलाइजर टू क्रिएट, टू बिकम आर्ट और कुछ सुंदर करने के लिए, जिसके लिए कहीं ना कहीं आपके अंदर टैलेंट होता है, एक आपके जहन में एक भगवान ने एक नेमत दी होती है. बट हम कई बार अपनी चॉइसेस से, सर्कमस्टांसेस से उन चीजों को दबा देते हैं, बट किस तरह से वो उभर के सामने आती है, जिंदगी इसी का नाम है. आपने अभी तक 2 किताबें भी लिखी हैं सर, आप जैसे कि हमने आपकी प्रोफाइल में जाना, उन किताबों के बारे में अगर आप हमें कुछ बताना चाहें, और अगर अपनी लिखावट के बारे में, आपके स्टाइल के बारे में, और अगर कोई पोएट्री अभी आपके आसपास आपके हाथ में है तो अगर हमारे श्रोताओं के लिए वो पढ़ना चाहें आप, क्योंकि आपकी आवाज बहुत सुंदर है, तो आपकी आवाज में मैं कुछ सुनना चाहूंगी अगर पॉसिबल हो तो.
1: मैम मैं 2013 से लिखना शुरू किया था धीरे धीरे धीरे करके, लिखते गया लिखते गया. तब मैंने जिंदगी में कि सारी चीजें, राइट फ्रॉम लव एंड रोमांस टू डेथ से लेकर के, और मतलब मैंने एक लिखा था वो हालांकि अभी मेरे को याद नहीं है, बट जो आपके हर ट्रैफिक लाइट पे जो बच्चे खिलौने बेचते हैं, तो मैंने उस पे भी लिखा है, मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे भी लिखा है. आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट, मैंने इनफैक्ट जो अपना पुलवामा अटैक हुआ था मैंने उस पे भी लिखा है. तो मैंने काफी चीजें लिखी है. मेरे को मैं अमिताभ बच्चन साहब का बहुत अच्छा फैन हूँ. मैंने उनके ऊपर भी एक कविता लिखी थी
0: जी.
1: और मैंने यश चोपड़ा साहब के ऊपर भी एक कविता लिखी हुई है. तो मतलब यश चोपड़ा साहब की ऐसी कोई भी फिल्म नहीं है जो मैंने जिंदगी में 8-10 बार से कम देखी, और उनकी हर फिल्म इतनी गहराई ये होती है कि उसमें
0: गहराई और इतनी सुंदरता, मतलब फिल्म फिल्म जैसी,
1: और बहुत इमोशनल होती है, बहुत उसमें डीप मैसेज होता है अगर आप समझना चाहें तो.
0: बिल्कुल.
1: एवरी फिल्म इज सो इंटेंस.
0: आपकी फेवरेट यश चोपड़ा फिल्म
1: सुनाने की, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ छोटा सा सुनाने की
0: जी. और आपकी किताबों के बारे में भी बताएं, सो दैट हमारे श्रोता अगर हो सके तो उन्हें ले पाएं, उन्हें पढ़ पाएं, आपके बारे में और थोड़ा जान पाएं, जो किताबें आपने छपाई.
1: मेरी किताब का नाम था कुछ पल कुछ यादें कुछ लम्हे
0: जी,
1: और पार्ट टू भी वही थी, कुछ यादें कुछ और यादें कुछ और लम्हे कुछ और पल
0: जी.
1: और इस मतलब ये फर्स्ट बुक जो थी वो मेरी वाइफ की 50th बर्थडे पे मैंने उनको डेडिकेट करी थी.
0: हाउ ब्यूटीफुल.
1: एंड जो सेकेंड बुक थी वो नेक्स्ट ईयर मेरी सिस्टर और मेरे मामा की, मेरी सिस्टर की 50th बर्थडे और मेरे मामा की 70th बर्थडे थी, तो उनको डेडिकेट करी थी. अब पता नहीं तीसरी बुक कब आएगी.
0: बहुत
1: बिकॉज अब मैं, क्योंकि अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सीख करके कुछ ऐसा लिखूं कि फिर एक ये माइलस्टोन हो. अभी तक तो बस एक शौक को पूरा करने वाली बात करी है. बट अब जो होता है कि वन बुक हैज टू बी, कि वो एक ऐसा हो कि हर जने के हर टेबल पे जो पढ़ने के शौकीन उनकी बेड साइड पे रहे
0: जी.
1: एक ऐसा मतलब हसरत तो ऐसी है.
0: बिल्कुल बिल्कुल, पूरी हूँ आपकी सारी हसरतें. अगर आप हमें कुछ सुनाना चाहें और यश चोपड़ा की

0: से नामुमकिन है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और अब तो खैर पॉसिबल भी नहीं है, जिस तरह की सेंसिटिविटी है वो सेंसिटिविटी नहीं है ऐसी फिल्में बनाने के लिए, अब तो फिल्म फिल्म जैसी लगती ही नहीं है। खैर आपसे कुछ सुनना चाहेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे आज के सफर में।
0: जी एक ये बहुत एक सवाल है, थोड़ा सा इसमें पेन ही है
1: जी,
0: पर मैं ये सुना रहा हूँ आपको। क्यों क्यों ये मुमकिन नहीं, कहानियों में और पर्दों पर गुजरे कभी बिछड़े मिल जाते, नहीं होता असल जिंदगी में मगर एक हुक सी उठती है छोड़ जाती एक कसक, अपनों की कमी छोड़ जाती आंखों में नमी, लौटने के जिनके नहीं आसार, रब की मर्जी और नसीब के आगे लाचार, आ जाएं जो छोड़ गए लौट आए खुशियां, पूरा हो जाए परिवार।
1: बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। दोस्तों इसी जज्बात के साथ हम आगे चलते हैं और सुनते हैं हमारा अगला गीत आज का। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, फिल्म कभी कभी।

वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक सर। आपका हॉस्पिटैलिटी और ह्यूमन कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने जो जो प्रोफेशंस किए, चाहे वो ज्वेलरी का काम हो, चाहे वो पोएट्री, इतना सेंसिटिव पोएट्री लिखना हो, किताबें लिखना हो,

0: ह्यूमन एहसास को समझना हो, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहा है जो मैं समझ पा रही हूँ। आपका लोगों से डीलिंग, पब्लिक डीलिंग बहुत स्ट्रांग आई थिंक फोर्टे है, तो आपका इंटरेस्ट हमेशा लोगों से मिलने और उन्हें समझने में रहा है। और जो विनीर्स होमस्टे है, आपका जो होमस्टे है, उसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं, किस तरह से ये जर्नी शुरू हुई, इसका सीड डला, और किस तरह से आज आप विनीर होमस्टे को रन कर रहे हैं। आपका पर्पस क्या होता है कि मेहमान खुश रहना चाहिए, उसे सिर्फ सुख सुविधा मिलनी चाहिए, या उसे एक एहसास के साथ आपके होमस्टे से वहां जब वो स्टे करके जाए तो वो एक एहसास लेके जाए। क्या आपका विजन स्टेटमेंट है, क्या आपका मिशन स्टेटमेंट है, इसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को।
1: मैम, विनीर एक नाम है, एक एहसास है मेरे लिए, बिकॉज विनीर इज अ मिक्सचर ऑफ माय फादर एंड मदर नेम। वी इज फॉर विजय माय फादर एंड नीर इज नीरा माय मदर।
0: ब्यूटिफुल।
1: तो इसलिए मैंने हमारे घर का नाम भी विनीर रखा है और इसका नाम भी विनीर होमस्टेज है। और काफी मेरा घर जयपुर के एक बहुत अच्छी सेंट्रली लोकेटेड कॉलोनी में है, जहाँ पे हर किसी का ख्वाब होता है कि वो वहाँ पे घर ले
0: जी।
1: पर बहुत छोटी सी सुंदर सी क्वाइट कॉलोनी है ये
0: जी।
1: एंड काफी सालों से हमारा मन था कि हम हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर कुछ करें। देन फाइनली लास्ट मार्च में हमने इसमें एक पहल करी और नवंबर में जब ये बन के तैयार हुआ और लोगों ने देखा तो दे वर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। इट वॉज नॉट वेरी वेरी लैविश, नॉट वेरी लाउड, बट वेरी सटल, वेरी नाइसली डन। एंड उसके बाद से बस यही था कि बिकॉज माय सिस्टर लिव्स विद मी, माय सिस्टर इज अ टीचर और मेरी वाइफ बाकी सब कामों में भी रहती है, तो सब लोगों का ये था कि सिंस आई एम गुड एट टॉकिंग विद पीपल मैं इसको रन करूं। एंड मतलब इसमें बहुत ज्यादा टाइम तो डिवोट करना नहीं होता है, तो उस दिन से किया। और मेरा लक्ष्य सिर्फ ये है कि आदमी यहां से जाए तो एक स्माइल लेकर के जाए विथ नो कंप्लेन एट ऑल। और मैं जो भी आता है तो उनको भी ये बोलता हूँ कि सर आप आए हैं, आप अपने ही एक घर में हैं, आपको कुछ भी शिकायत हो आप मेरे को बताइए, क्योंकि उससे हमको सुधार करने को मिलेगा
0: जी।
1: और मेरा ये मानना है कि आदमी कहीं पे भी कुछ भी जाता है, आप भी आएंगे तो मेरा आपसे हमेशा ये गुजारिश रहेगी कि आपको अगर शिकायत है तो वो मुझसे करिए और तारीफ बाहर जाके करिए, बिकॉज शिकायत जो होगी वो जो वहां पे काम कर रहा है वही उसको सुधार सकता है। आप किसी थर्ड पर्सन को जाके बोलेंगे तो वो कभी उस शिकायत को सुधार नहीं सकता, रादर ही विल एड टू थिंग्स एंड ही विल टेल इट टू समवन। और आप तारीफ किसी और को करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, मेरा ये मानना है। तो मेरा तो सिर्फ एम ये है कि मैंने ये मतलब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मैंने सुना है कि जब तक कुछ इम्पॉसिबल हो या इलॉजिकल डिमांड नहीं हो तब तक आपको अपने किसी भी कस्टमर को ना बोलना ही नहीं चाहिए। यू शुड ट्राई योर बेस्ट टू मेक देम हैप्पी एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। एंड स्पेशली इट मीन्स अ लॉट टू मी बिकॉज माय पेरेंट्स नेम इज एडेड टू दिस, सो आई कैन नॉट लेट इट डाउन एट एनी कॉस्ट।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा नाम है विनीर होमस्टे, बहुत अच्छे थॉट्स हैं इसके बिहाइंड। और आपके हर बिजनेस में एक हार्ट फैक्टर रहा है, एक पीपल फैक्टर सेंट्रली रहा है जैसे कि मैंने कहा। तो क्या कोई फिलॉसफी है आपकी लाइफ की जो आपने बहुत अर्ली ऑन जिसको अपने जहन में उतार लिया कि मेरे लिए पीपल फैक्टर और हर चीज में एक दिल होना, हर चीज में एक एहसास होना बहुत जरूरी है, इसी तरह से आपकी पर्सनालिटी शुरुआत से थी या जीवन के एक्सपीरियंसेस ने आपको सॉफ्टन किया और आप इस तरह से हुए? क्योंकि बहुत लोग मैं देखती हूँ आसपास, लोग बिजनेस को बहुत कैलस और बहुत कैलकुलेटिव तरीके से करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो उस बिजनेस में एक दिल डालने की कोशिश करते हैं, एक एहसास डालने की कोशिश करते हैं जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत खास है। और कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ कि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं, हर इंसान कहीं ना कहीं वो पीपल फैक्टर, वो प्यार, वो दिल फैक्टर जब उसके साथ इंटरेक्ट करो तो वो ढूंढता है। तो आपकी ये पर्सनालिटी किस तरह से डेवलप हुई सर, इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें।
1: मैम, इसमें भी मेरी मदर का बहुत बड़ा रोल है, मेरी मदर का भी, मेरी ननियाल साइड की फैमिली का भी। मेरा बचपना काफी मेरे ननियाल साइड में गुजरा और मेरी मदर शुरू से शी वॉज वेरी प्रैक्टिकल एंड शी वॉज वेरी डिसिप्लिन बट शी वॉज वेरी इमोशनल ऑल्सो।
0: जी
1: तो उन्होंने बचपन से ही मुझको सिखाया जो जीवन की अच्छाइयां होती हैं. एंड शी ऑलवेज लेड एम्फेसिस टू कैरेक्टर मोर देन मनी.
0: ब्यूटिफुल.
1: एंड बिकॉज माई फादर एंड माई मदर उन्होंने जिंदगी में यश और ख्याति इतनी अर्जित करी जितना उन्होंने शायद पैसा नहीं कमाया होगा, बट वो ही उनका एक असली कमाई है जो आज तक हम उस पे उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं. या एक उनका वो एक पेड़ है जिसकी छाया के तले हम जी रहे हैं.
0: बिल्कुल.
1: और कई कई बार जिंदगी में उस चीज का नुकसान भी हुआ कि आप हमेशा दिल से नहीं सोच सकते, कभी कभी इमोशनल होके कुछ गलत फैसले लिए. पर ये है कि वो एक बार लेने के बाद आदमी जब ठोकर खाता है तो वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, वो एक बहुत बड़ी सीख होती है.
0: बिल्कुल.
1: तो वही मेरे साथ भी हुआ है. मैं आज भी जो मेरे रिश्ते हैं, जो दिल के रिश्ते हैं, उनको मैं बिल्कुल मतलब बहुत गहराई से उनको मानता हूं और उनको निभाता हूं.
0: जी.
1: तो मेरी जिंदगी में तो सबसे बड़ा चीज पहले रिलेशंस और इमोशंस हैं.
0: जी.
1: हालांकि इमोशनल फूल नहीं होना चाहिए.
0: जी नहीं, बट बहुत जरूरी है ऐसे लोग सब. आज के जिस जीवन में हम जी रहे हैं उसमें अगर मैं एटलीस्ट मैं पर्सनली बताती हूँ, इफ आई कम अक्रॉस समबडी हु रियली हैज अ हार्ट टू शेयर, तो वो मेरे लिए बहुत डिफरेंस मेकिंग होता है, बहुत एक माइलस्टोन होता है और उस मुलाकात को मैं हमेशा याद रखती हूँ. एंड आई एम श्योर इंसान अल्टीमेटली इंसान है और हर इंसान कहीं ना कहीं इंसानियत ढूंढ रहा है आज भी. इसीलिए हम शायद इतने अकेले हैं क्योंकि हम ऊपर से दिखाते हैं कि हम बहुत कैलकुलेटिव और कैलस हैं और सब कुछ बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए, बट अंदर से हम सब प्यार चाहते हैं. तो आई थिंक यू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस बाय बीइंग द वे यू आर एंड आई होप आप ऐसे ही रहें. आई एम श्योर आप बहुत सारे लोगों को अपने आसपास बहुत खुशियां बांटते होंगे और बहुत ही खूबसूरत मुलाकात, भले ही हम मिले नहीं हैं बट ये टेलीफोनिक जर्नी भी बहुत खूबसूरत है मेरे लिए. और इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत आज का. दोस्तों, जिंदगी उन छोटे छोटे पलों से बनती है जो दिल को छू लेते हैं. सुनते हैं हमारा अगला गीत, ये तेरा घर ये मेरा घर, फिल्म साथ साथ.

0: वेलकम बैक सर।
1: जी
0: आपकी जो लाइफ की फिलॉसफी है, जो आपके जीने का फलसफा है, वो कहीं ना कहीं आपकी पेरेंटिंग से जो उन्होंने डाउनलोड किया, जिस तरह से उन्होंने आपको समझाया और आपके अंदर रीइन्फोर्स किया कि कर्टसी बहुत इम्पोर्टेंट है एंड इट रियली कॉस्ट्स नथिंग, बट बहुत कुछ आप छोड़ जाते हो, तो वो एक रूट रहा आपके जीवन का। तो आज का जो जीवन है, जो हम जी रहे हैं, फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है, जिस तरह से अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात की, लोग किस तरह से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जीवन से, जीवन के तरीकों से, तो किस तरह से इस फिलॉसफी को लोग आज भी जी सकते हैं? अगर कोई लिसनर सुन रहा है, अपना एक रास्ता ढूंढ रहा है, परेशान है, कंफ्यूज्ड है इस जीवन में, तो किस तरह से वो अपने जीवन को मैनूवर कर सकता है? आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस से, आपके इतने वेरीड एक्सपीरियंसेस से, आप हर तरह के लोगों में उठे बैठे हैं, तो उससे अगर आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश देना चाहें और एक जीवन का फलसफा छोड़ के जाना चाहें कि ये करें तो शायद हर सिचुएशन से आप एक ग्रेसफुल तरीके से बाहर निकल सकते हैं।
1: बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है ये आपने मुझसे।
0: जी
1: देखिए, हर इंसान की जिंदगी अलग तरीके की होती है। कोई भी दो इवन एक जीवन साथी भी होते हैं तो उनकी सोचने की प्रक्रिया, उनका जीने की जिंदगी जीने का तरीका बहुत अलग होता है। कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं होते, हर जने का अलग अलग नजरिया होता है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि दिल हर इंसान में होता है, प्यार सभी को चाहिए, इज्जत सभी को चाहिए, मान सम्मान सभी को चाहिए, और कहीं ना कहीं अगर आप ये चीज किसी को दें तो 10 में से मेरे ख्याल से 7 इंसान आपको याद रखेंगे और उसका आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा ही।
0: बिल्कुल।
1: इवन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे एक क्लब में हूँ जिसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी में हूँ, तो वहाँ पे मुझको इवन जो ग्राउंड स्टाफ होता है वो भी इतना इज्जत देता है, क्योंकि मैंने, मेरे फादर भी उसी क्लब के प्रेसिडेंट थे, लेकिन मैंने कभी उनके साथ उस जमाने से आज तक किसी के साथ कभी कुछ न गलत किया, न बोला, न उनको कभी ऐसा किया कि उनकी आत्मसम्मान को ठेस लगी हो। मेरा मानना है छोटे से छोटा आदमी भले ही वो रिक्शा चलाता है तो भी उसका एक आत्मसम्मान होता है जिसको हमको कभी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। आज की सोसाइटी में ज्यादातर ये होता है कि आदमी सिर्फ इज्जत उसकी करता है जिसका रुतबा हो या जिसके पास बेशुमार धन दौलत हो या जिससे उसका कुछ फायदा हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: पर वो चीज लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, ऐसा मेरा मानना है। आप अगर एक स्टैंडर्ड रेज करके चले और उसी तरीके से आप सबको एक साथ मान सम्मान दें या सबसे अच्छा व्यवहार रखें तो मेरे ख्याल से असली एक इंसान तो वही है।
0: बिल्कुल सर, जो परिस्थितियों के साथ बदले नहीं, इंसान को देख के इंसान से ट्रीटमेंट बदले नहीं, और एक तरह से समानता से अपने व्यवहार को सही रखे, सुंदर रखे, सरल रखे, जिस तरह से आप हैं। और बहुत ही खूबसूरत बातचीत हुई सर आपके साथ आज, बहुत खुशकिस्मत फील कर रही हूं मैं, और आई एम श्योर हमारे श्रोता आज की हमारी बातचीत से बहुत कुछ लेके जाएंगे, बहुत कुछ उन्हें समझ आएगा जीवन और जीवन जीने के बारे में। और अगर कोई एक इंसान भी बदलता है तो वो हमारी जीत है जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। तो थैंक यू सो मच अमिया जी।
1: आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझको मौका दिया कुछ बोलने का, अपने जज्बात को आपके साथ शेयर करने का, सारे श्रोताओं के साथ शेयर करने का, और थैंक यू वेरी मच
0: जी। बहुत बहुत आभार आपका। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें एक रास्ता देती है और कभी कभी हम खुद अपना रास्ता बनाते हैं। आज की महफिल में हमारे साथ थे मिस्टर अमिया कल्ला जी, जिन्होंने हमें ये याद दिलाया कि असली पहचान वही होती है जो दिल से निकलकर जिंदगी में बस जाती है। मैं हूं आपकी आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर। फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ, तब तक के लिए जिंदगी को थोड़ा और महसूस करिए। नमस्कार।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा। और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ, जिंदगी के रंग गीतों के संग के इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग है शब्दों की सतरंगी दुनिया का। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार आपसे मुखातिब हूं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम मिलवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जिनकी पहचान सिर्फ एक नहीं कई आयामों में फैली हुई है। पत्रकारिता के क्षेत्र में 2 दशकों का अनुभव, दूरदर्शन राजस्थान पर 500 से अधिक कार्यक्रमों की एंकरिंग, राष्ट्रीय चैनलों पर राजनीतिक विश्लेषण और साथ ही एक संवेदनशील हिंदी कवि, ये सब एक ही नाम से जुड़ते हैं और वह नाम है श्री विवेकानंद जी शर्मा। सीकर जिले के अजीतगढ़ जैसे ग्रामीण परिवेश से निकलकर मीडिया, राजनीति और साहित्य की दुनिया में अपनी सशक्त पहचान बनाना, यह सफर अपने आप में प्रेरणादायक है। इनकी लेखनी में समाज की सच्चाई है, विश्लेषण में गहराई है और कविता में संवेदना। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं एक ऐसे शख्स से जो शब्दों से विचार भी गढ़ते हैं और कविता से दिल भी छूते हैं। स्वागत है आपका विवेकानंद जी हमारे कार्यक्रम में।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और श्रोताओं, एक खास बात और आपसे आज करना चाह रहा हूं। आज हमारे इस कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग में आप जहां एक और गीत तो हमेशा की तरह सुनेंगे ही, लेकिन बीच बीच में आप आज के हमारे मेहमान विवेकानंद जी की कविताओं का आनंद भी आप ले पाएंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और मन बना लीजिए एक अच्छे से अनुभव के लिए। तो विवेकानंद जी, सबसे पहला प्रश्न और शुरुआती प्रश्न मेरा आपसे यही है कि जहां तक मेरी जानकारी है, आपका जन्म और शिक्षा एक गांव अजीतगढ़ सीकर से शुरू होकर जयपुर तक पहुंची, इस बड़े शहर तक पहुंचती, तो उस ग्रामीण पृष्ठभूमि ने आपको व्यक्तित्व और सोच को किस तरह से गढ़ा, कुछ उसके बारे में कुछ साझा कीजिए, पुराने दिनों की याद लगाइए, पुराने दिन की यादों में गोता लगाइए, कुछ बताइए।
2: बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। वास्तव में मुझे लगता है कि जो गांव में रहने का जो समय था, और खासतौर पर बचपन की बात करें, हर किसी के जीवन में वो स्वर्णिम काल होता है जी। और मेरा भी ये सौभाग्य रहा कि मेरा बचपन गांव में बीता, गांव की गलियों में घूमते फिरते, और जैसे जैसे बड़े हुए मुझे याद आता है बचपन में स्कूल जो थी हमारी, सरकारी स्कूल में पढ़े तो घर से करीब आधा किलोमीटर दूर 400 मीटर के आसपास स्कूल होगी। आज के दौर में जब शहर में रहते हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते उस समय चाहे सर्दी गर्मी बरसात जो भी होगी, घर में जो कोई कपड़े का थैला होता था उसके अंदर अपने कॉपी किताब रखी, उसको कंधे पर टांका और फिर दौड़ पड़ते थे स्कूल के लिए। आधे घंटे की इंटरवल होती थी, उस आधे घंटे में दौड़ के वापस घर पहुंचते थे, 3-4 मिनट 5 मिनट में घर पहुंचते थे, 10-15 मिनट में जो कुछ खाने को मिलता था, दही रोटी दूध ये कोई अचार जो भी कुछ मिल गया वो खाया फटाफट 15 मिनट में और फिर दौड़ के अपने स्कूल में पहुंच जाते थे। मुझे लगता है आज की नई पीढ़ी जो ऑटो में बैठ के वैन में बैठ के स्कूल जाती है और सुबह निकल जाते हैं 7 बजे, शाम को 4 बजे 5 बजे तक आ रहे हैं, इतना भारी बोझ वो थैला लटका के, मुझे लगता है वो समय ही बदल गया। उस समय के स्कूल, उस समय की चीजें, हर शनिवार को बाल सभा होती थी, अंताक्षरी हुआ करती थी, अलग अलग महापुरुषों की जयंतियों पर जो कार्यक्रम होते थे उनमें जाकर सामने मंच पर जाकर बोलना, आज ये सब जो चीजें हैं बहुत कम मात्रा में है और इनका भी स्वरूप बदल गया है।
1: नहीं, मजा आ गया, आपने तो मुझे भी अपना बचपन याद दिला दिया। जब घर भाग के आते थे तो पराठा खाना और इस तरह की जो बातें होती थी, हमें भी आप अपनी दुनिया में ले गए, बचपन की दुनिया में।
2: बहुत मजा आ गया, कैसे भूला जा सकता है बचपन का।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो आपने बीएससी, एलएलबी, बीजीएमसी और एमए जैसी विविध शिक्षा ली है, विज्ञान, कानून, मीडिया और साहित्य, ये सब का आपने अध्ययन किया है, और क्या ये सब मिलकर किसी तरह से आपकी पत्रकारिता और विश्लेषण को अलग से कोई दृष्टि देते हैं, कोई अलग नजरिया देते हैं, कुछ इसके बारे में बताएंगे?
2: जी बिल्कुल, आपने अच्छी बात पूछी है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ और वही कहता हूँ जो बड़ों से मैंने सुनी है, ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आप जिस भी विधा का ज्ञान लेंगे जीवन में कहीं ना कहीं वो काम आता है। बचपन में परिवेश घर परिवार का ऐसा मिला कि बहुत से संस्कृत के श्लोक याद हुए, बहुत सी कविताएं याद हुई, बहुत सी दोहे चौपाइयां वो याद हुई। और लगभग जहां तक मुझे याद है, मैं छठी सातवीं कक्षा में पढ़ता था तो मुझे ये सब दोहे चौपाई श्लोक कविताएं ये इतनी याद थी कि एक बार मैं शुरू होता तो शायद 2 घंटे लगातार बोल सकता था।
1: ओके,
2: तो ये चीज मेरे में धीरे धीरे परिवार के संस्कारों के कारण आई। लेकिन चूंकि मैं पढ़ने लिखने में भी ठीक था तो इसलिए घर वालों ने प्रारंभ में, उस समय ये स्थिति होती थी कि यदि बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसको साइंस दिला तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा।
1: सही बात।
2: तो इस कारण मैं विज्ञान की उस दिशा में गया और मैंने बीएससी की। बीएससी के बाद चौराहे पर था क्या किया जाए, तो सारे मित्र जो है वो एलएलबी कर रहे थे तो मैं भी लॉ में पहुंच गया। और एलएलबी करते करते मुझे लगा कि यार गलत जगह फंस गए, कहां रोज सच को झूठ, झूठ को सच करने का काम करना पड़ेगा, आत्मा को मारने का काम करना पड़ेगा। वहां से फिर मैं पत्रकारिता में आ गया और पत्रकारिता में काम करते करते कवि सम्मेलनों की दुनिया में मैं आ गया। लेकिन ये सब काम करते करते विज्ञान आपको तर्क बुद्धि देता है। आपको विज्ञान जो है, पढ़ने वाले विद्यार्थी एकदम से आंख बंद करके किसी चीज पर भरोसा नहीं करते। तो मुझे मेरी पत्रकारिता में, राजनीतिक विश्लेषण में इस चीज का ये लाभ मिला विज्ञान पढ़ने का। कानून की थोड़ी बहुत जानकारी हुई तो उसके कारण भी थोड़ा सा इस सारे क्षेत्र में लाभ मिलता ही है। तो मुझे लगता है कि जो आपके भीतर होता है, जो बचपन में जो साहित्य के प्रति रुचि थी, आखिर में घूम फिर के ये बीएससी, एलएलबी ये सब कर कर आगे और फिर उसी क्षेत्र में आगे जहां कहीं बचपन का आनंद था।
1: नहीं, सही बात, वो एनालिटिकल पावर तो आपको मिलती है, वो हर चीज में काम आती है, चाहे चुनाव का विश्लेषण आप कर रहे हैं। चलिए आगे बातचीत करते हैं। बिल्कुल। और 2005 में आपने राजस्थान पत्रिका से शुरुआत की, फिर अनेक बड़े संस्थानों में संपादकीय जिम्मेवारियां उठाई, तो पीछे मुड़कर देखे तो पत्रकारिता के इस 20 साल के सफर को आप कैसे देखते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें ब्रीफ में?
2: देखिए, जो 2005 में जब मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया, उस समय की स्थितियां और आज की स्थितियां बहुत अलग हैं। एक गांव से मैं आया था तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मैं जयपुर में कैसे अपना एक स्थान बना सकता हूँ, कैसे यहाँ रह सकता हूँ। और उसके लिए जो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि मेहनत के अलावा कोई दूसरा आपके पास में विकल्प ही नहीं होता। जब आप पर संकट सर्वाइवल का होता है तो आप अपनी जान झोंक देते हैं। लगभग मेरे साथ भी वही स्थिति थी कि फेल होकर वापस गांव चला जाऊं, बजाय इसके कि 18 घंटे भी काम करना है तो करेंगे। तो प्रारंभ में मेहनत से कभी घबराए नहीं। जैसी चुनौतियां थी, जैसी स्थितियां थी, बाकी मेरे साथ में काम करने वाले मित्र लोग यदि 6 घंटे काम करते थे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। मुझे 16 घंटे लगाने थे तो मैंने लगाए, और मुझे लगा कि वो जो शुरुआती दौर की मेहनत थी, वो जिजीविषा थी, वो जीवटता थी, वो चुनौतियों से डटकर मुकाबला करने की जो स्थिति थी, आज लोग चाहे उसको संघर्ष का नाम देते होंगे लेकिन वो सब सहजता से परिस्थितिवश हो ही जाता है।
1: नहीं, सही बात है। उस टाइम राजस्थान पत्रिका तो अपने आप में एक लीडिंग न्यूज़पेपर भी था, तो मेहनत भी बहुत करना पड़ती थी पत्रकारों को, तो मुझे याद है। तो चलिए, आपकी इस मेहनत, जीवट और जिजीविषा के नाम पर हम एक अच्छा सा गाना सुनते हैं, थोड़ी देर उस गाने का आनंद लेते हैं।

0: हाँ शर्मा जी, पुनः स्वागत है आपका। तो आज की पत्रकारिता और 2005 की पत्रकारिता में आपको अब क्या बड़ा अंतर लग रहा है? और डिजिटल के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन
1: जी
0: मोटा मोटा आप बताइए इसके बारे में।
1: देखिए, बहुत बड़ा अंतर जो मुझे लगता है 2005 में जब मैंने शुरू किया और आज जब हम बात करते हैं 2026 में, इन 20-21 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये आ गया कि उस समय सूचनाएं इस तेज गति से नहीं आती थी। उस समय यदि कोई घटना कहीं हो गई तो अखबारों में तुरंत फोन होते थे और फोन होने के बाद में तुरंत वहां पर रिपोर्टर को भेजा जाता था। आज हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में इंटरनेट है, तो आप भले वहां पहुंचे नहीं पहुंचे, यदि आपका संपर्क है तो आपके पास में वहां से लाइव वीडियो आ जाते हैं, सारी चीजें आपके पास आ जाती है, फैक्ट चेक आप कर सकते हैं। उस दौर में होता ये था कि आपका रिपोर्टर जो वहां गया हुआ है वही आपको एक प्रकार से वहां की जीवंत रिपोर्ट जो है वही दे पाता था, तो उसमें समय जरूर कई बार लग जाता था, लेकिन जो बात प्रामाणिकता की है उसमें कहीं भी किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होता था। आज कई बार ये चीजें हो जाती हैं कि कई बार हम कहें कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जो काम करने वाले लोग हैं और उतनी मेहनत नहीं करना चाहते, दूसरों के भरोसे, केवल टेक्नोलॉजी के भरोसे आ जाते हैं और फैक्ट चेक नहीं करते, तो उसमें कहीं ना कहीं एक मैं ये कहूंगा कि स्तर जो है थोड़ा सा वो कम हुआ है। लेकिन दूसरी बात एक और है कि पहले जो मीडिया संस्थान ने लिख दिया, जो दिखा दिया, वो ही सत्य मान लिया जाता था, लोहे की लकीर हो गई। आज जो है, जिसे हम कहें कि नागरिक पत्रकारिता, हर एक व्यक्ति के हाथ में फोन है, हर एक व्यक्ति फैक्ट चेक कर सकता है, और यदि मीडिया संस्थान, मीडिया समूह यदि कुछ कोई बात गलत प्रचारित प्रसारित करता है तो उसको टोकने वाले लोग भी बहुत हो गए हैं। मुझे लगता है
0: बहुत
1: ये एक अच्छा संकेत है।
0: नहीं, बहुत सारा स्वरूप बदल गया है बिल्कुल। तो चलिए अब थोड़ा सा बातचीत का रुख बदलते हैं और आपके काव्य क्षण, हम इसको कह रहे हैं काव्य क्षण का एक ब्रेक लेते हैं। अब
1: जी
0: इस बातचीत को थोड़ा सा काव्यमय बनाते हैं। तो कोई अपनी पहली छोटी सी कविता हमारे साथ साझा कीजिए, तो हमें थोड़ा सा अंतराल, इस काव्य अंतराल कहते हैं इसको हम, तो
1: जी
0: वो मिले
1: जी
0: तो आप सुनाइएगा।
1: आपने छोटी सी कविता की बात कही तो मैं सबसे पहले माँ शारदे की आराधना का एक मुक्तक, चार पंक्तियों का एक मुक्तक आपके समक्ष, सभी
0: स्वागत
1: श्रोताओं के
0: स्वागत
1: समक्ष निवेदित करता हूँ। कि
0: स्वागत
1: माँ की
0: स्वागत
1: हुई कृपा तो गूंगा जिह्वा अपनी खोलेगा, माँ की हुई कृपा तो गूंगा जिह्वा अपनी खोलेगा, प्रेम प्यार के मीठे मीठे बोल कभी तो बोलेगा, और जिस पर कृपा शारदे करती वो पीछे ना रह सकता, अपनी प्यारी कविताओं से वो दुनिया को तोलेगा, अपनी प्यारी कविताओं से वो दुनिया को तोलेगा।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विवेकानंद जी, मजा आ गया, आनंद आ गया। तो अब थोड़ा सा हम मीडिया और डिजिटल युग की तरफ आते हैं, क्योंकि हमने प्रिंट मीडिया की बात कर ली। अब ये बताइए कि जैसे डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के इस दौर में पारंपरिक पत्रकारिता कितनी प्रभावित हुई है, और प्रभावित हुई है तो क्या अच्छे रूप में हुई है या थोड़े से एडवर्स रूप में हुई है, इसके बारे में क्या विचार रखते हैं?
1: देखिए, मुझे लगता है कि सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, इस बात के भी दोनों पहलू हैं। अब हम यदि पहले नुकसान की बात करें तो आप देख सकते हैं, जैसे हम अभी पहले चर्चा कर ही रहे थे, सूचनाओं की भरमार है अब आपके पास में। पहले उन सूचनाओं के लिए अखबार देखा करते थे, और चूंकि मेरा अभी भी बहुत से समाचार पत्रों में, संस्थानों में बहुत सा संपर्क है, मेरे बहुत से मित्र लोग अभी भी काम करते हैं, तो मैं देखता हूं कि जो गिरावट आई है वो गिरावट ये आई है कि एक ही व्यक्ति को चार चार काम करने पड़ते हैं। पहले एक पत्रकार होता था, केवल खबर लिखने का काम होता था, पूरी
0: अच्छा
1: तन्मयता से खबर लिखता था। आज वही पत्रकार उसी संस्थान के लिए, उसका डिजिटल संस्करण होगा तो उसके लिए वीडियो भी बनाएगा, उसकी वेबसाइट होगी तो वेबसाइट के लिए भी उसी को खबर लिखनी है। अब अखबार में खबर लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, वेबसाइट का थोड़ा सा अलग हो सकता है, और उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है तो फिर उसके लिए प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। तो एक ही व्यक्ति को जब चार काम देते हैं, तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक दौर में जिन समाचार पत्रों को पढ़कर हम लोग भाषा सीखते थे, उन समाचार पत्रों में बहुत सारी अशुद्धियां आने लगी। जिन समाचार पत्रों को हम ये मानते थे कि ये मानक है, ये पैमाना है भाषा की शुद्धता का, वो अखबार आज आप उनमें 10-10 कमियां 10-10 गलतियां निकाल सकते हैं। तो ये जो एक तरीके से डिजिटल की दौड़ है, अंधी दौड़ है, इसका ये एक बड़ा नुकसान है। लाभ इतना है कि आपको घर बैठे, आपको ऑफिस में बैठे बैठे और दुनिया भर की जहां की जो सूचनाएं चाहिए वो आपको मिल जाती हैं। मुझे याद आता है एक दौर में जब हम समाचार पत्रों में काम करते थे, एजेंसियां जो है वो न्यूज भेजती थी और फैक्स के माध्यम से न्यूज आती थी। आप लोगों ने भी देखा होगा, कागज चलता था, रोल उसका चलता रहता था और वो खबर आती रहती थी। लेकिन अब देखिए, अब टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है उसके कारण आज कोई फैक्स की आवश्यकता ही नहीं है आपको। सब कुछ आपको मेल पर मिलेगा, सब आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उन पर मिल जाएगा और तुरंत हर हाथ में। जिस तरीके से मोबाइल और तेज गति का इंटरनेट आया है, इसने सूचनाएं पहुंचाने की गति भी बहुत बढ़ा दी है। और साथ ही साथ फिर से उस बात को दोहराऊंगा कि नागरिक पत्रकारिता के कारण पत्रकार भी अब जांच के दायरे में हैं कि ये जो सूचना, ये जो रिपोर्ट दे रहे हैं ये सही है या नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो नुकसान वाली बात है, अभी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले ही आपको ध्यान होगा, बॉलीवुड के महान अभिनेता धर्मेंद्र का जो निधन हुआ, एक बहुत बड़े चैनल ने निधन होने से पहले ही वो खबर चला दी उनके निधन की, है ना। ठीक इसी तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें हमारे को जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है, चुनाव परिणाम हम देखते हैं तो सबसे आगे मैं, सबसे आगे मैं, इस चक्कर में बहुत से चैनल जो है वो अपने मन से भी कुछ चीजें वो बढ़ा के दिखा देते हैं। तो ये कुछ अतिरेक भी होने लगा है।
0: नहीं, बहुत ही गहरी बात बताई आपने मुझे। ये बात तो बहुत ही प्रभावित की कि एक पत्रकार को वेबसाइट और डिजिटल और टीवी सबके लिए काम करना पड़ता है। ये बात तो मुझे आज पहली बार पता लगी। लेकिन ये भी बात आपने बहुत जोरदार बताई मुझे कि आजकल जो न्यूज आती है, कई बार मैं भास्कर का ऐप देखता हूं तो उसमें कई बार स्पेलिंग मिस्टेक मिल जाती है जो कि
1: नहीं,
0: पहले
1: अखबार
0: कभी
1: में
0: नहीं
1: भी
0: होता,
1: मिलती हैं बहुत सी।
0: अखबार में मिलती है।
1: हाँ, मैं नाम की बात नहीं करूंगा और केवल एक अखबार की बात नहीं है,
0: हाँ,
1: बहुत
0: सभी
1: सारे
0: में।
1: समाचार पत्रों में ये स्थिति देखने को मिलती है कि भाषा का स्तर तो गिरा ही है। जो एक तरीके से प्रभावशाली और साहित्यिक भाषा होती थी वो तो अलग बात है, जो त्रुटि है भाषा की, मात्रा छोटी आएगी
0: मात्रा
1: बड़ी
0: छोड़े,
1: आएगी,
0: हाँ
1: हाँ, उनमें भी बहुत सारी गिरावट देखने
0: वो
1: को
0: भी बहुत है।
1: मिली।
0: और थोड़ा स्तर की बात है कि जो एक मानदंड होता था भाषा का वो नहीं रहा है। थोड़ी थोड़ी सतही भाषा, मैं कहूंगा, बाजारू तो नहीं कहता लेकिन सतही
1: हाँ
0: भाषा आ गई है वहां।
1: जी
0: चलिए,
1: जी
0: आप थोड़ा सा ट्रिकी सा सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे शर्मा जी। आज मीडिया की विश्वसनीयता पर भी कुछ बताइए। जैसे आज स्पीड ज्यादा है या सत्य है, तो इसके
1: नहीं
0: बारे में क्या क्या कहेंगे आप?
1: नहीं विश्वसनीयता का बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत अच्छा, बहुत प्रभावी विषय है ये। और ये मीडिया संस्थानों में काम करने वाले लोगों के लिए और इनके जो मीडिया संस्थान को चलाने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये आत्ममंथन का विषय है। जिस तरीके से पेड न्यूज की बात आजकल होने लगी है और नैरेटिव सेट करने की जो बात होने लगी है, उसमें कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में तो सब लोग हैं। और मैं अक्सर एक बात और कहता हूं कि एक दौर में पत्रकारिता मिशन हुआ करती थी और आजकल मिशन के साथ पहले के जुड़ जाता है, उससे भी मीडिया संस्थान अछूते नहीं है। तो मिशन और कमीशन का जो ये अंतर है, ये अपने आप में ये गहरा संकट है लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही चिंताजनक है और बहुत ही कंसर्न का इशू है। तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने अभिव्यक्ति को लोकतांत्रिक बनाया है या भ्रम बढ़ाया है? खासतौर से चुनावों के दौरान तो ऐसा कंफ्यूजन सा हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या सुने और क्या ना सुने।
1: देखिए, जो बात अभी हम कर रहे थे उससे जुड़ी हुई बात है ये
0: वही
1: कि मिशन
0: बात।
1: और कमीशन वाली जो बात है, तो डिजिटल के इस दौर में निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि पहले जो निर्भरता समाचार पत्रों पे या कुछ चैनल्स पर ही थी उसमें तो कमी आई है। पहले जो उनकी मोनोपोली होती थी, और मैं कहता हूँ कि चुनाव के, चूंकि मेरा तो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में और सर्वे वगैरह के कारण मेरा बहुत से राजनेताओं से भी संपर्क है, तो जब चुनाव होता है उस समय असलियत सामने आती है मीडिया संस्थानों की भी और उसी समय असलियत सामने आती है पॉलिटिकल पार्टीज की भी। और बाहर से लोग चाहे जो कुछ कहें, लेकिन भीतर का दलदल कैसा है वो यदि सामान्य व्यक्ति जानेगा तो उसका विश्वास उड़ जाएगा किस तरीके से एक एक नेता से इन संस्थानों के प्रतिनिधि जाकर संपर्क करते हैं, उनको पैकेज देते हैं। और आपको आश्चर्य होगा आलोक जी, इस तरह के पैकेज दिए जाते हैं कि आप इतने लाख रुपए देंगे तो आपकी नेगेटिव खबर नहीं छपेगी, आप इतने लाख रुपए देंगे तो आपकी पॉजिटिव खबर छपेगी, और आप इतने लाख रुपए देंगे तो आपकी पॉजिटिव छपेगी और आपके प्रतिद्वंदी की नेगेटिव छपेगी। इस स्तर तक भी जो है मैनेज होते हैं।
0: ये मैनेजमेंट तो बड़ा वो है। चलिए, लेकिन आपने बहुत सारी
1: अंदर का सच निकाल कर रख दिया है आपके सामने।
0: बिल्कुल, लेकिन बहुत ही आंखें खोल देने वाला आई ओपनिंग सा है सारा। आई ओपनिंग तो क्या है, लेकिन सत्य जब बिल्कुल सामने कोई विश्वसनीय व्यक्ति बोलता है तो फिर उसमें एक वजन आ जाता है। तो चलिए, लेकिन थोड़ा सा हम इसको काव्य में बनाते हैं। मीडिया और समाज पर आधारित कोई छोटी सी कविता या व्यंग पंक्तियां है, जो कुछ भी आप सुनाना चाहें सुनाइए, हम थोड़ा सा रुख बदल लेते हैं।
1: जी जी जी, आपने मीडिया वाली बात कही तो मैं नाम तो नहीं लूंगा, पर एक संस्थान में जब मैं काम करता था और मेरी एक खबर वहां फ्रंट पेज की लीड खबर जाने वाली थी और रुक गई। तो जब वो खबर रुक गई तो मैंने पता किया, तो बाद में पता लगा कि वो खबर किसी ऐसे संस्थान से संबंधित थी जो उस समाचार पत्र के बड़े विज्ञापन दाता थे।
0: अच्छा।
1: तो चूंकि मैं मिशन के लिए पत्रकारिता में आया था तो मेरे रक्त में उबाल आया, और रक्त में उबाल आया तो कलम से लगातार कुछ 16 पंक्तियां निकली ऐसी। मैं 8 पंक्तियां आपके समक्ष निवेदित करता हूं, उसमें भाव जो है वो आप समझ लेंगे एकदम कि क्या बात कहना चाहता हूं। तो मैंने उस समय जो कुछ प्रयास किया मेरी भावनाओं को व्यक्त करने का, वो ये था कि सच्चाई का गला घोंटते गुणी जनों को देखा है, सच्चाई का गला घोंटते गुणी जनों को देखा है, धनबल के आगे तो उनको घुटने टेकते देखा है, बाहुबल के आगे उनको मिमियाते भी देखा है, और उन्हीं को राष्ट्रवाद की डिंगे हांकते देखा है। ये मन के भाव यहां से शुरू होते हैं, फिर 8 पंक्तियां और लिखते हैं, और फिर आखिर में उसका समापन मैं करता हूं, क्योंकि ये केवल एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये भी है कि समाचार पत्रों को चलाने के लिए जिस अर्थ की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, और जो प्रबंधन के लोग हैं उनका विषय भी यदि आप देखेंगे तो फिर आखिर की 4 पंक्तियां मैं लिखता हूं कि मैं नहीं कहता गलत राह पर तुमने चलना सीख लिया, मैं नहीं कहता गलत राह पर तुमने चलना सीख लिया, मैं नहीं कहता कठिन राह को कैसे तुमने ठीक किया, किंतु अवलोकन आत्म का भी बहुत जरूरी चाहिए, और जैसे भी हैं आप और हम दोनों को दर्पण चाहिए, जैसे भी हैं आप और हम दोनों को दर्पण चाहिए।
0: तो बहुत मतलब दर्पण चाहिए आपको, सच दिखाने के लिए दर्पण चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मजा आ गया, बिल्कुल सुंदर, बहुत सुंदर और बहुत ही सटीक।
1: ये एकदम जो प्रत्यक्ष अनुभव किया वहीं से निकले हुए शब्द।
0: लेकिन आपने बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही एकदम गहरे असर करने वाली कविता सुनाई हमारे को, मजा आ गया। चलिए, आप थोड़ा सा आपके दूसरी विधाओं की तरफ आते हैं। दूरदर्शन राजस्थान पर 500 प्लस कार्यक्रमों की एंकरिंग, ये एक बहुत बड़ा अनुभव है। दूरदर्शन पर काम करने का अनुशासन और गरिमा कैसी होती है, कुछ इसके बारे में अनुभव आपका बताइए, हमारे साथ साझा कीजिए।
1: जी, बहुत ही अच्छा और सकारात्मक अनुभव है मेरा दूरदर्शन पर काम करने का। सकारात्मक और अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बाकी अन्य जो निजी चैनल हैं उन पर भी मेरा आना जाना रहता है, तो एक बड़ा अंतर जो दिखता है और जो मैंने खुद ने भी महसूस किया कि जो प्राइवेट चैनल्स पर बहुत से लोग अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ बनकर जाते हैं, ऐसे बहुत से लोग दूरदर्शन पर आकर फेल होते हुए मैंने देखे हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, फेल होते हुए इसलिए देखे हैं क्योंकि प्राइवेट चैनल पर आप जाते हैं, मान लीजिए आपका 25 मिनट का शो रहता है और उस 25 मिनट के शो में एंकर 3-4 मिनट शुरू में प्रारंभ में ले लेता है, 20 मिनट आपके पास बचते हैं और उस 20 मिनट के लिए आपने 5 एक्सपर्ट बैठा रखे हैं, तो वो पांचों लोगों में होड़ लगी रहती है कि कैसे भी करके हम ज्यादा से ज्यादा अपनी बात रखें, तो उनको मुश्किल से 3 मिनट 3.5 मिनट मिलते हैं। दूरदर्शन पर जो हम शो करते हैं उसमें यदि हमने 2 लोगों को भी एक्सपर्ट के रूप में बुलाया है और कम से कम कार्यक्रम का समय भी हमारा आधे घंटे का है, तो उनको लगभग लगभग 12-13 मिनट कम से कम एक एक व्यक्ति को मिलते हैं। कुछ कार्यक्रम हम ऐसे भी करते हैं जो 50-55 मिनट का कार्यक्रम है और एक्सपर्ट अकेला ही है, तो ऐसे में यदि उनके पास में कंटेंट है, उनका अध्ययन है, तो वो वहां बोल पाते हैं। नहीं तो मैंने बहुत से ऐसे स्वनाम धन्य ऐसे ऐसे विशेषज्ञों को देखा है कि जो 10 मिनट 15 मिनट बाद में बगले झांकने लगते हैं। तो वहां अध्ययन करने वाला व्यक्ति वहां उसी प्रकार का व्यक्ति चल सकता है जिसके पास कंटेंट है। ये एक बड़ा अंतर दूरदर्शन के कार्यक्रमों में और बाकी अन्य चैनल्स के कार्यक्रम में देखने को मिलता है।
0: हाँ, मतलब अगर मैं मोटे शब्द मतलब एक आम भाषा में कहूँ, दूरदर्शन में लफाजी नहीं चलती।
1: हाँ, लफाजी नहीं चलती, जबरदस्ती के आरोप प्रत्यारोप नहीं चलते। हाँ, फैक्ट पर जो है बात, वो फैक्ट पर बात होती है, और ये दूरदर्शन की पहचान पहले भी थी आज भी।
0: हाँ, बिल्कुल सही बात। एक बहुत ही गरिमा में ऐसा होता है, डिसेंट होता है सारा कुछ।
1: हाँ,
0: तो अगर ये जो आपका एंकरिंग का इतना लंबा और यादगार अनुभव है, इसमें से कोई ऐसा पल निकाल के लाइए, कोई यादगार पल जो आज भी आपके दिल में बसा है, कोई ऐसी याद हो, गोता लगा के हमारे को सुनाइए कोई ऐसा।
1: देखिए, बहुत सारे अनुभव हैं, चूंकि सैकड़ों कार्यक्रम हो गए हैं तो बहुत सारे अनुभव हैं। एक कुछ विशेष अनुभव की बात करें तो कुछ कार्यक्रम ऐसे हुए कि जिनमें एक्सपर्ट आए, और सामान्यतया हमारा जो 28 मिनट का कार्यक्रम हुआ करता है उसमें एक एक्सपर्ट आते हैं, तो हम ये कल्पना करके चलते हैं कि 7 प्रश्न हम करेंगे तो उसमें कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, जिसमें लगभग ये मान के चलते हैं कि 3 मिनट एक्सपर्ट बोलेगा, 1 मिनट एंकर बोल लेगा।
0: ठीक है,
1: 5-7 बार ऐसा हो गया कि जो एक्सपर्ट आए उनसे हमने सवाल किया और उन्होंने एक लाइन में जवाब देके और वो चुप हो गए। तो ऐसे करते करते जो 7-8 प्रश्नों के बारे में हम सोचते थे, उसके बजाय हमने 15 प्रश्न कर लिए और देखा कि समय अभी भी 18 मिनट ही हुए और 18 मिनट में 15 प्रश्न हो गए। तो ऐसे में फिर बाद में उस कार्यक्रम को, चूंकि 28 मिनट चलाना था, तो बाद में मुझे खुद को ही एंकर के साथ में एक्सपर्ट की भूमिका का भी निर्वहन करना पड़ा कि हाँ ठीक है, आप 2 लाइन बोल रहे हैं तो उस 2 लाइन को और विस्तार देके कैसे 10 लाइन में मुझे करना है, तो ये भी कई बार करने को मिला। एक बार और एक गजब अनुभव ऐसा हुआ कि एक कार्यक्रम मेरा चल रहा था, वो कार्यक्रम जैसे ही पूरा हुआ तो एक्सपर्ट तो स्टूडियो से बाहर चले गए और ऊपर पैनल पर जो प्रोड्यूसर बैठते हैं, उन प्रोड्यूसर का हम जो ईपी लगाते हैं, ईयरप्लग लगाते हैं, तो उनका संदेश आया कि एक्सपर्ट को बाहर जाने दीजिए, एंकर को बैठे रहना है।
0: अच्छा,
1: और फिर मैं जब बैठा रहा तो उन्होंने कहा कि आपको एक कार्यक्रम और अभी करना है, क्योंकि उस कार्यक्रम के लिए जो एंकर आने वाले थे वो किसी कारण से स्टूडियो नहीं पहुंच पाए, बाहर बारिश बहुत अधिक है और उनकी गाड़ी खराब हो गई और वो फंस गए हैं, तो इसलिए अगला कार्यक्रम भी आपको ही करना है। मुझे न गेस्ट का पता, न मुझे विषय का
0: स्क्रिप्ट,
1: पता
0: स्क्रिप्ट नहीं होगी कुछ भी
1: होगा, विषय का भी नहीं पता कि क्या टॉपिक क्या है,
0: क्या टॉपिक,
1: लेकिन उन्होंने कहा कि 3 मिनट में शुरू करेंगे, एक्सपर्ट नए आ गए, उसी समय उन्होंने बताया माँ शारदे की कृपा से। वो कार्यक्रम भी हमने उसी तरह संचालित किया कि जैसे किसी को महसूस भी नहीं हुआ।
0: मजा आ गया जी, ये तो बिल्कुल जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप बहुत छोटे छोटे जवाब देते हो, मेरे को संभालना मुश्किल हो जाएगा किस तरह से मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल, ये बहुत बहुत सही बात बताई आप। चलिए, इसी इस दूरदर्शन की याद पे और इन सब बातों की आपकी याद पे सुन के रुक के एक गाने का आनंद ले लेते हैं हम, फिर आगे बातचीत शुरू करते हैं।

0: कभी तो हटाए।
1: हाँ तो विवेकानंद जी, अब थोड़ा सा हम एकेडमिक की तरफ चलते हैं। एक अच्छे एंकर के लिए आपको क्या लगता है सबसे जरूरी गुण क्या है? आवाज, व्यक्तित्व, तैयारी या संवेदनशीलता, कुछ इसके बारे में बताइए। और आजकल तो थोड़ा ह्यूमर सा भी आ गया है।
2: हाँ ये भी आता है जी, बिल्कुल। मुझे लगता है सबसे पहली, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यदि आप इस लाइन में हैं और काम कर रहे हैं, तो आपका नित्य प्रति का अध्ययन, वो बहुत आवश्यक है। आपका अध्ययन होगा और फिर जो आपने पढ़ा है, उस पढ़े हुए को आप यदि समय समय पर रिपीट करते जाते हैं, तो मुझे ध्यान आता है दूरदर्शन पर भी जब कई ऐसे विशेषज्ञ भी आते थे कि जो बहुत विद्वान, बहुत पढ़े लिखे, अधिकार पूर्वक अपने विषय पर बोलने वाले, तो उस दौर में जब मेरे को पता लगता था कि ये विषय है और ये एक्सपर्ट है, मुझे नहीं पता एक्सपर्ट कितनी तैयारी करके आते थे, लेकिन मुझे 3 घंटे 4 घंटे उस विषय पर पूरी तैयारी करनी होती थी कि कहीं ये नहीं हो जाए कि सामने वाला ये कह दे कि तुम सवाल तो कर रहे हो पर क्या तुम्हें इसके बारे में पता भी है। यदि ये स्थिति हो जाती है, आजकल देखते हैं बहुत सारे कार्यक्रमों में एक्सपर्ट जो है वो एंकर को ये कह देते हैं कि आपका होमवर्क ठीक नहीं है, होमवर्क पूरा करके आइए। मैं इस बात से सदैव जो है वो सचेत रहता था कि अपनी ऐसी स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए। जिस विषय पर हम सवाल कर रहे हैं उसकी जानकारी, तो वो जो तैयारी वाली बात है, वो तैयारी निश्चित रूप से आपको करनी ही पड़ेगी। संवेदनशीलता की जो बात है, यदि आप किसी टीवी कार्यक्रम की बात करते हैं तो अलग है, यदि आप लाइव किसी कार्यक्रम में हैं, किसी मंचीय कार्यक्रम में हैं आप, तो वहां आपको ऑडियंस को देखना पड़ता है कि सामने पब्लिक कैसी है, जनता कैसी है, और उसके अनुरूप फिर उस कार्यक्रम को ढालना है। उस कार्यक्रम में रोचकता वाली जो बात करते हैं आप, ह्यूमर वाली जो बात कह रहे हैं, तो उस ह्यूमर के भी बहुत सारे तरीके, बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। उसमें सकारात्मक चीजें भी हो सकती हैं। आप बीच बीच में, जैसे मेरा एक ये आनंद का विषय रहता है कि मैं यदि एंकरिंग करता हूँ बाहर

0: बहुत ही अच्छी बात बता दी है आपने, और ये तो सीखने वाली बात है और तैयारी तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात।
1: बिल्कुल
0: तो अब इसी पे, चूंकि आपने बात हुई एंकर की भी बात हो गई, कवि की भी बात हो गई, और आपने बताया कि कविता से भी थोड़ा सा लोग जुड़ जाते हैं अगर ऑडियंस सामने लाइव बैठी हो, तो एंकर और कवि दोनों रूपों को अगर जोड़ती हुई कोई चरणता हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें तो वो स्वागत है आपका। कुछ सुनाइए इसके बारे में।
1: मैं अभी आप कह रहे हैं तो एक कविता की कुछ पंक्तियां हिंदी भाषा पर जो है मैं आपके समक्ष और श्रोताओं के समक्ष निवेदित करना चाहता हूँ। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है वो हमारी मातृभाषा में होनी चाहिए, और भाषाओं का ज्ञान जो है वो जरूरी है। आप दुनिया भर की भाषाएं पढ़िए, उनका ज्ञान लीजिए, लेकिन आपको जिस भाषा में सपने आते हैं उस भाषा में यदि आप प्रारंभिक शिक्षा लेंगे तो फिर जीवन बहुत आनंदित होता है। और भाषाओं में कई बार जो है वो हम लोग देखते हैं, नई जो पीढ़ी है वो अपनी हिंदी भाषा को लेके और थोड़ा सा हेय दृष्टि वो रखती है, तो इसलिए मैंने एक ये
0: हाँ
1: कविता लिखने का प्रयत्न किया। निवेदित करता
0: जी,
1: हूँ कि हिंदी तो
0: स्वागत।
1: बिंदी है जी हाँ भारत माँ के भाल की, हिंदी तो बिंदी है जी हाँ भारत माँ के भाल की, और लाली माँ लगती है ये रूप राशि के गाल की, ये भारत का आभूषण है माता का गलहार है, विश्व पटल पर भाषाओं में इसका भी सत्कार है, संस्कृत की बेटी है ये तो संस्कृति की संवाहक है, अंग्रेजी के पीछे भगते फिर क्यों बेटे नाहक हैं, इसे बढ़ाएं इसे बचाएं अपनी जिम्मेदारी है, ऐ संस्कारी दौर में इसकी अपनी पहरेदारी है, ऐ संस्कारी दौर में इसकी अपनी पहरेदारी है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि आपको अन्य भाषाएं भले कार दे देंगी, संस्कार आपको माँ हिंदी की शरण में आने पर ही मिलेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही वो है, और कई बार हमारे पब्लिक सेक्टर्स में जो हिंदी दिवस होता है उस पे यही बात चर्चा में होती है कि केवल एक हिंदी दिवस पे हम हिंदी की बातें करते हैं और बाकी पूरे साल इसको भूल जाते हैं। मेरे को याद आता है बहुत सारी ऐसी बातें हैं,
1: तो अपनी भाषा
0: लेकिन
1: का अभिमान होना चाहिए हमें, ये जो
0: अभिमान
1: स्वाभिमान है ये गर्व का विषय है कि हमारी भाषा ऐसी भाषा है जिसमें किसी तरह की दरिद्रता नहीं है। एक एक शब्द के लिए हमारे पास में, आप पैर की बात कीजिए कितने तरह के शब्द मिल जाएंगे, आप
0: बिल्कुल।
1: रिश्तों की बात कीजिए तो चाचा ताऊ बुआ फूफा मामा कितने शब्द मिलेंगे,
0: हाँ,
1: और
0: उनमें
1: दूसरी
0: अंकल और आंटी
1: भाषाओं
0: के
1: में
0: सिवा
1: इनकी,
0: कुछ नहीं। हाँ
1: हाँ तो ये यदि आप देखेंगे तो हमें गर्व होता है कि हम जो है एक ऐसी भाषा जो देववाणी से निकली है उसके
0: बिल्कुल।
1: अनुयायी हैं।
0: चलिए, अब थोड़ा सा आपका राजनीतिक विश्लेषण जो आप करते हैं उसके बारे में रुख कर लेते हैं। आप कई राष्ट्रीय चैनलों पर आते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में, तो आप ये बताइए, राजनीति को अब समझना आसान हुआ है या जटिल हो गया है? क्योंकि आजकल की जो राजनीति है उसको या तो पत्रकार समझ पाते हैं या पॉलिटिकल लोग समझ पाते हैं, आम आदमी का कहीं उसमें कुछ लेना देना है, कुछ है या नहीं है?
1: देखिए वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है व्यक्ति की उसमें रुचि कितनी है। मैं जब पत्रकारिता के क्षेत्र में आया तो मेरे को जिस तरीके से रिपोर्टिंग करनी होती थी, तो जब रिपोर्टिंग करनी होती थी तो उस विषय की जानकारी भी चाहिए, तो उस विषय के बारे में पढ़ना मैंने शुरू किया,
0: जी
1: और फिर जब पढ़ना शुरू किया तो फिर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ में बैठना उठना शुरू किया, वहां से व्यावहारिक ज्ञान आता है लोगों के साथ बैठ के। राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करने वाले बहुत से मेरे मित्र हैं तो उनके साथ कई कई घंटों बैठता था, और पुराने नेताओं के वो जो कहानी किस्से सुनाते थे, भैरव सिंह जी शेखावत के,
0: हाँ,
1: शीश राम ओला के, है ना,
0: मोहनलाल
1: अलग अलग जो
0: सुखाड़िया के।
1: पार्टियों के,
0: हाँ
1: हाँ, तो उनके जो वो किस्से सुनाते थे उससे पता लगता था कि माइंडसेट क्या था व्यक्ति का। फिर जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें तो ये कागजों में क्या लिखते हैं, इनकी नीतियां क्या हैं, इनकी विचारधारा क्या है, और फिर इनके जब सरकार होती है तो किस तरह के फैसले होते हैं, किस आधार पर ये सरकार चलाते हैं, उनकी योजनाओं में किस चीज की झलक मिलती है। तो ये जब आप अध्ययन करते हैं, लोगों से सुनते हैं, खुद विश्लेषण करते हैं, तो धीरे, और साथ में आम जनता से जब मिलना होता है, मेरा तो ये एक सौभाग्य रहा कि अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उन विधानसभा चुनाव में मेरे को सर्वे करने का अवसर मिला, करीब करीब
0: ओके
1: अट्ठाईस
0: ओके
1: तीस विधानसभा क्षेत्रों में मैं गया, तो
0: अच्छा
1: लगभग राजस्थान के 1,500 से अधिक गांवों में मेरा जाना हुआ, तो वहां भी मैं सीखने का प्रयास करता हूँ गांव में बैठा हुआ चौपाल पर

0: बैठा हुआ व्यक्ति वो शहर के व्यक्ति से कहीं ज्यादा राजनीति समझता है। वो चाहे उसने किताबें कम पढ़ी होंगी, लेकिन जो उठापटक होती है वो उस मामले में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शहरी लोगों से बहुत आगे है।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया बताया आपने, और इनफैक्ट आपने मेरे अगले सवाल का भी जवाब दे दिया। मैं चुनावी सर्वे के बारे में, मेरा सवाल था अगला वाला, कि ये जो
0: अच्छा
1: चुनावी सर्वे कंटेंट और रणनीति पर काम करने का आपका अनुभव है, तो पर्दे की पीछे की राजनीति के बारे में कुछ थोड़ा सा शॉर्ट में बता पाएंगे कैसे चलती है,
0: जी जी
1: खासतौर से
0: बिल्कुल
1: चुनावी
0: बिल्कुल।
1: समय में?
0: वैसे तो देखिए ये राज की बात है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूं कि
1: बोल दीजिए राजा।
0: 2010 के आसपास से भारत की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है। 2010 से पहले की राजनीति को देखते हैं, खुद राजनेता जो है वो अधिकांश राजनेता पढ़ने लिखने वाले होते थे, विद्वान होते थे। मैं ऐसे बहुत से नेताओं को जानता हूं कि जो ट्रेन में सफर करते थे तो साथ में कोई ना कोई दो पुस्तकें जरूर होती थी।
1: बिल्कुल सही बात।
0: आज जो दौर है वो मैनेजमेंट का दौर है, और ये कहते हुए मुझे कोई हिचक और झिझक नहीं है कि यदि आपके पास में धन है तो उससे बुद्धि भी खरीदी जाती है। और आपके सलाहकार, आपकी मैनेजमेंट की टीम में कैसे लोग हैं, आपके पास कंटेंट वाले कैसे लोग हैं, आपको जाकर बोलना है मंच पर, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, रॉ मटेरियल तो आपको मिल ही जाता है। और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं कि पूरा रेडीमेड ही जो है उनको कंटेंट परोस दिया जाता है, उनको जाके केवल उसका वाचन करना होता है। तो परिवर्तन है, मैनेजमेंट का भी एक बड़ा रोल हो गया है। कंपनियां मैनेजमेंट, पीआर कंपनियां जो है, चुनाव काम करने वाली कंपनियां इतना तक तय करती हैं कि नेताजी को किस तरह के कपड़े पहनने हैं,
1: हाँ बिल्कुल सही
0: नेताजी
1: बात।
0: को जूते और चप्पल कैसे पहनने हैं, उनको कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कितना खाना है, तमाम चीजों पर, आपकी दाढ़ी कैसी रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी, बाल कैसे रहेंगे, तमाम चीजों, और चश्मा कैसा लगाओगे आप, ये इतना तक मैनेजमेंट होने लग गया है आजकल।
1: ये इमेज बिल्डिंग का जो एक्सरसाइज हो गई है, बिल्कुल सही बात
0: जी
1: बता रहे हो
0: हाँ
1: आप। बिल्कुल, ये चश्मा कैसा पहनना है और लुई वेटो के कपड़े पहनने हैं, कौन से किसके पहनने हैं, बहुत सही बात है। अभी बात हो ही रही थी ना निशिकांत दुबे के बारे में।
0: हाँ
1: बिल्कुल सही बात है। चलिए तो फिर यहाँ रुक के हम जो ये विरोधाभास है हमारे जीवन में और राजनीति पे, इस पे रुक के एक गाना सा सुन लेते हैं कोई, एक अच्छा सा, और फिर आगे चलते हैं।

0: हाँ विवेकानंद जी, अब तो थोड़ा सा आपके कविताओं की तरफ आते हैं, आपके इस जीवन की तरफ आते हैं।
1: जी
0: पत्रकार और विश्लेषक के भीतर से कवि कब और कैसे जन्मा, ये और आपकी ये जो ज्यादातर कौन से विषय हैं जिनके आसपास आपकी कविताएं घूमती हैं, इनके बारे में कुछ बताइए हमें।
1: देखिए, मैं तो वैसे अभी भी अपने आप को कोई कवि नहीं मानता। मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी दो तरह के काम है, एक रिपोर्टिंग का काम होता है, दूसरा विचार का काम होता है। तो
0: जी
1: विचार जो है वो हम कोई लेख पढ़ते हैं, संपादकीय पढ़ते हैं, कोई व्यंग पढ़ते हैं, उससे हमारा एक माइंडसेट भी बनता है। तो मैंने पत्रकारिता के शुरुआती दौर में ही रिपोर्टिंग करने के साथ साथ कॉलम लिखना शुरू किया, और
0: अच्छा
1: संयोगवश मेरे मन में यह था कि इस भीड़ से अलग लिखना है और भीड़ से अलग दिखना है, तो उसके लिए कुछ नया प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैं जो कॉलम लिखता था, उस कॉलम का मैं समापन, एक तरीके से उसका जो सार है, यदि मान लीजिए मैंने 250 शब्दों का कोई व्यंग लिखा है कॉलम में,
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: उसका सार मैं 4 पंक्तियों की कोई तुकबंदी करके किया करता था।
0: ओके ओके अच्छा
1: तो वो तुकबंदी, जो 4 पंक्तियों की तुकबंदी होती थी, उसमें एक तरीके से उसका सार आ जाता था। और मेरे कुछ मित्र, कुछ मेरे इस तरीके के शुभचिंतक जो है, वो उनको नियमित पढ़ते भी थे और मेरा उत्साहवर्धन भी करते थे। संयोग से एक बार एक कोई कार्यक्रम हो रहा था जामरौली जयपुर में, और उसमें वो मेरे एक मित्र थे, उनके जिम्मे वो कवि सम्मेलन का कार्यक्रम आ गया। उन्होंने मेरे से कहा कि आपको भी काव्य पाठ करना है। मैंने कहा जी, मैं काव्य पाठ कहाँ करूंगा, मैं तो लिखने वाला आदमी हूँ। मंचों पर काव्य पाठ, मंचों पर मैं विषय जरूर रखता था, व्याख्यान वगैरह देता था मैं, पर मैंने कहा कविता सुनाना मंच पर बड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपका नाम बोलूंगा वहां और 4-5 हजार लोग रहेंगे, आप नहीं आओगे तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी, आप देख लेना। मैं बिना तैयारी के वहां पहुंच गया और फिर वही मंच पर बैठे बैठे कुछ दोहे मैंने बनाए, और जब देखा कि उन दोहों को, जब मैं दोहे में सुना रहा था, तो सामने जो पब्लिक थी वो जोरदार मेरा उत्साहवर्धन किया। उन्होंने खूब तालियां मिली, खूब उनकी मेरे को दाद मिली, और उस वहां से मेरा एक आत्मविश्वास बढ़ा और मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, अपन इस दिशा में भी थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। ज्यादातर विषय जो है तात्कालिक विषय मैं लेता था, कोई मतलब कभी मेरे को याद नहीं आता कि मैंने कागज पेन लेकर बैठा हूं कि हाँ मेरे को कविता लिखनी है। मुझे कहीं से कुछ दिखा, कोई घटना, कोई परिस्थिति, उसी में से कुछ ना कुछ पंक्तियां, चाहे दोहे के रूप में निकली हो, चाहे किसी अलग छंद के रूप में निकली हो, चाहे मुक्तक के रूप में निकली हो, तो इसी आधार पर संवेदनशीलता जो है वो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। और विचार व्यक्त करने का आपका यदि अभ्यास रहता है, वो चाहे गद्य में हो चाहे पद्य में हो, वो यदि अभ्यास है तो फिर चीजें थोड़ी आसान होने लगती हैं।
0: बहुत सुंदर, मजा आ गया आपकी बात सुनकर। अच्छा अब विवेकानंद जी, हम करीब करीब आखिरी पायदान पर आ गए हैं।
1: जी
0: मैं आपसे एक प्रश्न, आज के युवा पत्रकार एंकर या कवि बनना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने सब विधाओं का आपके पास अनुभव है, तो
1: जी
0: इनको आपको अगर कोई तीन में सबसे महत्वपूर्ण सलाह देनी होगी तो क्या देंगे आप?
1: देखिए, मैंने जब पढ़ाई पूरी की थी तो मेरे मन में भी कोई ये विचार नहीं था कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है। मुझे ये था कि मुझे कोई ना कोई काम, अपना काम करना है, अपने तरीके से करना है, और किसी के अधीन रहना ये कहीं ना कहीं मेरे मन को कचोटता था। तो इसलिए मैंने ये लाइन चुनी पत्रकारिता की, कवि सम्मेलनों की तरफ आया, लेखन की तरफ आया, चुनाव की रणनीति वगैरह की, ये जो लाइनें हैं। और आज मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी भी अक्सर ये एक बात कहते हैं कि आप नौकरी मांगने वाले मत बनिए, नौकरी देने वाले बनिए। तो आप चाहे कवि बनना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, पीआर इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हैं, चुनावी क्षेत्र जो है उसमें आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में आना चाहते हैं, यदि कोई भी क्षेत्र जो आप सोचते हैं, सबसे पहली और पहली आवश्यकता है आपका अध्ययन। उस क्षेत्र के संदर्भ में आपको नॉलेज जो है वो जरूरी है, और नॉलेज, प्रामाणिक नॉलेज चाहिए। आजकल जो एक शब्द चलता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उससे काम नहीं चलेगा। आपको प्रामाणिक जानकारी होना वो बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और तीसरी, तो पहली बात हो गई आपका ज्ञान, प्रामाणिक ज्ञान वो आएगा अध्ययन से, दूसरी बात परिश्रम, और तीसरी जो बात है वो है फिर धैर्य। ये नहीं होगा कि आज आपने पौधा लगाया और कल वो आपको फल देने लग जाए। और हमारे यहाँ तो जो गीता में कहा जाता है कि कर्म करो फल की इच्छा, फल की जो है बात वो ईश्वर पर छोड़ दो, फल की इच्छा मत करो, तो अपने आप देर सवेर परिणाम आता है, सुखद आता है। और किसी बार किसी क्षेत्र में आप काम करते हुए असफल भी हो जाते हैं, तो फिर ये सोचकर आगे बढ़िए कि ईश्वर ने कहीं इससे बड़ी भूमिका के लिए आपका चयन किया है। निराश और हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, परिश्रम करते जाइए, जीवन अपने आप आनंदित होगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि पसीना जो होता है, परिश्रम का पसीना, उसकी महक ही कुछ अलग होती है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपने इतनी तीन बातें इतनी बढ़िया बताई हैं। आशा है श्रोताओं, मुझे आशा है कि ये जो विवेकानंद जी ने बातें बताई हैं ये हमारे लिए बहुत सार्थक रहेंगी। तो विवेकानंद जी, आज की सार्थक और प्रेरणादायक बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार हमारी तरफ से।
1: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि जब आपने बीच बीच में मेरे से बहुत सारी कविताएं सुन ली हैं, तो इस कार्यक्रम का समापन भी एक दोहे के साथ में
0: बिल्कुल
1: हो जाए। क्योंकि किसी बहुत बड़े कवि ने एक बात कही है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो दो पंक्तियों का एक दोहा, दुमदार दोहा, जिसमें एक तीसरी पंक्ति और आती है, तो उसमें वर्तमान परिस्थितियों पर मैंने कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखा है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके लिए मैंने लिखा कि गर्मी से जब हो रहे सबके हाल बेहाल, गर्मी

0: तन भी शीतलता पाए, नीम से रोग भगाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: चलिए, तो श्रोताओं, आपके अनुभव, आपके विचार और आपकी कविताओं ने निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को सोचने पर मजबूर किया, विशेषकर युवाओं के लिए जो आपका संदेश प्रेरणा का स्रोत है। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। फिलहाल मुझे, आलोक कुमार को दीजिए अनुमति। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी एक नए व्यक्तित्व और नई प्रेरणा के साथ। नमस्कार और सुनते रहिए जिंदगी के रंग गीतों के साथ। धन्यवाद।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ जिंदगी के रंग गीतों के संग इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में आज की कलाकारा हैं हेलन। जी हाँ, हेलन जो बहुत प्रसिद्ध डांसर रही, एक्ट्रेस रही हमारी हिंदी फिल्मों की। हेलन का असली नाम है हेलन एन रिचर्डसन खान। जी हाँ, हेलन दरअसल एक क्रिश्चियन है। आइए उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत

0: श्रोताओं, हम स्वागत करते हैं महेंद्र गौतम जी का जयपुर से। गौतम भाई, जरा ये बताइए अदाकारा हेलेन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: शी वॉज अ वेरी गुड डांसर एक्चुअली। उनकी केमिस्ट्री जो आयशा भोसले के साथ में है और उनके जो गाने हैं वो आपको वैसे ही थिरकने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो वो उनके गाने अपने आप में बहुत मजेदार गाने होते थे। आप थिरकते थे उनसे, आज भी थिरक उठते हो।
0: बेहतरीन बेहतरीन गौतम भाई, थैंक यू सो मच। गौतम, आपका बहुत बहुत आभार।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

हेलन का जन्म 21 नवंबर 1938 को बर्मा में हुआ। उनके पिता की मौत वर्ल्ड वॉर सेकंड में हो गई, तभी उनकी फैमिली भारत में शिफ्ट हो गई। यहीं पर हेलन का करियर बॉलीवुड फिल्मों में शुरू हुआ। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

हेलन ने सलीम खान जी से शादी की, जिसकी वजह से वो सलमान खान जी की फैमिली से जुड़ी। यूं देखा जाए तो सलमान खान उनके सौतेले बेटे हैं, बट दोनों के बीच बेहद प्यार है। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

हेलन को सबसे पहला बढ़िया ब्रेक हावड़ा ब्रिज नाम की मूवी में मिला, जिनका बहुत ही फेमस गाना है, बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, मेरा नाम चिंग चिंग चू। आइए दोस्तों सुनते हैं यही गीत।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि हेलन को ऐश्वर्या राय और अक्षय कुमार के साथ साथ पद्म श्री अवार्ड्स के लिए भी चुना गया। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं।

है तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ।
1: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
2: मैंने जब दरवाजा खोला ना भैया, तो उसकी आंखों में आंसू थे, सांसों में तेजी थी, दिल में बेबसी थी। परली ने पहले बताया ही नहीं कि दरवाजे में उसकी उंगली फंसी थी।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज के कलाकार हैं विनोद खन्ना, जो बॉलीवुड के एक बहुत बड़े स्टार रहे हैं। आइए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर, आप मेरे साथ है ना? तो दोस्तों, सुनते हैं विनोद खन्ना साहब के फैन से कुछ उनके बारे में।
1: दोस्तों, हमारे साथ बने हुए हैं गौरव दीक्षित जी अयोध्या से। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, विनोद खन्ना जी के बारे में आप क्या कहेंगे?
2: क्या पर्सनैलिटी है भाई। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय विनोद खन्ना जी अपने चरम में हुआ करते थे, लगता था पर्सनैलिटी में तो ऐसी हो।
1: बहुत बढ़िया। विनोद खन्ना जी की किसी फिल्म का कोई गीत आप सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं को?
2: एक बड़ी फेमस फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर
1: जी,
2: अमिताभ जी और विनोद खन्ना जी की। उसमें वो प्यार जिंदगी है, बड़ा अच्छा गाना है।
1: कौन सा गीत?
2: प्यार जिंदगी है।
1: ओके ओके, वो उन्हीं के ऊपर सुनाया गया था।
2: जी जी जी जी जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं, गौरव दीक्षित जी का पसंद का। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई।
2: बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद समीर भाई।
1: थैंक यू।
0: लीजिए, पेश खिदमत है उनके ही फैन की पसंद का ये गीत।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: जज ने पूछा, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए भैया? आदमी ने कहा, सर मेरी बीवी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज छिलवाती है, बर्तन मंजवाती है। जज ने कहा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? लहसुन को थोड़ा सा गर्म कर लिया करो, आसानी से छिल जाएंगे। प्याज को फ्रिज में रख दिया करो तो आंसू नहीं आएंगे, और बर्तनों में ना 10 मिनट पहले पानी डाल दिया करो, आराम से धुल जाएगा, समझे? तो आदमी ने कहा, समझ गया सर। जज ने कहा, क्या समझे? आदमी ने कहा, सर आपकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर, आप मेरे साथ है ना?
1: दोस्तों, विनोद खन्ना साहब का जन्म एक पंजाबी हिंदू फैमिली में पेशावर में 6 अक्टूबर 1946 को हुआ था। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, विनोद खन्ना साहब को 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। वो अपने जमाने में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टार्स में से एक थे। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।
1: दोस्तों, विनोद खन्ना साहब फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर कुछ समय के लिए, 4 साल के लिए चले गए थे, थोड़ा आध्यात्म की तरफ घूम गए थे। 1982 से 1986 तक वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

1987 में उनकी वापसी हुई फिल्म इंडस्ट्री में और कई कामयाब फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। चलिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर, आप मेरे साथ है ना?
1: नहीं दोस्तों, सुनते हैं विनोद खन्ना साहब की ही फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।

बज़्म ख्याल में तेरे हुस्न की शम्मा जल गई, दर्द का चांद बुझ गया, हिजर की रात ढल गई। जब तुझे याद कर लिया सुबह महक महक उठी, जब तेरा गम जगा लिया रात मचल मचल गई। दिल से तो हर मामला करके चले थे साफ हम, उनके सामने कैसे बात बदल बदल गई। आखिरी शब के हम सफर फैज़ ना जाने क्या हुए, आखिरी शब के हम सफर फैज़ ना जाने क्या हुए। रह गई किस जगह सबा, सुबह किधर निकल गई। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की शाम फैज़ अहमद फैज़ के नाम, और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त आरती। रेडियो SN और रेडियो तांतिया भील 90.8 FM पर हमारे प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक में, और आज के हमारे खुसूसी शायर हैं फैज़ अहमद फैज़। दोस्तों, फैज़ साहब का जन्म 13 फरवरी 1911 सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था। अपने ज़माने के उर्दू और पंजाबी अदब के मशहूर शायर थे वो। उनके कलाम का दबदबा पाकिस्तान हिंदुस्तान से भी बाहर था। जहाँ तक उनकी तालीम का ताल्लुक है, तो उन्होंने

खराब आए। दोस्तों, फैज साहब की ये खूबसूरत सी नज़्म हैदराबाद जेल में रहने के दौरान लिखी गई थी। इस दौरान वे अपनी बीवी और बेटियों से दूर थे। फैज साहब अपनी बीवी एलिस से बहुत प्यार करते थे। जेल के दौरान उन दोनों में जो खतों किताबत होती थी, बाद में उनकी बीवी एलिस ने एक किताब के रूप में पब्लिश किया, जिसका नाम डियर हार्ट टू फैज इन प्रिजन 1951-1955 रखा गया। और जो खत फैज साहब ने एलिस को लिखे, उसको किताब के रूप में पब्लिश करवाया बाद में उनकी बेटी ने, जिसका टाइटल था टू लव्स। तो फिर आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, इसके बाद आए जो अजाब आए, जगजीत सिंह की खूबसूरत आवाज में ये गजल शौक फरमाए।

फिर अर्ज है, सांस थी जब तलक मैं तन्हा था, सांस थी जब तलक मैं तन्हा था, गांधा देने को बेहिसाब आए।

दोस्तों, मखदूम उर्दू के मशहूर शायर थे। हम बात फैज़ अहमद फैज़ की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मखदूम साहब से भी ताल्लुक़ है उसका। तो मखदूम साहब की गज़ल से मुतासिर होकर ही फैज़ साहब ने ये गज़ल लिखी। ये गज़ल भी उन्होंने अपने मास्को दौरे के दौरान लिखी। मखदूम साहब की वफ़ात के दौरान उनको खराजे अकीदत के तौर पर उन्होंने ये गज़ल लिखी। उन्हीं के मीटर पर, उन्हीं के जैसी गज़ल के बोल ऐसे थे जो फैज़ साहब ने लिखे। कोई खुशबू बदलती रही पैरहन, कोई खुशबू बदलती रही पैरहन, कोई तस्वीर गाती रही रात भर, फिर सबा साए शाखे गुल तले, फिर सबा यानी बहार साए शाखे गुल तले, गुलाब की टहनी की छाया तले, कोई किस्सा सुनाती रही रात भर, जो ना आया उसे कोई जंजीर दर, जो ना आया उसे कोई जंजीर दर, हर सदा पर बुलाती रही रात भर। जंजीर दर दरवाजे की सांकल को बोलते हैं दोस्तों। जो ना आया उसे कोई जंजीर दर, हर सदा पर बुलाती रही रात भर। एक उम्मीद से दिल बहलता रहा, एक तमन्ना सताती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी दिल दुखाती रही रात भर। दोस्तों, सुनिए ये ठहरी हुई छांव सी एक पुकार, छाया गांगुली की आवाज में। जयदेव साहब ने ये गमन पिक्चर के लिए कंपोज की और उन्हें इसके लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। और छाया गांगुली को भी नेशनल अवार्ड फॉर फीमेल प्लेबैक सिंगर से नवाजा गया। दोस्तों, इस गज़ल को गाने के लिए जयदेव जी ने छाया गांगुली को बाकायदा ट्रेन किया और नतीजा हम सबके सामने है। फिल्म में गाया गया कलाम मखदूम साहब का, आपकी याद आती रही रात भर, चश्मे नम गुनगुनाती रही रात भर। मुलाहिज़ा फरमाएं छाया गांगुली की आवाज़ में।

0: दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं। दोस्तों, ये गज़ल, ये खसूसी सी नज़्म खुद फैज साहब की आवाज़ में सुनिए। ये किस खलिश ने फिर इस दिल में आशियाना किया,
1: ये किस खलिश ने फिर इस दिल में आशियाना किया, फिर आज किसने सुखन हमसे गायबाना किया। गमे जहां हो रुखे यार हो कि दस्ते अदू, सुलूक जिससे किया हमने आशिकाना किया। थे खाके राह भी हम लोग कहरे तूफान भी, सहा तो क्या ना सहा और किया तो क्या न किया। खुशा की आज हर एक मुद्दई के लब पर है वो राज जिसने हमें रांदाए जमाना किया। वो हीलागर जो वफा जू भी है जफा खूबी, किया भी फैज तो किस बुत से दोस्ताना किया। ये किस खलिश ने फिर इस दिल में आशियाना किया, फिर आज किसने सुखन हमसे गायबाना किया।
0: दोस्तों, फैज साहब की पहचान एक इन्फ्लुएंशियल लेफ्ट विंग उर्दू और पंजाबी के शायर के तौर पर रही है। रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी के केस के तहत उनको 1951 से 1955 तक 4 साल तक के लिए जेल में रहना पड़ा। बकौल फैज, बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। या फिर, जो हम पे गुजरी

दोस्तों, फैज साहब की मशहूर नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा 1941 में नक्शे फरियादी जो कि उनकी पहली किताब थी उसमें पब्लिश हुई थी। इस नज़्म में शायर बताता है कि मोहब्बत के अलावा भी कई दुख हैं ज़माने में। पहले ये नज़्म रुमानी मोहब्बत से सोशल रियलिटी की ओर प्रलायन को दर्शाती है। फैज साहब कहते हैं, तवज्जो इस तरफ भी होती है, गमे हयात का झगड़ा भी मैं सुलझाता हूँ, क्या करूँ और भी दुख हैं जमाने में, मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं, वस्ल की राहत के सिवा मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। और इसको अपनी पुरकश आवाज में गाया है मैडम नूर जहान ने। दोस्तों, मैंने जब ये वीडियो देखा तो इस चीज से बहुत मुतासिर हुई कि नूर जहां मैडम ने बिना हाथ में डायरी पकड़े, कोई पुर्जा पकड़े, बिना कोई लिरिक्स देखे, मूल जबानी कैसे लफ्ज दर लफ्ज गा दिया। हम लोग आजकल बिना लिरिक्स देखे एक गाना भी याद नहीं कर पाते और गा पाते ढंग से, और उसका पूरा क्रेडिट जाता है आज के कैरोके सिस्टम को। हालांकि पुराने गाने हमें आज भी मूल जबानी याद हैं उनके नुएंसेस के साथ, लेकिन मॉडर्न टेक्निक का कुछ फायदा है तो ये कुछ नुकसान भी हुआ है कि लिरिक्स भूलते जा रहे हैं हम। बहरहाल, सुनिए ये मशहूर नज़्म मैडम नूर जहां की पुरकशिश आवाज में, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा।

तो दोस्तों, आज की इस खूबसूरत शाम को यादगार बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी की महक और मोहब्बत से ये

बजमी यादगार बन गई। अब रुखसत का वक्त आ गया, कल आपसे फिर मुलाकात होगी अपने इसी प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक में। मैं आपकी दोस्त आरती अब आपसे विदा लेती हूँ। गुनगुनाते रहिए और अल्फाज और एहसासों के साथ कुछ नए एहसास और कुछ नए अल्फाज जरूर कुछ ना कुछ जुड़ता ही रहता है। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

जय जवान जय किसान जय विज्ञान। कृषि विज्ञान केंद्र अलीराजपुर अलीराजपुर। मारा सभी किसान भाइयों का जय राम राम। मार सब किसान भाइयों शामिल अपनी जी प्राकृतिक खेती छे इनी खेती मा फसल उगाड़ी बनाने वाटे जो अपनो साधन काम मा ले दे जो घर ही उपयोग कर मंडी या बाजार से घुनी ले जो

गाँव नो पैसा गाँव मा ने शहर नो पैसा गाँव मा मारा किसान भाइयो प्राकृतिक खेती मा बीज नो टीका लगाने वाटे ने जाड़ा मोटा रान नो धान वाटे जीव ने कीड़ा लिए हमरी देसी गाय नो गोबर ने मूत नो उपयोग करें भी अपनी धरती मा नाना मोटा जीव लिए बीजा मृत जी मृत जो सब लोग उपयोग करें खेती कर हमारा सभी भाइयों का जय धन्यवाद।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अर्जे मनीष कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और तैयारी कर रहे होंगे आगामी फसल किस तरीके से करें। और खेतों की तैयारी के साथ साथ हमारे किसान साथी अब तो समझ ही गए होंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से यानी खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक वो छोटी छोटी बात को हम लेकर आते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहती है। खास तौर पर देखा जा रहा है कि पथरीला इलाका है और झाबुआ जिले को देखा जाए तो किसान साथियों के पास सीमित संसाधन, सीमित जगह होने के कारण किसान साथी अच्छी तरीके से खेती नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, यदि आप वैज्ञानिक विधि से या फिर आपको लगता है कि हमें छोटे ही रकबे में अच्छी फसलों को करना है तो आप संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी या फिर वैज्ञानिक की सलाह लेकर अपने खेतों को अच्छा हरा भरा बना सकते हैं और साथ में अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम उन छोटी छोटी बातों को लेकर आते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होती है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम बातें खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम नीम की खेती, चूंकि नीम की खेती भारतीय संस्कृति में नीम को एक विशेष महत्व मिलता है और नीम को यहाँ बहुत सी मान्यताओं के साथ जोड़ा भी गया है। नीम की गुणवाणी औषधि का दर्जा भी दिया गया है और नीम की खेती भी इतनी लाभकारी भी साबित होती है जिसमें मौजूद औषधीय गुण इतने गुणकारी और मूल्यवान हैं जिनकी इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। भारत में कई स्थानों पर इसे पूजा भी जाता है और नीम का उपयोग दवाइयों के तौर पर किया जाता है। नीम से निर्मित तेल और निवोलियों से एकत्रित करके इसे बाजार में अच्छे भाव में बेचा जाता है। यह मैली ऐसी कुल का पौधा है, इसको मुख्य तह नाम दिया जाना जाता है। इसमें नीम पेड़, मुर्गासा पेड़, भारतीय बकाहन, सफ़ेद देवदार, स्वर्ण पेड़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथियों, नीम के होने वाले फायदे के बारे में भी थोड़ा आपको बता देना चाहते हैं कि घाव पर असरदार भी होता है नीम का पौधा, क्योंकि नीम में उपस्थित एंटीबायोटिक गुण जो रहते हैं अत्यंत लाभकारी साबित होते हैं। इसके पत्तों को पीसकर घाव पर लगाकर घाव को भराया जाता है। नीम की दातुन भी, क्योंकि आसपास नीम की दातुन नहीं मिलती है, शहरों में खासतौर पर ये नहीं मिलती है और शहर के लोग खास तौर पर इसको तलाशते हैं कि नीम की दातुन कहाँ मिले। और कोविड काल में अगर देखा जाए तो इसका तो जवाब ही नहीं है। वास्तव में नीम की निमोली और नीम की दातुन, नीम की कोंप को लोग देख रहे थे, कहाँ पर नीम का पौधा है वहाँ पर जाकर ताजी ताजी हवा ले रहे थे, नीम की कोंप खा रहे थे, जिससे हमारे खून भी साफ होता है। और दातुन की अगर बात है, रोजाना नीम का दातुन करने से दांतों में मजबूती बनी रहती है और तो मैं किसी प्रकार का रोग भी नहीं लगता है। साथ में बालों के लिए भी नीम का इस्तेमाल किया जाता है। नीम के पत्तों को पीसकर यदि बालों में लगाया जाता है तो बहुत लाभकारी साबित होता है। नीम का काढ़ा, आपको पता ही होगा कि नीम के पत्तों को उबालकर यदि काढ़ा बनाकर हम रोजाना एक गिलास पिया जाए तो उसके शरीर में अत्यंत लाभकारी होता है। नीम के पानी से स्नान करना, नीम के पत्तों को मिलाकर यदि पानी में डालकर स्नान किया जाए तो इसके शरीर साफ होता है और बहुत से फायदे भी हमें मिलते हैं। खासतौर में मलेरिया में असरदार होता है। नीम मलेरिया में फैलाने वाले मच्छरों को दूर रखने में अत्यंत सहायक है। जिस वातावरण में नीम के पेड़ रहते हैं वहां पर मलेरिया नहीं फैलता है। नीम के पत्तों को जलाकर रात को धुआं करके मच्छर नष्ट हो जाते हैं और विषम ज्वर, जिसे मलेरिया कहा जाता है, उससे भी बचा जा सकता है। बिच्छू को काटने में असरदार होता है, क्योंकि बिच्छू को काटने पर नीम के पत्तों को मसल कर काटे गए स्थान पर लगाकर यदि लगाते हैं तो जलन नहीं होती है और जहर का भी असर कम होता है। उपयुक्त जलवायु के लिए, क्योंकि नीम की खेती करने के लिए आपको तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वर्षा 400 से 1200 मिलीमीटर होनी चाहिए। इसको उगाने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसको आप सभी प्रकार की मिट्टी में कैसे भी
और सभी प्रकार की भूमि जैसे शुष्क पथरीली इलाका हो, रेतीला इलाका हो, खासतौर पर अगर देखा जाए झाबुआ जिले को देखा जाए तो पथरीला इलाका है, तो यहाँ पर आसान तरीके से इसको उगाया जा सकता है। गहरी चिकनी मिट्टी हो वहां पर भी उगाया जा सकता है, भूमि में आसानी से इसे उगाया जा सकता है। आरंभिक अवस्था में नीम के पौधों को पाले का खतरा बना रहता है, अतः वृक्षारोपण के बाद एक वर्ष तक पाले से बचाना आवश्यक होता है। तत्पश्चात पाला सहन कर सकने में यह सक्षम होकर तैयार होता है। कैसे तैयार करें? वैसे तो नीम सभी तरह की मिट्टी में उगाया जाता है, फिर भी खेत को अनेकों बार जोतकर इसमें कंकड़ पत्थर अलग करके इसको खेती लायक बनाया जाता है। और बीज का उपयोग कैसे करें? बीजों को खरीद करके समय आप

आपको इतनी गुणवत्ता का विशेष ध्यान देना होगा जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या ना आए। आप इसको किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त बीज भंडार केंद्र से खरीद सकते हैं। बीज के अंडे जैसे सफेद और दीर्घवृत्तीय होते हैं। बुवाई का सही समय जो रहता है, नीम की बुवाई का समय जो रहता है, पनीरी लगाना अवश्य याद रखने के लाइम रखना जरूरी रहता है, और नीम का कलम दार को आसानी से लगाया जाता है। 12 से 13 महीने पुरानी नर्सरी के पौधों के कलम को तैयार किया जाता है। सीधी बुवाई आसान होती है, इसे छिद्र रोपण छिटका विधि कतारों की बुवाई द्वारा लगाया जाता है, और यह खेतों पर निर्भर करता है कि आपके खेत कैसे हैं। तो ये सारी बातें हैं, और अधिक बात के लिए आज हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, तो उसमें हम जानते हैं कि किस तरीके से हम अपने नीम की खेती कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से फीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटा व्हील 90.8 FM। आप लोग रेडियो अपनी बात है।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस वीली गीत को सुना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस खास रिपोर्ट को हम सुनते हैं और जानते हैं नीम के कैसे हम खेती कर सकते हैं, नीम की खेती किस तरीके से कर सकते हैं और इसके आइए हम जानते हैं इस खास रिपोर्ट में।
1: कृषि प्रधान देश के लिए खाद आत्मा की तरह होती है और इस आत्मा की सलामती के लिए किसान हमेशा तत्परता के साथ कोशिश करता रहता है।

0: शत प्रतिशत नीम लेपित यूरिया का ही प्रयोग करेंगे, यानी जितना भी यूरिया बाजार में बिकता है जो किसान भाई हमारे प्रयोग करते हैं उसमें नीम के तेल की नीम की एक लेपन किया जाएगा, नीम की एक कोट होगी। तो वो एक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी का था, उससे प्रेरित होकर हमारे प्रबंध निदेशक डॉक्टर वी एस अवस्थी साहब ने अपनी संस्था के में निर्णय लिया कि इतना नीम का तेल आएगा कहाँ से और इतना निमोली कहाँ से पैदा होगी, इसके उत्पादन को बढ़ाना है और इसके नीम में कोई ऐसी शोध करके प्रजाति हमको लानी है जिससे नीम का तेल ज्यादा मिले, वो जल्दी बढ़े, जो भी निमोली किसान भाई एकत्रित करते हैं उनको क्रय करने की एक सुनिश्चित व्यवस्था अगर हम कर लें और सुनिश्चित व्यवस्था को क्रय करने के बाद में क्रय करके उसका जो आगे का काम है, उसके प्रोसेसिंग का काम है, विधायन का काम है, उसे उत्पाद बनाने का काम है, इसको भी अगर हम बढ़ावा दें तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने में, उत्पादन को बढ़ाने में और साथ ही साथ जितने भी रसायन मुक्त खेती के लक्ष्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार ने बनाए हैं उन सबको पूरा करने में एक बहुत बहुत ही लाभकारी कदम होगा इसके लिए।
1: इसमें पॉलीप्लाइडिंग टेक्निक से एकदम टिश्यू कल्चर के माध्यम से नीम के पेड़ को ऐसा करें कि वे 3 या 5 साल के अंदर निमोली देने लगे तो उसके कारण दो चीजें होंगी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और उसके कारण वातावरण में जो प्रदूषण है वो कम होगा और दूसरा ये निमोली जल्दी आ जाएगी तो उसको 15 रुपए किलो में हम खरीदते भी हैं और इस पे हम रिसर्च भी करा रहे हैं कि किस तरीके से नीम के और जो अच्छी चीजें हो सकती हैं जैसे बायोपेस्टिसाइड बन सकते हैं नीम से, उसमें बायोपेस्टिसाइड के माध्यम से हम किसान को ज्यादा पैसे दे सकते हैं, उसकी आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर हमने फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट को कॉन्टेक्ट किया और उनको उनके साथ संपर्क स्थापित करके हमने एक प्रोजेक्ट चलाया जिसको कि हमने टोटली फंड किया कि हमें नीम की वैरायटीज वो आप डेवलप करके दीजिए जो पॉलीप्लाइडिंग तरीके से टिश्यू कल्चर के माध्यम से जिनका विकास हो और इसमें फूल और फल जल्दी आने लगे। तो इस दिशा में हमारे देश में तकरीबन 60 से ज्यादा वैरायटीज है नीम की।
2: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अपन ने वैरायटी को जाना कि नीम की कौन कौन सी वैरायटी है और खास तौर पर नीम की खेती किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में जाना। कार्यक्रम में और बहुत सारी जानकारी है नीम से जुड़ी यानी खेती से जुड़ी, लेकिन इसको सुनने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से भील गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर

0: वैज्ञानिक डॉक्टर रमाकांत और इनकी टीम पिछले कई सालों से वरिष्ठ वन वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में नीम पर लगातार शोध कर रही है। किसानों के लिए नीम की नई किस्म FRI ने जो विकसित की है, आखिर उसमें ऐसा क्या खास है, ये वो खुद बता रहे हैं।
1: इन प्रजातियों को तेल की मात्रा, अत्यधिक तेल की मात्रा सामान्य प्रजातियों से लगभग औसत 5-8% तेल ज्यादा, और अजाडिरेक्टिन इसका एक केमिकल मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, लिमोनाइड ग्रुप का होता है, वो सामान्य प्रजातियों में 3000 के आसपास, 2500 से 3000 ppm के आसपास ही पाया जाता है औसत, और हमारी इन 6 प्रजातियों में जिसमें मिनिमम 7000 का और मैक्सिमम 10000 ppm तक का है, इसका औसत 9000 आसपास है।
0: नीम की इस नई प्रजाति की खोज जब की गई तो सबसे पहले ये ध्यान में रखा गया कि अगर इसे खेत में लगाया जाता है तो फिर उस खेत में दूसरी फसल की पैदावार संभव नहीं है, जो किसानों के हित में नहीं था। ऐसे में ये सवाल उठता है कि फिर किसान इसकी खेती कैसे करें।
2: जो गरीब किसान है, जिसके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं है, उसकी आय में बढ़ोतरी करने का है, और उसका जो खेत होता है वो छोटा खेत होता है, 1 एकड़ का, 2 एकड़ की जमीन है। अब अगर वो अपने खेत की बाउंड्री पे नीम के पेड़ अगर लगा दे और उसमें जो निमोरिया जो बनती है उसको मार्केट में बेच दे, तो उससे उसकी कमाई का एक एक्स्ट्रा साधन उसको मिल सकता है, जिससे कि उसकी आय जो खेती से जो आ रही है वो तो रहेगी, इसके अलावा ये एक एडिशनल इनकम उसके लिए बन सकती है। तो यही उद्देश्य है कि किसी भी किसान को अपनी बाउंड्री पर नीम के पेड़ लगा दे और उससे वो आय कमा सके।
0: किसान नीम की खेती कहाँ करें, या यूं कहें कि नीम के पेड़ को किसान उपजाऊ जमीन में ना लगाकर कहाँ लगाएं? इसकी सही सही जानकारी तो मिल गई, लेकिन सवाल एक और बनता है कि आखिर किसान नीम की खेती क्यों करें?
1: लीफ से लेकर के तना, फल, तेल सभी की उपयोगिता विभिन्न प्रकार की दवाओं के रूप में भी किया जाता है। दैनिक जीवन में दातुन से लेकर के कॉस्मेटिक बनाना, टॉयलेटरीज बनाना, मेडिसिन्स बनाना, ये सारी उपयोगिता इसकी जो बहुत पहले से एस्टेब्लिश है, इसमें हमारा कोई नया नहीं है, लेकिन जो ये इसके लगाने का जो पर्पज है, अदर पर्पज को आप इनके बाद देखें कि सामान्य नीम अगर आप लगाते हो तो उससे ज्यादा इसमें उत्पादन मिलेगा। आप नीम के अच्छी प्रजातियों को लगा करके ज्यादा तेल की मात्रा के आधार पर उसको मार्केटिंग कर सकते हैं। अधिक उपज के बाद बस शीघ्र ही इसमें फल आएंगे आपके साथ में। क्रॉप के साथ कल्टीवेशन का किया जा सकता है, जो लेसर उपयोगी जमीन है उस जमीन पर इसका प्लांटेशन करके लाभ कमाया जा सकता है।
3: नीम एक दिन इकोनॉमिक एंड वाइबल मॉडल होगा एग्रीकल्चर के लिए, और जो कि आज भी है, केवल हमको उसके गुणों को पहचानने की आवश्यकता है, उसकी कीमत को महसूस करने की आवश्यकता है और उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।
4: रेडियो डांडिया भी 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी अपन ने गुणों को किस तरीके से पहचान कर सकते हैं हमारे किसान साथी, उस पर हमारे विषय विशेषज्ञ की इस खास बातचीत को सुना कार्यक्रम में। और भी बहुत सारी बात जीत है ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने के लिए, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडा भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: कार्य तो 91, 92, 93 में ही प्रारंभ कर दिया था, लेकिन वो कार्य अनुसंधान कार्य लगातार नहीं चला, छुटपुट हुआ, आइसोलेटेड पार्ट्स में हुआ। इसके बाद में हमने 2015 में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने इफको की सहायता से, इफको के साथ मिलकर के एक अनुसंधान कार्यक्रम नीम सुधार अनुसंधान परियोजना की शुरुआत की।
1: एफआरआई ने जिस नीम की नई प्रजाति की खोज की है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और ये बाकी नीम की प्रजाति से कैसे अलग है, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं संस्था के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार। डॉक्टर अशोक भी पिछले कई सालों से इस नई प्रजाति पर शोध कर रही टीम का ही हिस्सा हैं।
2: जो हमारी नई प्रजाति हमने जो डेवलप की है वो 2 से 3 साल में फ्लावरिंग करना चालू करती है। दूसरा इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, नीम में करीब जो आम नीम है उसमें 25 से 30% के आसपास ऑयल मिलता है, लेकिन जो हमारी प्रजातियां हैं इनमें करीब करीब 38 से लेके और 41% तक जो है नीम ऑयल पाया जाता है। और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो आस्पेक्ट है, इसमें एक अजैक्टिव कंटेंट होता है। ये कंटेंट नीम में, आम नीम में करीब 2500 से 3000 ppm के आसपास होता है, जबकि जो ये हमारी उन्नत जो किस्में हैं इनमें 8000 से लेकर के और 10000 के आसपास तक ये वेरी करता है। सो ये तीन जो पैरामीटर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं और इन्हीं के बेस पे हम लोगों ने ये वैरायटी जो है डेवलप की है।
1: डॉक्टर अशोक ने नई प्रजाति के बारे में तो बताया, लेकिन किसानों को ये जानना भी जरूरी है कि अगर किसान इसकी खेती करें तो उसे क्या क्या करने की जरूरत पड़ेगी, नीम की खेती में किसानों को कितना खर्च आएगा, अगले साल की शुरुआत से किसानों के लिए ये बाजार में उपलब्ध होगा।
2: मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी किसी इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है। उनको अच्छी किस्म के पौधे अभी तो ये हमने निजात किए हैं, धीरे धीरे नर्सरीज में जाएंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इन पौधों को खरीद के सिर्फ लगाना है और इस तरह से लगाना है ताकि जो उनकी जो एक एक एक तरह से जमीन के किनारे पे है या फिर बैकयार्ड में उसमें लगाना है, ताकि कुछ नीम के पेड़ अगर वहां रहेंगे तो वो 2 से 3 साल बाद में फिर वो प्रोडक्शन करना चालू करेंगे, उनमें बीज का उत्पादन होगा जिसको सेल करके एक अच्छी आमदनी उसमें मिल सकती है। और मैं नहीं समझता हूं कि इसमें किसान को किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी।
1: नीम की इस प्रजाति को खोजने में कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। कई सालों से लगातार इस पर काम कर रहे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि देश के कई हिस्सों में इसको लेकर शोध किए गए, तब जाकर उनकी टीम इस प्रजाति को खोज पाई।
2: ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, पूरे देश से अच्छा जर्मप्लाज्म इकट्ठा करना, उस जर्मप्लाज्म को मेंटेन करना, और सबसे बड़ा जो इसमें चैलेंज है, मैं इसको बिल्कुल स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा कि नीम के बीज को आप केवल 15 से 20 दिन ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बाद में उसका जो जो जर्मिनेशन का पावर है वो खत्म हो जाता है, वायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इन 15 दिन में पूरे बीज को लाना, उसको रिसर्च स्टेशन में इकट्ठा करना, उसके बाद उसकी बुआई करना, उसको मेंटेन करना और आगे बढ़ाना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा काम था। इसके बाद जो इस प्रोसेस में है कि हमको अलग अलग रीजन्स में इन सभी जो जो हमने जर्मप्लाज्म इकट्ठा किया है उसको इवेल्युएट करना होता है, उसमें ये देखना होता है कि जो आनुवंशिक जो इसके गुण है और जिस पर्यावरण में जिस वातावरण में ये उग रहा है उसमें आपस में इनका किस तरह का इंटरेक्शन है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
1: नीम की इस नई प्रजाति की खोज में टिश्यू कल्चर का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। एफआरआई के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अजय ठाकुर बता रहे हैं कैसे टिश्यू कल्चर ने इसमें मदद की।
3: जब हमने आनुवंशिक सुधार के बारे में के बाद जब पौधे बनाए उसका परफॉर्मेंस देखा तो हमने क्या किया कि क्लोनल मेथड बोलते हैं, क्लोनल मेथड में हम किसी चीज की हूबहू कॉपी तैयार करते हैं। तो टिश्यू कल्चर में एक बहुत बड़ी सुविधा है कि बड़े पैमाने पे कम समय में हूबहू कॉपी तैयार करेंगे और जब वो पौधा बाहर निकलता है तो वो बीमारी फ्री होता है। जो भी तेल निकलने वाले पौधे होते हैं और वो इमारती मतलब लकड़ी वाले पौधे होते हैं उनमें कुछ टिश्यू कल्चर का बहुत चैलेंज होता है। पहला

0: चैलेंज ये होता है कि वुडी हम लोग बोलते हैं ना कि जो काष्ठ प्रवृत्ति के होते हैं, तो उनमें बहुत ही मैच्योर पौधे होते हैं, मतलब बूढ़ा गए हो सकते हैं, पुराने हो गए होते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि उसको थोड़ा पुनर्जीवित करना। तो हम अपने मेथड के द्वारा उसमें बहुत तरह की जो है, हम PGR बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हार्मोन होता है, जैसे हमारे ह्यूमन में भी होता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है इंसुलिन है, तो वो पूरा हमारा शर्करा जो शुगर का है उसका डिसाइड करता है। उसी तरह प्लांट के कुछ जो है हार्मोन होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन है और साइटोकाइनिन है, उसके विधि द्वारा हम उसको पुनर्जीवित करते हैं। और पुनर्जीवित करके पहले तो हम एक बीमारी फ्री पौधे का एक प्रारूप तैयार करते हैं, जिसको बोलते हैं कि पहला तो हम प्रारूप तैयार करेंगे कार्बन कॉपी से पहले। जब हमको वैसा मिल जाता है जिसमें कोई भी बीमारी नहीं होता है, तो एक शूट, एक जो उसका तना है या एक ब्रांच जो निकलता है या एक छोटा पौधा निकलता है, उससे हम कई पौधे बनाते हैं।
1: हालांकि टिश्यू कल्चर की तकनीक पर काम करने के दौरान कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, साथ ही साथ इस प्रोसेस के दौरान कई बार निराशा भी हाथ लगी।
0: कई तरह के चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो पहले तो हम बताया कि एक जो हम कहते हैं कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो पिछला रिपोर्ट को देखते हैं। तो हमने उन रिपोर्ट के बेसिस पे काम जब किया, तो हमने पाया कि जो जिन पौधों पे हम काम कर रहे हैं उस तरह का हमको उसमें रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि किसी ने एक हार्मोन को कहा था कि अगर एक यूनिट देंगे, तो किसी ने कहा था कि उसको 40 यूनिट देंगे। तो हमने दोनों को लगा के देखा, तो हमने देखा कि हमारे उसमें नहीं काम कर रहा है। तो हमने पहले तो अपने शोध को हमारे जो पौधे थे उसके हिसाब से विकसित किया। हमने पाया कि जो जितने लोगों ने बोला था उसका हमने 8 गुना कम किया, तब जाके हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो इससे दो फायदे हुए कि हमको एक तो केमिकल की आवश्यकता या हार्मोन की कम पड़ी, दूसरा उसमें उसके क्लोनिंग में कोई छेड़खानी नहीं होती, यानी वो अपने क्लोनल स्वरूप को मेंटेन करता है। दूसरा उसका चुनौती था कि जब हम ये पौधा लाना, कि जब भी हम लाते हैं तो 24 घंटे तक में इसको लाना जरूरी होता है। तो हम इसको बहुत ही स्पेसिफिक तरीके की सिस्टम हमने डेवलप की थी। एक हम कूल बॉक्स ले जाते थे, कूल बॉक्स में हमेशा आइस पैक के साथ हम उसको लेके वहाँ से लाते हैं, और ऐसी व्यवस्था करते हैं या तो उसको हम हवाई जहाज से, या तो हम एसी वाले कंपार्टमेंट वाले ट्रेन से, या फिर हम अगर वाहन का इस्तेमाल करते हैं, कई जगह हमको जीप ही मिलता है, तो एसी वाले वाहन से हम उसको पौधे को काटते थे, सवेरे में काट देते थे, क्योंकि सवेरे के टाइम में सबसे ज़्यादा सबसे शांत केमिकल माहौल होता है। और उसके बाद हम उसको पैक कर देते थे, और पैक करके उस कूल बॉक्स में डाल के आइस पैक के बीच में करके हम उसको अगले वहां ले आते थे। तो ये एक बहुत बड़ी इस तरह की चुनौती थी, बहुत निराशा हाथ लगी। देखिए टिश्यू कल्चर में हम दो चीज कहते हैं, एक तो क्लोन होता है और दूसरा क्लोन नहीं होता है, उसको कैलस बोलते हैं। तो शुरुआती दौर में हमको कैलस मिलता था, जब भी कैलस होता है तो उसमें क्लोनिंग नहीं होके वेरिएशन हो जाता है, उसमें मतलब चेंजेज आ जाती है, तो हमारा पर्पस ही डिफीट हो जा रहा था। तो ऐसा हमने बहुत जब किया, तब हम उसको हमने क्या किया, उसके हार्मोन को घटाना या बढ़ाना उस तरीके के कम से कम उसके 17 या 18 एक्सपेरिमेंट किए। जब 17 या 18 प्रयोग के बाद हमने पाया कि इसमें हार्मोन लेवल, हमने हर प्रजाति के लिए अलग अलग हार्मोन लेवल डेवलप किया, किसी के लिए 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से था, किसी के लिए 0.4 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से था। शुरुआती दौर में हमने 10 मिलीग्राम प्रति लीटर भी इस्तेमाल किया था। तो हमने इस पूरे प्रकरण में हमें साल लग जाता है सेट करने में।
1: FRI नीम को लेकर कई और शोध और खोज करना चाहती है, लेकिन उसके पास सबसे बड़ी चुनौती है कि उसे अपने शोध के लिए दूसरे संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है।
2: जो हमारा सेटअप है, हम लोगों के पास अपनी ट्रायल के लिए कोई जमीन नहीं है, जिसके लिए हमें या तो किसानों पे या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इश्यू आता है वो है लैंड का। इस केस में इफको, क्योंकि हम लोगों के जो है कि फंडिंग एजेंसी था, तो इफको की वजह से हम लोगों को कुछ इसमें सपोर्ट मिला है, लेकिन इन जनरल एक चुनौती यह है। और दूसरा ये है कि सीमित जो हम लोगों के पास जो वित्तीय संसाधन है वो निश्चित रूप से इसमें बाधा करते हैं। अगर वित्तीय संसाधन हमें मिलते हैं तो हम लोग और भी जो है स्पेसीज पे, उनकी वैरायटीज पे और क्लोन डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं।
1: नीम की खेती किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्व न सिर्फ मिट्टी को ताकत देते हैं बल्कि कई तरह की बीमारियों से भी बचाते हैं।
2: इसमें जो लिमोनॉइड श्रेणी के जो रासायनिक घटक होते हैं उनका जो है कीटनाशक गुण बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए इस तेल का उपयोग जो है कीटनाशक के रूप में किया जाता है। जो घटक इसके एंटी फंगल घटक खासकर जो है उनका उपयोग जो है चर्म रोग में भी किया जाता है। तो इस ऑयल, इस जो ये जो तेल है नीम का तेल जो है ये औषधीय और कीटनाशक दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो यौगिक है उसका नाम है एजाडेक्टिन। एजाडेक्टिन के भी कई श्रेणियां हैं जिसमें मूल रूप से एजाडेक्टिन ए जो है ज्यादा सक्रिय माना गया है। ए से लेके एस तक के इसके वेरिएंट जो है ज्ञात हैं। ए जो है एजाडेक्टिन ए ये जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: नीम का इस्तेमाल आयुर्वेदिक औषधियों में सदियों से होता आया है। नीम का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है।
3: नीम के औषधीय गुणों की बात करें तो स्किन के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं यानी त्वचा की जितनी बीमारियां हैं उन सभी में लगभग नीम बहुत अच्छा काम करता है। हम एलर्जी की कंडीशंस लेते हैं, यदि हम इस तरह की बॉयल्स हो जाते हैं, फुंसियां हो जाती हैं जो गर्मियों में भी हो जाती हैं और इन्फेक्टेड फुंसियां भी होती हैं, बॉयल्स बोलते हैं जिनको, या नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं जो कि हील नहीं हो पा रहे, खासतौर से डायबिटिक पेशेंट्स को, यहां तक कि नीम जैसे कि डायबिटीज में भी बहुत उपयोगी है, शुगर को कम करने में भी कारगर है। और शुगर के पेशेंट्स को अक्सर देखा गया है कि स्किन डिसऑर्डर्स बहुत होते हैं और उनको अगर कोई चोट लग जाती है, अल्सर हो जाते हैं तो वो नॉन हीलिंग वूंड्स या नॉन हीलिंग अल्सर्स कहलाते हैं, वहां पर भी नीम बहुत अच्छा काम करता है। इवन हम ऐसा भी एडवाइस करते हैं कि जो चोट आपकी ना भर रही हो उसमें नीम के पत्तों का काढ़ा बनाकर उसको वॉश करें और फिर बैंडेज या जो भी आपको चिकित्सा बताई गई है उसे करें।
4: नीम एक ऐसा वृक्ष है जिसको हम कल्प वृक्ष की संज्ञा दे सकते हैं। इस धरती के ऊपर जितनी भी तरीके की वनस्पतियों में रोग या कीड़े लगते हैं, जितने हमारे जानवरों में रोग या कीड़े लगते हैं, जितने मनुष्यों में, मानव जाति में जितने रोग और कीड़े हैं, उन सबको मारने का, उन सबको नष्ट करने का, उन सबका समन करने का एक कोई उपाय है, वो नीम है।
1: नीम की ये नई प्रजाति किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार और देश की अग्रणी संस्थाएं जिस तरह से नीम की खेती और उसके अलग अलग उत्पाद को प्रोत्साहित कर रही हैं, उससे आने वाले दिनों में नीम किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकेगा।
5: रेडियो टांटा भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना हमने, जाना किस तरीके से नीम के खास गुण होते हैं और किस तरीके से औषधि पौधे के रूप में इसको देखा जाता है और किस तरीके से इसको बाजार में बेचा जाता है और इसमें कितने सारे खास गुण रहते हैं इसके बारे में जानकारी को जाना। हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अब समझ गए होंगे कि हम अपनी एक नई खेती को कर सकते हैं, नई चीज है, नए खेती है, इसको किस तरीके से कर अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया था कि इस तरीके की खेती हमारे किसान साथियों को औषधि खेती करना चाहिए जिससे आने वाले समय में हमारे किसान साथियों की आय में बढ़ोतरी हो। इसी के साथ साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से बीली गीत को। नमस्कार।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार किसान भाइयों, रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का, सभी किसान पंच भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथी कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हमारे किसान साथी इस कार्यक्रम का इंतजार भी कर रहे हैं। और तो इंतजार की घड़ी अब खत्म है क्योंकि रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम जो झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है वो लेकर आ गया है का मन पसंदीदार कार्यक्रम खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और खास तौर पर हम छोटे छोटे बिंदुओं पर बातचीत करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम स्टार्टअप पर जरूर बात करेंगे क्योंकि स्टार्टअप हमारे देश की एक महत्वाकांक्षा योजनाओं में से एक है कि स्टार्टअप में किस तरीके से हमारे किसान साथी एक आधुनिक पद्धति से, एक वैज्ञानिक पद्धति से और नई नई तकनीकी से किस तरीके से खेती कर सकते हैं उस पर एक नजर डालेंगे। साथ साथ में पशुजन, जो चूंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है, गर्मियों के इस मौसम में खास तौर पर दुधारू पशु जो दूध देने वाले रहते हैं उनका ख्याल हम किस तरीके से रख सकते हैं, क्या खान पान उसका उनका होना चाहिए, उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। और साथ में हम तीसरी बात बताएंगे जो हमारे कैलेंडर रहता है, मासिक कैलेंडर, यानी इस माह में हम किस तरीके से अपने पशुओं को क्या कुछ देना चाहिए उस पर भी जिक्र करेंगे। और साथ में एक राजस्थान के उन्नतशील किसान जिन्होंने पानी, कम पानी वाली फसलें यानी गेहूं की प्रजाति लगाकर अपने खेती में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, यानी खेती में उन्होंने एक लक्ष्य उन्होंने बनाया था कि हम कम पानी वाली फसलों करेंगे और खास तौर पर उन लक्ष्य को उन्होंने पूरा किया और आज उनका नाम सभी की जुबान पर रहता है। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और साथ में आपको बता देना चाहते हैं कि कार्यक्रम खेती बाड़ी में श्रोता साथियों खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। खासतौर पर ये देखते हैं कि गर्मियों का मौसम है और इस गर्मियों के मौसम में चूंकि अभी हमारे झाबुआ जिले के हमारे साथी किसान साथी घर पर बैठे होंगे, क्या कुछ कर सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, आपको इस रिपोर्ट को हम सुनवाते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम।
2: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
3: आज के युवा स्टार्टअप्स के जरिए अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। एक तरफ इन्हें आर्थिक सहायता देकर सरकार भी इनका साथ दे रही है तो वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से स्टार्टअप्स के कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट।
4: भारत बदल रहा है, देश के युवा अब एक नई बागडोर संभालने को तैयार है जिसमें नौकरी तलाश करने की परिपाटी को छोड़ते हुए नौकरी देने पर फोकस किया जा रहा है। और इसी सोच को आगे ले जाने के लिए सरकार भी अपने अहम कदम उठा रही है जिसमें स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी की तंत्र बनाना है। स्टार्टअप देश के युवाओं के लिए एक ऐसा मौका है जिसके जरिए वो खुद का काम शुरू करते हैं, खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि स्टार्टअप सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और इंजीनियरिंग आदि सेवाओं में ही किया जा सकता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप तेजी से कारोबार के मैदान में आ रहा है। स्टार्टअप से जहां युवाओं को रोजगार मिलता है वहीं ये किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने में भी मदद करता है। इससे खेती में निवेश बढ़ता है और किसान की आय में भी बढ़ोतरी होती है।
5: हम लोग लोग एग्री स्टार्टअप्स को यहाँ पे इंक्यूबेट करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं एग्री स्टार्टअप्स के लिए, जो कि भारत सरकार की स्टार्टअप नीति के तहत एनरोल्ड है। और उन स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग स्टेजेस पर, जैसे कि यदि आपके पास अपना कोई स्टार्टअप का विचार है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप एक अपना स्टार्टअप बनाएंगे, तो उसके लिए हमारा एक प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम है जो कि एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, जहां पर आप आकर उस आइडिया को कॉन्सेप्ट नोट बनाने के लेवल तक जा सकते हैं। तो वो उस तरीके के प्रोग्राम्स भी हम रन करते हैं। देन फिर अगर आपका कॉन्सेप्ट प्रिपेयर्ड है और आप एक बेसिक लेवल पर हैं लेकिन आपको उसको फाइनल प्रोटोटाइप के लेवल तक नहीं ले जा पा रहे, तो उसके लिए अलग प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर फंडिंग्स भी एसोसिएटेड हैं। जो भी फंडिंग भी ग्रांट इन एड की तर्ज के ऊपर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तीसरे तरह के प्रोग्राम्स वो हैं जिनके अंदर आपका अगर एक प्रोटोटाइप रेडी है और आप कमर्शलाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 25 लाख तक का फंड हम प्रोवाइड करते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की आरकेवीवाई रफ्तार स्कीम के तहत हम उसके अंदर फंड्स दे रहे हैं। उसके अलावा महिला उद्यमियों के लिए भी हम वुमेन क्वेक करके एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके अंदर हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, उनको सशक्त बना रहे हैं कि वो कैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को आगे ले जा सके। तो कुछ प्रोग्राम्स और हैं जो हम किसान भाइयों के लिए करना चाहते हैं, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हम अपने स्टार्टअप्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जहां पे एफपीओस को जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को हमारे स्टार्टअप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके की पहलों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
4: कृषि क्षेत्र में आ रही नई नई तकनीकें भी एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रही हैं। पूसा मेले में ऐसे ही कई इनोवेटिव आइडियाज दिखाई दिए जो कृषि को और बेहतर बना सकते हैं।
6: हमारे स्टार्टअप का नाम रैवटेक लैब्स है और हम क्वालिटी एनालिसिस सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये एप्पल को स्कैन करने की मशीन बनाई है हमने। तो इसमें नॉन इन्वेसिवली बिना कट करे, बिना जूस करे, हम आपको बता सकते हैं कि इसकी मिठास कितनी है, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, कि ये कितने दिनों बाद सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और ये इसकी मॉइस्चर कंटेंट कितनी है। सिमिलर प्रोडक्ट्स हमने बनाई है, एक ग्रेन एनालाइजर भी बनाई है, जिसमें गेहूं जैसे ग्रेन्स की आप प्रोटीन कंटेंट, ग्लूटेन कंटेंट नॉन इन्वेसिवली चेक करके देख सकते हैं।
4: हमने पूसा मेले में लगे एक स्टॉल में मिनी ड्रोन देखा। ये ड्रोन खेतों की रखवाली करने और सूचनाएं देने में सक्षम है। महज 8 से 10 हजार कीमत का ये ड्रोन किसानों की एक बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है।
7: ये हमारा ड्रोन है, ये ड्रोन इनोवेशन के साथ हमने एसोसिएट करके ये चीज बनाया है। तो ये बेसिकली काम ये करता है, ये आपका सर्वेलेंस का काम करता है। जैसे आप इसको, ये आपके खेत में जाता है और आपके खेत में कोई भी मोशन होता है, कोई भी हलचल होती है, तो ये उस चीज को डिटेक्ट करता है और आपके फोन में इसकी फोटोज भेजता है। और इसमें स्पीकर भी लगा है, तो कोई एनिमल वगैरह आता है, जैसे अगर एक गाय आई है तो वो उसमें एनिमल किसी लायन का साउंड करेगा, तो लायन का साउंड करेगा तो उससे क्या होगा कि मतलब जो गाय है वो वहां से भाग जाएगी, वहां से हट जाएगी। तो ये आपको कुछ 10,000 का पड़ेगा एंड ये सब अलग अलग प्राइजेस है। ये आपको 6,500 का पड़ेगा एंड बाकी सब ये 4,500 का आपको पड़ेगा। एंड या दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट एंड किसानों को कहाँ मिलेगा, तो ये हमारा वेबसाइट है www.fifarm.com, तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं। वहां पर आप लाइक साइट में जाके आप देख सकते हैं, काफी सारे सामान है हमारे वहां पे, तो आप वहां पे जाके गो आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं।
4: अब पढ़े लिखे युवा नए नए आइडियाज के साथ कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स कर रहे हैं। कृषि उद्यमिता में नए आयामों को बढ़ावा देने और युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से भी समय समय पर कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनके तहत युवाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी दी जाती है। युवा इनका लाभ लेकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
1: रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस खास रिपोर्ट को सुना। कार्यक्रम में बहुत सारी बातचीत, बहुत सारे सेगमेंट हैं जो आपको बताने हैं। सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम, अपना रेडियो अपनी बातें।
4: गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं, अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने भी लगा है, जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। जब बात देश के उन हिस्सों की हो जहां अभी से तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है, ऐसे इलाकों में जरूरी हो जाता है कि पशु की हर तरह से समुचित सुरक्षा की जाए।
8: क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से नुकसान की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए पशुपालकों और किसानों को चाहिए कि वो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। कौन से हैं वो पहलू, इस बारे में पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज से चर्चा की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने।
9: किसान भाइयों बहनों, बदलते मौसम में हमें अपने दुधारू पशुओं का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, जैसा कि आप जानते हैं, गर्मियों का मौसम आ गया है और आगे तापमान में वृद्धि होने वाली है, तो ऐसे में हमें हमारे दुधारू पशुओं का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए?
10: देखिए, अभी सर्दी का मौसम गया है और अब गर्मी पूरे उत्तर भारत में शुरू हो गई है, बल्कि पूरे देश में ही गर्मी शुरू हो चुकी है। तो अब जिस तरीके से सर्दी में हमें कुछ विशेष प्रकार के ध्यान रखने होते हैं इस अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरीके से इस गर्मी के मौसम में भी हमें कुछ बदलाव करने होंगे। जिस तरह हम खुद भी जाड़े के मौसम में सूट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है तो हम अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो इसी तरीके से पशुओं के लिए भी कुछ हमें बदलाव करने पड़ते हैं। तो अगर इसमें बात की जाए सबसे पहले, तो जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला में वातावरण कूल होना चाहिए, ठंडा वातावरण होना चाहिए, क्योंकि इस समय अब गर्मी बहुत अधिक हो जाएगी, तो बहुत अधिक गर्मी के कारण से पशुओं में हीट स्ट्रोक होने की संभावना बनी रहती है। तो पशुओं में हीट स्ट्रोक ना हो, उसको कैसे बचाना है, जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला के ऊपर आप कुछ इस तरीके की चीजें डाल दें, कुछ उसके ऊपर बोरे फट्टे इत्यादि बिछा दें कि जिससे उसकी जो छत है वो अधिक गर्म ना हो।
11: अगर आपकी पशुशाला में बिजली की व्यवस्था है, पंखा चल सकता है, तो कोशिश करें कि आप वहां पर पंखा भी चला दें, जिससे कि गर्मी को, तापमान को कम किया जा सके। दूसरा क्या है, जो पशुशाला के खिड़की दरवाजे हैं उनको खोल के रखें, जिससे कि हवा का पूरा आदान प्रदान होता रहे और बाहर से फ्रेश हवा पशुशाला के अंदर आए और अंदर की गर्म हवा जो है वो बाहर निकलती रहे। और आपने अगर बोरी फट्टे कुछ टांग के रखे होंगे खिड़कियों के ऊपर, तो उनको भी हटा दें। तीसरा क्या है, जो दिन का बहुत अधिक गर्म समय होता है, तो उस समय पे पशुओं को बाहर धूप में ना निकालें, या तो सुबह के मौसम में जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है उस समय, या शाम के मौसम में ही बाहर निकालें, धूप में ना निकालें, अधिकतर पशुओं को अपने छाई में रखें।
8: इसके अलावा गर्मी के दिनों में पानी की उपलब्धता बनाए रखें, जिससे पशु के शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे और वो बीमारी के शिकार ना हो पाए। साथ ही आहार में क्या तब्दीलियां करें, आइए जानते हैं।
10: गर्मी के मौसम में हम उन्हें थोड़ा सा इस तरीके का आहार देते हैं कि जो ज्यादा ऊर्जा पैदा करने वाला आहार हो, जिससे शरीर को थोड़ी गर्मी प्राप्त हो और जिससे कि वो ठंड के साथ में पशु लड़ सके। तो अब गर्मी के मौसम में उसको उतनी ज्यादा जो है उस तरीके के गर्मी पैदा करने वाले अनाज की आवश्यकता नहीं है, या उतनी ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप उसको हरा चारा दें, उसके साथ में थोड़ा भूसा खिलाएं, और जो दलिया या खली देते हैं उसकी मात्रा आप थोड़ी कम कर सकते हैं अगर बहुत अधिक गर्मी है तो। और तीसरा बिंदु है इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, वो पानी का। जो पानी है वो गर्म पानी पशु को ना पिलाएं, क्योंकि एक तो मौसम का वातावरण जो है पहले ही गर्म है, ऊपर से आप उसको गर्म पानी पिलाएंगे तो वो और अपने आप में समस्या बढ़ाएगा। तो कोशिश करें कि पशु को ताजा ठंडा पानी ही हमेशा पिलाएं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि पशु आपका हीट स्ट्रोक में आ रहा है, गर्मी की वजह से वो चारा उसने खाना थोड़ा कम कर दिया है।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।
1: नमस्कार किसान भाइयों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का, सभी किसान पंच भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथी, कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, और हमारे किसान साथी इस कार्यक्रम का इंतजार भी कर रहे हैं। और तो इंतजार की घड़ी अब खत्म है, क्योंकि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM जो झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, वो लेकर आ गया है आपका मन पसंदीदार कार्यक्रम खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं, और खास तौर पर हम छोटे छोटे बिंदुओं पर बातचीत करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम स्टार्टअप पर जरूर बात करेंगे, क्योंकि स्टार्टअप हमारे देश की एक महत्वाकांक्षा योजनाओं में से एक है कि स्टार्टअप में किस तरीके से हमारे किसान साथी एक आधुनिक पद्धति से एक वैज्ञानिक पद्धति से और नई नई तकनीकी से किस तरीके से खेती कर सकते हैं उस पर एक नजर डालेंगे। साथ साथ में पशुजन, जो चूंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है, गर्मियों के इस मौसम में खासतौर पर दुधारू पशु जो दूध देने वाले रहते हैं उनका ख्याल हम किस तरीके से रख सकते हैं, क्या खान पान उसका उनका होना चाहिए, उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। और साथ में हम तीसरी बात बताएंगे, जो हमारे कैलेंडर रहता है मासिक कैलेंडर, यानी इस माह में हम किस तरीके से अपने पशुओं को क्या कुछ देना चाहिए उस पर भी जिक्र करेंगे। और साथ में एक राजस्थान के उन्नतशील किसान जिन्होंने पानी कम पानी वाली फसलें यानी गेहूं की प्रजाति लगाकर अपने खेती में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, यानी खेती में उन्होंने एक लक्ष्य उन्होंने बनाया था कि हम कम पानी वाली फसलों करेंगे और खास तौर पर उन लक्ष्य को उन्होंने पूरा किया और आज उनका नाम सभी की जुबान पर रहता है। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और साथ में आपको बता देना चाहते हैं कि कार्यक्रम खेती बाड़ी में श्रोता साथियों खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। खासतौर पर ये देखते हैं कि गर्मियों का मौसम है और इस गर्मियों के मौसम में चूंकि अभी हमारे झाबुआ जिले के हमारे साथी किसान साथी घर पर बैठे होंगे, क्या कुछ कर सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, आपको इस रिपोर्ट को हम सुनवाते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 एफएम।
2: आप रेडियो आपड़ी बातें।
3: आज के युवा स्टार्टअप्स के जरिए अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। एक तरफ इन्हें आर्थिक सहायता देकर सरकार भी इनका साथ दे रही है, तो वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से स्टार्टअप्स के कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट।
8: भारत बदल रहा है, देश के युवा अब एक नई बागडोर संभालने को तैयार है, जिसमें नौकरी तलाश करने की परिपाटी को छोड़ते हुए नौकरी देने पर फोकस किया जा रहा है। और इसी सोच को आगे ले जाने के लिए सरकार भी अपने अहम कदम उठा रही है, जिसमें स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी के तंत्र बनाना है। स्टार्टअप देश के युवाओं के लिए एक ऐसा मौका है जिसके जरिए वो खुद का काम शुरू करते हैं, खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि स्टार्टअप सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और इंजीनियरिंग आदि सेवाओं में ही किया जा सकता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप तेजी से कारोबार के मैदान में आ रहा है। स्टार्टअप से जहां युवाओं को रोजगार मिलता है, वहीं ये किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने में भी मदद करता है। इससे खेती में निवेश बढ़ता है और किसान की आय में भी बढ़ोतरी होती है।
5: हम लोग एग्री स्टार्टअप्स को यहाँ पे इंक्यूबेट करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं एग्री स्टार्टअप्स के लिए, जो कि भारत सरकार की स्टार्टअप नीति के तहत एनरोल्ड है। और उन स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग स्टेजेस पर, जैसे कि यदि आपके पास अपना कोई स्टार्टअप का विचार है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप एक अपना स्टार्टअप बनाएंगे, तो उसके लिए हमारा एक प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम है, जो कि एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, जहां पर आप आकर उस आइडिया को कॉन्सेप्ट नोट बनाने के लेवल तक जा सकते हैं। तो वो उस तरीके के प्रोग्राम्स भी हम रन करते हैं। देन फिर अगर आपका कॉन्सेप्ट प्रिपेयर्ड है और आप एक बेसिक लेवल पर हैं, लेकिन आपको उसको फाइनल प्रोटोटाइप के लेवल तक नहीं ले जा पा रहे, तो उसके लिए अलग प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर फंडिंग्स भी एसोसिएटेड हैं। जो भी फंडिंग भी ग्रांट इन एड की तर्ज के ऊपर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तीसरे तरह के प्रोग्राम्स वो हैं जिनके अंदर आपका अगर एक प्रोटोटाइप रेडी है और आप कमर्शलाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 25 लाख तक का फंड हम प्रोवाइड करते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की आरकेवीवाई रफ्तार स्कीम के तहत हम उसके अंदर फंड्स दे रहे हैं। उसके अलावा महिला उद्यमियों के लिए भी हम वुमेन क्वेक करके एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके अंदर हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, उनको सशक्त बना रहे हैं कि वो कैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को आगे ले जा सके। तो कुछ प्रोग्राम्स और हैं जो हम किसान भाइयों के लिए करना चाहते हैं, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हम अपने स्टार्टअप्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जहां पे एफपीओस को जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को हमारे स्टार्टअप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके की पहलों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
8: कृषि क्षेत्र में आ रही नई नई तकनीकें भी एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रही हैं। पूसा मेले में ऐसे ही कई इनोवेटिव आइडियाज दिखाई दिए जो कृषि को और बेहतर बना सकते हैं।
6: हमारे स्टार्टअप का नाम रैवटेक लैब्स है और हम क्वालिटी एनालिसिस सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये एप्पल को स्कैन करने की मशीन बनाई है हमने। तो इसमें नॉन इन्वेसिवली बिना कट करे, बिना जूस करे हम आपको बता सकते हैं कि इसकी मिठास कितनी है, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, कि ये कितने दिनों बाद सड़ना स्टार्ट हो जाएगा और ये इसकी मॉइस्चर कंटेंट कितनी है। सिमिलर प्रोडक्ट्स हमने बनाई है, एक ग्रीन एनालाइजर भी बनाई है जिसमें गेहूं जैसे ग्रेन्स की आप प्रोटीन कंटेंट, ग्लूटेन कंटेंट नॉन इन्वेसिवली चेक करके देख सकते हैं।
8: हमने पूसा मेले में लगे एक स्टॉल में मिनी ड्रोन देखा। ये ड्रोन खेतों की रखवाली करने और सूचनाएं देने में सक्षम है। महज 8 से 10 हजार कीमत का ये ड्रोन किसानों की एक बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है।
7: ये हमारा ड्रोन है, ये ड्रोन इनोवेशन के साथ हमने एसोसिएट करके ये चीज बनाया है। तो ये बेसिकली काम ये करता है, ये आपका सर्वेलेंस का काम करता है। जैसे आप इसको, ये आपके खेत में जाता है और आपके खेत में कोई भी मोशन होता है, कोई भी हलचल होती है, तो ये उस चीज को डिटेक्ट करता है और आपके फोन में इसकी फोटोज भेजता है। और इसमें स्पीकर भी लगा है, तो कोई एनिमल वगैरह आता है, जैसे अगर एक गाय आई है तो वो उसमें एनिमल किसी लायन का साउंड करेगा, तो लायन का साउंड करेगा तो उससे क्या होगा कि मतलब जो गाय है वो वहां से भाग जाएगी, वहां से हट जाएगी। तो ये आपको कुछ 10,000 का पड़ेगा एंड ये सब अलग अलग प्राइजेस है। ये आपको 6,500 का पड़ेगा एंड बाकी सब ये 4,500 का आपको पड़ेगा। एंड या दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट एंड किसानों को कहाँ मिलेगा, तो ये हमारा वेबसाइट है www.fifarm.com, तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं। वहां पर आप लाइक साइट में जाके आप देख सकते हैं, काफी सारे सामान है हमारे वहां पे, तो आप वहां पे जाके गो आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं।
8: अब पढ़े लिखे युवा नए नए आइडियाज के साथ कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स कर रहे हैं। कृषि उद्यमिता में नए आयामों को बढ़ावा देने और युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से भी समय समय पर कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनके तहत युवाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी दी जाती है। युवा इनका लाभ लेकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
1: रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस खास रिपोर्ट को सुना, कार्यक्रम में बहुत सारी बातचीत, बहुत सारे सेगमेंट हैं जो आपको बताने हैं। सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम, अपना रेडियो अपनी बातें।
8: गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं, अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने भी लगा है जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। जब बात देश के उन हिस्सों की हो जहां अभी से तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है, ऐसे इलाकों में जरूरी हो जाता है कि पशु की हर तरह से समुचित सुरक्षा की जाए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से नुकसान की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए पशुपालकों और किसानों को चाहिए कि वो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। कौन से हैं वो पहलू, इस बारे में पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज से चर्चा की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने।
9: किसान भाइयों बहनों, बदलते मौसम में हमें अपने दुधारू पशुओं का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, जैसा कि आप जानते हैं गर्मियों का मौसम आ गया है और आगे तापमान में वृद्धि होने वाली है, तो ऐसे में हमें हमारे दुधारू पशुओं का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए?
10: देखिए, अभी सर्दी का मौसम गया है और अब गर्मी पूरे उत्तर भारत में शुरू हो गई है, बल्कि पूरे देश में ही गर्मी शुरू हो चुकी है। तो अब जिस तरीके से सर्दी में हमें कुछ विशेष प्रकार के ध्यान रखने होते हैं इस अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरीके से इस गर्मी के मौसम में भी हमें कुछ बदलाव करने होंगे। जिस तरह हम खुद भी जाड़े के मौसम में सूट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है तो हम अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो इसी तरीके से पशुओं के लिए भी कुछ हमें बदलाव करने पड़ते हैं। तो अगर इसमें बात की जाए सबसे पहले, तो जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला में वातावरण कूल होना चाहिए, ठंडा वातावरण होना चाहिए, क्योंकि इस समय अब गर्मी बहुत अधिक हो जाएगी तो बहुत अधिक गर्मी के कारण से पशुओं में हीट स्ट्रोक होने की संभावना बनी रहती है। तो पशुओं में हीट स्ट्रोक ना हो उसको कैसे बचाना है, जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला के ऊपर आप कुछ इस तरीके की चीजें डाल दें, कुछ उसके ऊपर बोरे फट्टे इत्यादि बिछा दें कि जिससे उसकी जो छत है वो अधिक गर्म ना हो। अगर आपकी पशुशाला में बिजली की व्यवस्था है, पंखा चल सकता है, तो कोशिश करें कि आप वहां पर पंखा भी चला दें, जिससे कि गर्मी को, तापमान को कम किया जा सके। दूसरा क्या है, जो पशुशाला के खिड़की दरवाजे हैं उनको खोल के रखें, जिससे कि हवा का पूरा आदान प्रदान होता रहे और बाहर से फ्रेश हवा पशुशाला के अंदर आए और अंदर की गर्म हवा जो है वो बाहर निकलती रहे। और आपने अगर बोरी फट्टे कुछ टांग के रखे होंगे खिड़कियों के ऊपर तो उनको भी हटा दें। तीसरा क्या है, जो दिन का बहुत अधिक गर्म समय होता है तो उस समय पे पशुओं को बाहर धूप में ना निकालें, या तो सुबह के मौसम में जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है उस समय, या शाम के मौसम में ही बाहर निकालें, धूप में ना निकालें, अधिकतर पशुओं को अपने छाई में रखें।
8: इसके अलावा गर्मी के दिनों में पानी की उपलब्धता बनाए रखें, जिससे पशु के शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे और वो बीमारी के शिकार ना हो पाए। साथ ही आहार में क्या तब्दीलियां करें, आइए जानते हैं।
10: गर्मी के मौसम में हम उन्हें थोड़ा सा इस तरीके का आहार देते हैं कि जो ज्यादा ऊर्जा पैदा करने वाला आहार हो, जिससे शरीर को थोड़ी गर्मी प्राप्त हो और जिससे कि वो ठंड के साथ में पशु लड़ सके। तो अब गर्मी के मौसम में उसको उतनी ज्यादा जो है उस तरीके के गर्मी पैदा करने वाले अनाज की आवश्यकता नहीं है, या उतनी ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप उसको हरा चारा दें, उसके साथ में थोड़ा भूसा खिलाएं, और जो दलिया या खली देते हैं उसकी मात्रा आप थोड़ी कम कर सकते हैं अगर बहुत अधिक गर्मी है तो। और तीसरा बिंदु है इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, वो पानी का। जो पानी है वो गर्म पानी पशु को ना पिलाएं, क्योंकि एक तो मौसम का वातावरण जो है पहले ही गर्म है, ऊपर से आप उसको गर्म पानी पिलाएंगे तो वो और अपने आप में समस्या बढ़ाएगा। तो कोशिश करें कि पशु को ताजा ठंडा पानी ही हमेशा पिलाएं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि पशु आपका हीट स्ट्रोक में आ रहा है, गर्मी की वजह से वो चारा उसने खाना थोड़ा कम कर दिया है, तो पशु को दिन में एक दो बार ठंडे पानी से नहलाएं, तो उससे भी पशु की जो हीट स्ट्रोक है वो थोड़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा आप जैसे बरसात का मौसम फिर आगे शुरू हो जाएगा तो उसमें कई तरीके की बीमारियां हैं, जैसे हेमरेजिक सेप्टिसीमिया है, ब्लैक क्वार्टर है, एंथ्रेक्स है, ये सारी बीमारियां भी होने का खतरा रहता है। तो इसलिए आवश्यक है इस मौसम में आप अपने पशुओं को नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलकर जो टीके लगवाए जाते हैं बीमारियों के, वो टीके भी लगवा लें, क्योंकि इस मौसम में ह्यूमिडिटी आगे बहुत अधिक हो जाती है, टेम्परेचर होता है, तो सभी प्रकार के बीमारियों के कीटाणुओं को पनपने के एक बहुत ही भरपूर वातावरण मिलता है और बहुत अधिक बीमारियां फैलती हैं। तो उनमें जो भी टीकाकरण है इस मौसम में लगने वाले, जो मैंने आपको नाम बताए, उनके टीके आप अवश्य लगवा लें। और खान पान का विशेष ध्यान रखें, पशु को गर्मी से हीट स्ट्रोक से कैसे बचाना है उसका ध्यान रखें। और इसके अलावा यदि कोई उसमें पार्टिकुलर कोई समस्या आती है तो उसके लिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलें और उसका इलाज कराएं। हाँ, एक बिंदु और है, पशुओं में इस मौसम में एक्टोपैरासाइट्स की प्रॉब्लम बहुत अधिक हो जाती है, बाह्य परजीवी, उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे टिक्स, किलनी वगैरह हो जाती हैं, तो उसके लिए आप अपने पशु चिकित्सक से मिलकर और उसके बाह्य परजीवियों के लिए जो दवाई आती है साइपरमेथ्रिन वगैरह, उसका 2% घोल जो है वो ऊपर से लगाया जाता है, तो बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए उसका प्रयोग करें। और पेट के कीड़े हो जाते हैं तो पेट के कीड़ों के लिए 3-4 महीने पे एक बार दवा दे देनी चाहिए, और इस समय गर्मी के मौसम में और अधिक बरसात आएगी तो संभावना रहती है पेट में कीड़े होने की, तो उसके लिए भी आप उसको डिवर्मिंग टैबलेट्स जो हैं वो खिला दें।
8: इन तमाम बातों का ध्यान रखकर पशुपालक न सिर्फ पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रख सकेंगे बल्कि उनसे बेहतर दूध उत्पादन भी लेते रहेंगे।
12: पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गोपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू ब्लैक वाटर के रोग रोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पायका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का उपयोग करें।
3: ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जिसपे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे किसान से जो गेहूं की अलग अलग विधि से बुआई करके गेहूं की अच्छी पैदावार ले रहे हैं और इसके साथ ही पानी की बचत भी कर रहे हैं। कैसे, ये जानने के लिए चलते हैं राजस्थान के जिला करौली।
8: हमारे देश में रबी की प्रमुख फसल है। इसकी बेहतर उपज लेने के लिए किसान अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते आए हैं, जिससे उतनी ही भूमि में बढ़िया पैदावार ली जा सके। हम गेहूं उगाने के कई तरीकों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको जिन कामयाब किसान से मिलवाने जा रहे हैं वो एक अलग ही विधि का प्रयोग कर रहे हैं। क्या है वो विधि, आइए जानते हैं। गेहूं की बाली को छू कर देख रहे ये है किसान शिवचरण मीणा, जो इस साल अपनी गेहूं की फसल को देख कर काफी खुश है। वजह भी साफ है, सीमित जगह, सीमित संसाधन और कम पानी में बढ़िया पैदावार, ऐसे में किसान का खुश होना लाजमी है। लेकिन शिवचरण ने ऐसा क्या किया जो उनकी पैदावार अपने इलाके में सबसे अच्छी हुई, जबकि राजस्थान की मिट्टी में खेती करना सामान्य खेती की तुलना में काफी कठिन है। लेकिन शिवचरण जी ने पहले समस्या को समझा और फिर समाधान निकाला। सबसे पहले जानते हैं उनकी मिट्टी की कहानी उन्हीं की जुबानी।
13: मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा खेत है बहुत क्षारीय था, और इस क्षारीयता को कैसे खत्म किया जाए इसके लिए हम बहुत सोच विचार किया। फिर किसान डीडी किसान चैनल के माध्यम से हमें मालूम चला कि खेती को कैसे सुधारा जा सकता है। कुछ कृषि अधिकारियों से हमने सहायता ली तो हमने देखा कि जमीन का सबसे पहले वाटर लेवल होना जरूरी है। तो हमने अपने जॉन डियर का वाटर लेवलर मशीन को खरीदा, उससे खरीदने के बाद इस खेत को वाटर लेवल किया, और वाटर लेवल करने के बाद में हमने इसमें देसी खाद और सरसों का डीकम्पोज करके उसका जो डंठल थे उसको इसमें मिलाया। उसके बाद हमने इसमें करीब 18 इंची गहरी एमबी प्लाउ से जोत निकाली। उससे जमीन की जो सख्त मिट्टी है नीचे 6 इंची के नीचे, जिसको कभी किसान जोतता नहीं है, उसको तोड़ने के बाद में और मिट्टी पलट होने से इसमें पानी सोर्सिंग के लिए जमीन को बहुत अच्छा हो गया, जिससे ये अच्छे से पानी सोख सकती थी और उसमें फसल का गड़ना ये खत्म हो गया। उसके बाद हमने इसमें रोटावेटर लगाया, और रोटावेटर लगाने के बाद जमीन एकदम भुरभुरा करके गेहूं के लिए हमने इसको तैयार किया। जो भी खाद हमने इसमें मिलाना था वो हमने मिट्टी में पहले ही मिला लिया था रोटावेटर से पहले।
8: शिवचरण जी ने इस तरह से तो खेत को उपजाऊ बना लिया, लेकिन समस्याएं अभी भी दस्तक दे रही थी, और वो थी पानी की कमी। इसके लिए उन्होंने गेहूं की खेती की नई तकनीक का इस्तेमाल किया, और वो थी बेड बनाकर गेहूं की बुआई करना। ये देखने और सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इसके परिणाम काफी सुखद रहे। तो आइए जानते हैं इस विधि के बारे में।
13: हमने बेड प्लांटर मशीन से इसमें 1 बीघा में 7 किलो बीज डाला है, और उस 7 किलो बीज शुरू में तो बहुत कम लगा, लेकिन उसके बाद जब हमने इसमें दूसरा पानी 20 दिन बाद दिया तब वो अपना रिजल्ट दिखाने लगा। जिसके बाद हमने इसमें कैल्शियम नाइट्रेट पर बीघा में 1 थैली 5 किलो की और गंधक 5 किलो इसमें डाला। उसके बाद खेत में कोई पौधे का एकदम विकास बहुत शानदार रहा, क्योंकि बेड पर होने के कारण इसमें क्या होता है कि पानी जड़ें जो पानी की तरफ ज्यादा जाती हैं, क्योंकि पानी इसके जड़ों में रहता है नीचे लाइन में और पेड़ ऊपर रहता है, तो पानी हमेशा पेड़ की जो जड़ें हैं वो पानी की तरफ दौड़ती हैं। तो पानी हम इसमें नीचे दे रहे हैं तो इसकी वजह से जड़ों का विकास ज्यादा रहा और उससे पौधे का सर्वांगीय विकास हुआ।
8: आइए अब जान लेते हैं इस तकनीक से होने वाले फायदों के बारे में।
13: मैंने 33 किलो बीज की बचत करी, उसके बाद पानी इसमें आधे से भी कम लगता है, क्योंकि 80% जमीन पे तो बेड बन जाते हैं, अब 20% नालियां रहती हैं, तो 20% नालियों में ही पानी देना है, जिससे अपन को सिर्फ उसमें नमी ही मिलती है पौधे के लिए, और पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, पौधे को सिर्फ नमी की जरूरत होती है। और इस पौधे की ये खासियत और है, ये बेड पर होने के कारण ये गेहूं कभी प्रकृति प्रकोप या हवा से गिरेगा नहीं, और गिरेगा नहीं तो अपन को इसकी पूरी फसल मिलेगी। अगर पौधे अपन गेहूं तो अच्छे पैदा भी कर लेते हैं लोग नॉर्मल भी किसान, लेकिन प्रकृति प्रकोप और हवा से उसको बचाया नहीं जा सकता अच्छा गेहूं, और गिरने के बाद गेहूं का प्रोडक्शन 50% से कम रह जाता है। तो सरकार भी यही बताती है कि पानी बचाना चाहिए खेती में, और पानी बचाएंगे तो वाटर लेवल है जमीन का वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, और खेती अपन कम पानी से ड्रिप के द्वारा या फवारे के द्वारा या बेड प्लांटर मशीन के द्वारा बहुत कम पानी में अधिक उपज ले सकते हैं। इसमें हमने कोई क्यारी नहीं बनाई, ये वाटर लेवल होने के कारण इसको हमने कतारों में लाइनों में बांट दिया खेत को, 3-4 लाइनों में, जिससे हम 2-2 घंटे में पानी का स्रोत बदल देते हैं। बाकी इसमें रात भर हमें खड़े रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसान रात में भी मोड़ता है पानी, दिन में भी मोड़ता है, तो उसको रात में बड़ी समस्या होती है सर्दियों में। तो इस विधि से करने से हम बहुत संतुष्ट रहे हैं, और हमारा प्रोडक्शन बाकी गेहूं से 20-25% ज्यादा रहेगा, जिससे हमें साहब कम से कम आधा खर्चा आया है नॉर्मल पद्धति से गेहूं में और पानी में, और प्रोडक्शन हमारा 25% ज्यादा रहा है, यानी इसमें गेहूं 20 से 22 क्विंटल के लगभग बैठेगा, और नॉर्मल पद्धति से 12 से 15 क्विंटल से ज्यादा नहीं बैठ सकता।
8: विशेषज्ञों से ली गई सलाह से शिवचरण जी के खेतों की तस्वीर बदल रही है, उनकी इस कामयाबी के साक्षी बने बाकी किसान भी अब इसे अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं।
6: अब तक देखा होगा कि बुवाई की पद्धति अलग अलग होती है, एक किसान छिड़कने वाली विधि से बुवाई करता है, दूसरा सीड ड्रिल से बुवाई करता है, लेकिन एक ये जो पद्धति है अभी अपनाई है, ये नई टेक्नोलॉजी और अच्छी जो उन्नत किसान है वो इस पद्धति को अपना रहे हैं, इसको कहते हैं बेड कल्टीवेशन। बेड कल्टीवेशन में हमें काफी फायदा है, इसके अंदर बीज की मात्रा बहुत कम लगती है, पानी की मात्रा हमें बहुत कम उपयोग में लेनी पड़ती है, और फसल बहुत ही अच्छी इसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी इसके अंदर फसल उपजाऊ होती है। मैं किसान साथियों से ये निवेदन करता हूं कि पुरानी टेक्निक से हटके और ये टेक्निक अपनाएं। ये जो फसल की है, ये शिवचरण मीना जी ने अपने खेत में नई टेक्नोलॉजी से ये फसल का उत्पादन किया है। मैं इससे प्रभावित होकर सब किसानों को ये बताना चाहता हूं कि एक बार देखें और ये ही तरीका आप अपनी खेती में अपनाएं, जिससे कि आपको पैसे की, खाद की, पानी की और बीज की सारी बचत हो और उपज इसमें अच्छी आप प्राप्त करें।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपनी बातें।

0: भाइयों बहनों, जब भी बात आती है कृषि के क्षेत्र की तो इसमें बदलाव के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं ताकि हमारे पर्यावरण को स्वस्थ बनाया जा सके, देश की मिट्टी को भी मजबूत बनाया जा सके और साथ ही साथ हमारे किसानों की उन्नति हो सके, हमारे किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि हो सके। बता दें, इसी दिशा में एक प्रणाली की शुरुआत की गई है जिसे नाम दिया गया है अक्षय कृषि। जी हाँ, अक्षय कृषि परिवार द्वारा इस प्रणाली की शुरुआत की गई है जिससे आप जान सकते हैं कि हमारे देश की मिट्टी को हम स्वस्थ कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर मिट्टी स्वस्थ होगी तो हमें अच्छी गुणवत्ता वाली उपज भी मिलेगी, लागत में भी कमी आएगी। तो क्या है ये अक्षय कृषि, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में।
1: ऋग्वेद में कहा गया है, कृषि मित कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्य मानः, अर्थात कृषि करो और सम्मान के साथ धन अर्जित करो। ये शब्द किसानों के लिए कितने सुखद हैं। कृषि शुरू से ही हमारी सभ्यता की समृद्धि का प्रतीक रही है जिससे धरती का, मानव जीवन का और धरा पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों का पोषण होता आया है। लेकिन खेती की कुछ बदलती तकनीकों ने प्राकृतिक खेती को हाशिए पर ला दिया है। एक बार फिर हमें जागरूक होने की जरूरत है, प्राकृतिक खेती के महत्व को समझने की जरूरत है और इसके लिए सबसे पहला कदम है लोगों में जन चेतना लाना। इन्हीं उद्देश्यों को पाने के लिए अक्षय कृषि अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत 2 मई को उपराष्ट्रपति जी ने नई दिल्ली में अपने निवास पर अक्षय कृषि परिवार द्वारा भूमि सुपोषण और संरक्षण पर चलाए गए राष्ट्रव्यापी अभियान पर आधारित पुस्तक भूमि सुपोषण का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास विषयों से संबंधित प्रकाशनों का अनुवाद हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में होना चाहिए जिससे आम किसान उनसे लाभान्वित हो सके। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि देश के एक बड़े भाग में विशेषकर पश्चिमी और दक्कन के क्षेत्र में मिट्टी के सूख कर रेतीली बनना गंभीर चिंता व्यक्त का विषय है। एक अनुमान के अनुसार हर साल प्रति हेक्टेयर 15 टन मिट्टी नष्ट हो रही है। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे फिर से स्वस्थ बनाया जाए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के अधिक प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है और उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। देश के अधिकांश राज्यों में ज्यादातर भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, साथ ही फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है। भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की नमी कम हो गई है जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहे हैं। नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों की कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है।

0: ऐसे में मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गौमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है, बल्कि भूमि की जैविक संरचना को बचाया जा सकता है।
1: विगत वर्ष 2021 में भूमि के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया आपका यह अभियान सर्वदा अभिनंदनीय है। मुझे यह जानकर विशेष संतोष है कि आपके इस अभियान में 33 राष्ट्रीय संगठन भी जुड़े, अपने देश के 20 राज्यों में लगभग 18,000 स्थानों तक पहुंचकर वह इस महत्वपूर्ण विषय पर जागरूकता पैदा की। राष्ट्र हित में आपके प्रयास सफल हो, मेरे हार्दिक शुभकामना। देश के एक बड़ा भाग में विशेषकर पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्र में मिट्टी सूख कर रेतली बन रही है। फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है, भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की समी कम हो गई है, जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहा है। नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों का कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है। कृषि में रसायनों का प्रयोग से भूमि पर दुष्प्रभाव एक वैश्विक समस्या है, इट ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम। एक अनुमान के अनुसार विश्व भर में अगले 20 वर्षों में अनाज की पैदावार 40% कम हो चुकी होगी और आबादी लगभग 10 बिलियन तक बढ़ चुकी होगी। भारत भी इस आपदा से अछूता ना रहेगा। दिस इज ए रियल वार्निंग टू ऑल ऑफ अस। इसलिए आवश्यक है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे पुनः स्वस्थ बनाया जाए, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के नगन प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है, उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गौमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है, बल्कि भूमि के जैविक संरचना को बचाई जा सकते हैं।
0: इस दौरान उपराष्ट्रपति ने आग्रह किया कि कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अनुसंधान संस्थानों के पाठ्यक्रमों में प्राकृतिक जैविक खेती को शामिल किया जाए।
1: हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार सभी सदियों तक कृषि केंद्रित रहा है। भारतीय शास्त्र में कहा गया है, जीव जीवनम कृषि, अर्थात जीव का जीवन ही कृषि पर आधारित है। कृषि हमारा संस्कृति प्रकृति से अलग नहीं हो सकती। भारतीय परंपरा में कृषि और ग्रामीण व्यवस्था के ऊपर प्रामाणिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जैसे पराशर कृति कृषि पराशर, पराशर तंत्र, सुरपाल कृत वृक्षायुर्वेद, मलयालम में परशुराम कृत कृषि गीता, स्वारंगधर की उपवन विनोद आदि। मैं अपेक्षा करता हूं कि कृषि शोध संस्थान प्राकृत कृषि के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करेंगे और किसानों को हमारी प्राचीन पद्धतियों से परिचित कराएंगे। कृषि विश्वविद्यालय जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करें और कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और उद्यमिता को प्रोत्साहित करें। सतत और स्थायी विकास के लिए प्राकृतिक कृषि जरूरी है।
0: प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के सकारात्मक प्रयासों से जुड़े मनोज सोलंकी जी का कहना है कि हम अपने इस प्रयास और पुस्तक के माध्यम से ज्यादा किसानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे धरती को बड़े पैमाने पर संभालने की जिम्मेदारी उठाई जाए।
2: भारतीय कृषि का मूल जो चिंतन है, उस चिंतन को आधार को लेके जो प्राकृतिक कृषि पूरे देश में बढ़ोतरी हो, उसके लिए अक्षय कृषि परिवार जो कार्य कर रहा है, उसका एक भाग रूप आज भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान का ये एक विशेष संघ का जो विमोचन है वो आज हुआ है। और इस विशेषांक में भारत का जो भूमि के प्रति जो समझ है वो, और किसानों की जो प्राकृतिक खेती की जो समझ है वो जो प्रकृति के आधार से है, उस सब को सम्मिलित करते हुए पूरा बुक का लेखन हुआ है। और लेखन के आधार से ये बुक है, ये विषय को पूरे भारत में प्रारंभ होगा। और ये बुक का जो कंटेंट है वो कई लोगों के इस कार्य को आगे ले जाने के लिए कार्य आएगा, काम में आएगा। और जो कृषक जो इस कृषि करना चाहते हैं उसको भी इसमें से काफी मार्गदर्शन मिलेगा। और आने वाले समय में प्राकृतिक कृषि आगे ले जाने के लिए जो कई साइंटिस्ट, कृषक साइंटिस्ट सब लगे हैं, उसको एक बल मिलेगा और ये विषय धीरे धीरे आगे बढ़े, उसके लिए ये भूमि, ये जो पुस्तक का जो विमोचन हुआ है वो काफी प्रभावशाली रहेगा।
3: अक्षय कृषि परिवार की ओर से भूमि सुपोषण विशेषांक का विमोचन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री वेंकैया नायडू जी के करकमलों द्वारा यहाँ पर किया गया है। उपराष्ट्रपति भवन में यह कार्यक्रम दिल्ली में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आदरणीय कृषि मंत्री जी, पूज्य स्वामी काड़ सिद्धेश्वर जी, मनोज भाई सोलंकी और माननीय भागैया जी उपस्थित थे। यह विशेषांक की कल्पना गत 5 वर्ष से चल रहे प्रयासों के फलस्वरूप यह विशेषांक की निर्मिति हुई है। सर्वप्रथम अक्षय कृषि परिवार ने विभिन्न लोगों के, मुख्यतः किसानों के, जो प्राकृतिक कृषि के साथ कार्य कर रहे हैं, ऐसे किसानों के अनुभवों के प्रलेखन का कार्य प्रारंभ किया। साथ साथ में प्राकृतिक कृषि से जुड़े वैज्ञानिक, सामाजिक संस्थाएं, शोधकर्ता, ऐसे सभी लोगों के साथ भारत में वार्तालाप किया। इस वार्तालाप में जो ध्यान में आया कि भारत में कृषि भूमि का क्षरण अत्यंत तेज गति से हो रहा है, इसको ध्यान में रखकर भूमि सुपोषण एवं संरक्षण जन अभियान किया गया। और उस जन अभियान के अगला चरण यह भूमि सुपोषण का विशेषांक निर्मिति यह हुआ। इस विशेषांक में 17 आर्टिकल्स समाहित किए गए हैं। आज विद्यमान में भूमि को से लेकर जो एक सॉइल की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, हम लोग भूमि के एक समग्र संकल्पना को इस बार चर्चा में लाना प्रारंभ करना चाहते हैं। भूमि सुपोषण यह एक समग्र संकल्पना है, इसको हम लोगों ने भारत के अथर्ववेद के भूमि सूक्त से लेकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा चल रहे प्रयासों का सम्मेलन इसमें किया गया है। हमारा परंपरागत ज्ञान, हमारे कृषकों के पास जो मौखिक ज्ञान की परंपरा है, वो भारत के उत्सव और त्योहार, भारत के देशज बीज, भारत के बैल आधारित यंत्र, ऐसे समग्र लोगों, समग्र विषयों को सम्मिलित करते हुए यह विशेषांक की निर्मिति की गई है।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 FM।
5: आप रेडियो आपड़ी बातें।
6: पशुपालन शुरू से ही किसानों की समृद्धि का प्रतीक रहा है। पहले के समय में जिसके पास जितने ज्यादा पशु वो उतना बड़ा किसान या पशुपालक माना जाता था। हालांकि आज तस्वीर कुछ अलग है। आज समृद्धि का आकलन पशु की नस्ल से होता है। समय के साथ पशुपालन के तौर तरीके बदल रहे हैं। किसान कम पशुधन में भी बेहतर मुनाफा कमाने के तरीके आजमा रहे हैं। बेहतर उत्पादन के लिए पशु के आहार, आवास से लेकर उन्हें सही चिकित्सा व्यवस्था दी जा रही है, क्योंकि अब दुधारू पशु केवल दूध के लिए नहीं है बल्कि दूध से बने उत्पाद जैसे घी, मक्खन, दही, पनीर, खोया, मिल्क पाउडर बनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं।
7: पशुपालन क्षेत्र में अगर देखते हैं तो नॉर्मल हम जब बात करते हैं, आय की बात करते हैं, वो नॉर्मल उत्पाद जो होता है जैसे दूध होता है, जैसे अंडे होते हैं, अगर मुर्गी रखते हैं तो अंडे होते हैं, और मुर्गियों से भी मांस का उत्पादन हो सकता है और भेड़ बकरियों से भी मांस का उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, ये तो नॉर्मल आपका इनकम पे आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वैल्यू एडिशन का भी एक चीज होता है। जैसे हम नॉर्मल दूध बेचते हैं, वो अगर 40 या 50 रुपए में बेच रहे हैं, पर अगर उस दूध से हम पनीर बना लेते हैं या घी बना लेते हैं या खोआ बना लेते हैं या इवन दही बना लेते हैं या श्रीखंड बना लेते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा इनकम बढ़ जाती है, जो कि भारत सरकार की कुछ योजनाएं के तहत इसका भी जिक्र किया गया है। जैसे हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, एक स्कीम भारत सरकार की तरफ चला रही है, भारत सरकार चला रही है, जो कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत ये स्कीम है। तो उसमें ये दिया जाता है, कोई अगर फार्मर हो या फार्मर इंडिविजुअल फार्मर हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से हो, SHG से हो या ग्रुप 8 के कंपनीज हो, तो ये सारे चीजें हैं, अगर इन कैटेगरीज में होते हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, जैसे वो खोआ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं या उसके साथ दही या और डेयरी प्रोसेसिंग आइसक्रीम बना सकते हैं।
6: साथ ही इनके गोबर और मूत्र से जैविक खाद और कीटनाशक बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई संस्थाएं गोबर का इस्तेमाल कई तरह की सजावटी चीजें बनाने में कर रही है, जिसने मुनाफे को कई गुना कर दिया है। वहीं अन्य पशुओं जैसे भेड़ बकरी को, जिन्हें मांस के लिए पाला जाता था, इनसे मिलने वाले मांस को प्रोसेस करके भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। इस तरह के कदम में सरकार भी सहयोग कर रही है।
7: मीट एंड मीट प्रोसेसिंग की बात करें, जैसे हम नॉर्मल मांस खाते हैं, मांस के साथ अगर वो कुछ एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे सॉसेज हो गया, नगेट्स हो गए, अगर ये सब बना सकते हैं उसके लिए, वो प्रोसेसिंग के लिए भी इस स्कीम के तहत प्रोविजन रखा गया है। कोई भी अगर उद्यमी इससे इस स्कीम के जरिए जुड़ता है तो उसको जो भी लोन कंपोनेंट है, वो लोन कंपोनेंट पे हम भारत सरकार की तरफ से 3% की छूट देते हैं।
6: इस तरह किसान पशुपालन में संभावनाओं को पहचान कर सही दिशा में प्रयास करके बेहतर लाभ कमा सकते हैं।
8: किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे पशुपालक कैलेंडर पर। तो वर्तमान समय में किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने हैं जिससे आपके पशु स्वस्थ रह सके, जानने के लिए आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर।
6: अधिक गर्मी से पशुओं में लू लगना, जल एवं लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पशुओं को धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए इसके लिए लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दें या पानी में मिलाकर दें। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे इसके लिए पशु को संतुलित आहार दें। पशुओं के आहार में गेहूं का चोकर और जौ की मात्रा बढ़ाएं। इस माह में भेड़ के ऊन कतरने का काम कर लें।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।
8: खेती किसानी के क्षेत्र में किसान भाइयों बहनों, प्रतिदिन कुछ नया हो रहा है, हमारे किसान कुछ अलग कर रहे हैं, युवा भी खेती किसानी की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और अपनी कड़ी मेहनत से बता दें आपको सफल भी हो रहे हैं। आज के हमारे सफल किसान भी कुछ ऐसे ही हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर।
6: कुछ उत्पाद उस स्थान की पहचान बन जाते हैं जहां वो पैदा किए जाते हैं और उनमें मौजूद पोषक तत्व उन्हें हमारे आहार का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन देश के हर कोने में इस तरह के उत्पाद आसानी से मिल सके और किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिल सके, इसके लिए युवा वर्ग आगे आ रहा है और अपने छोटे छोटे उद्यमों से अन्य सारी बाधाओं को दूर कर रहा है। ऐसे ही एक उद्यमी से हमारी मुलाकात हुई दिल्ली के आहार मेले में, जहां वो अमल फार्म के नाम से कई उत्पाद बेच रहे हैं, जिसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग यानी GI टैग पा चुकी उपज भी शामिल है। उनके उत्पादों की लिस्ट तो वैसे लंबी है, लेकिन उनमें खास है काला नमक चावल, मिथिलांचल मखाना, काजू, मसाले, दालें, सत्तू। भास्कर बताते हैं कि उनके उत्पादों की पैकिंग में एक खास बात है और वो ये है कि हर उत्पाद के पैकेट के पीछे एक QR कोड दिया गया है, जिसको स्कैन करने से उत्पाद के बारे में ये जानकारी मिल जाती है। किसान का नाम, उत्पाद किस स्थान का है, फसल के बारे में जानकारी, अमल फार्म की इस पहल से हम उन किसानों को भी जान पाएंगे जो खेत में पसीना बहाकर उन फसलों को बनाए रख रहे हैं, जो खास पहचान बन चुके हैं। आज का युवा डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके अपने उत्पाद को सुलभ बाजार उपलब्ध करा पा रहे हैं। ऐसे में अमल फार्म से प्रेरणा लेकर किसान और युवा वर्ग दोनों लाभ ले सकते हैं।
4: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से जो बातचीत हुई उसको सुना और जाना किस तरीके से हमारे जो सफल किसान थे उन्होंने कितनी अच्छी बातचीत बताई है, किस तरीके से गेहूं की नई नई तकनीकी से हम अपनी खेती को कर सकते हैं। चूंकि हम अगर झाबुआ जिले की बात करें तो झाबुआ जिले में पथरीला इलाका है, हम एक बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इस पर अपनी कृषि विस्तार अधिकारी से सलाह ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ साथ ही हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। नमस्कार।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।

0: गीत संगीत की इस महकती हुई शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त समीर, और चलिए मिलते हैं एक और उभरते हुए कलाकार से, एक नए टैलेंट से। कौन है ये, क्या है ये, इनके बारे में जानते हैं और इनके गीतों का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आपके ही आज के कलाकार प्रोग्राम को। आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है, और हम हमेशा हमारे प्रोग्राम में टैलेंट्स चूज करके लाते हैं जो आपको एक नई प्रतिभा की एहसास कराते हैं। आज जो टैलेंट हमारे साथ हैं, आज जो गायिका हमारे साथ हैं, उनकी गायकी सुनेंगे आप, उनके बारे में जानेंगे तो अमेज्ड रह जाएंगे। ये हैं मालविका श्याम जी। मालविका जी, हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय देना, आप क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं, कौन हैं आप?
1: मेरा नाम मालविका श्याम है
0: जी।
1: मैं पुणे में बॉर्न ब्रॉट अप हूँ एंड वहीं रहती हूँ। मैं एक मलयाली से मेरी मैरिज हुई है, हमारा 22 ईयर ओल्ड बेटा है। हाँ, बाय प्रोफेशन मैं एक ग्राफिक आर्टिस्ट हूँ, और अब काफी सालों से मैं एक हाउसवाइफ का वेरी फुलफिलिंग रोल अदा कर रही हूँ।
0: शानदार, आई परफेक्टली अंडरस्टैंड मैम, एक हाउस मेकर होना, एक परिवार को संभालना अपने में बहुत बड़ा काम है। कई बार लोग गलती करते हैं इस चीज को समझने में कि ठीक है ये तो छोटा मोटा काम है, लेकिन अभी आजकल सोशल मीडिया पर भी कितनी मीम्स आती हैं जहां पर ये पता चलता है कि एक होम मेकर कितनी मेहनत करती है, उसमें कितना मैनेजमेंट थॉट जाता है, कितनी क्रिएटिविटी होती है, कितना कंट्रोल चाहिए। बहुत खूब मालविका जी। तो चलिए एक प्यारा सा गीत सुनाते हैं हमारे श्रोताओं को, हमारे सुनने वालों को आपकी ही आवाज में।

0: बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा गीत। बचपन में चलते हैं मालविका जी।
1: हाँ जी,
0: आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: मैं बचपन में एक टीचर बनना चाहती थी।
0: वाओ, ओके, तो फिर उसकी तरफ आपने कुछ कदम उठाए?
1: नहीं, वैसे हम टीचर, मतलब टीचर होते ही हैं एक्चुअली हम, पर अभी मैं, मुझे लगता है टीचर फॉर्मली तो नहीं बनी, पर एक अच्छी स्टूडेंट बन गई हूँ लाइफ की।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी इंटेलिजेंट आंसर। बहुत सोच समझ के, बड़ा ही मजाक में कह रहा हूं, डिप्लोमेटिक ही सही, लेकिन जवाब आपका बिल्कुल ठीक है। यूं तो हम अपनी पूरी जिंदगी मरते दम तक स्टूडेंट बने ही रहते हैं, सीखते ही रहते हैं, और सच्चाई ये है कि जिन्होंने भी सीखना बंद किया वो तभी बूढ़े हो जाते हैं, तभी वो मौत की तरफ चल पड़ते हैं। जब तक हम सीखते हैं तब तक हम जवान रहते हैं, तब तक हम जिंदा रहते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो दोस्तों, आपने सुना, चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं मालविका जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूब। तो बचपन में अगर हम हैं तो मालविका जी, कोई ना कोई तो आपके फेवरेट टीचर रहे होंगे, कौन थे वो और क्या, किस वजह से वो आपके फेवरेट टीचर थे?
1: हाँ जी, मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब हमारी एक हिस्ट्री की टीचर थी, मिसेस पीशा रोटी उनका नाम था
0: जी।
1: तो यू नो उनका वे ऑफ टीचिंग वाज रियली फैंटास्टिक। वो लेसन शुरू करने से पहले उसका पूरा बैकग्राउंड बताती थी एंड सिनॉप्सिस भी उस चैप्टर में जो था उसका इतना अच्छे ढंग से वो पेश करती थी कि वो लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था, यू नो। एंड उनके इस वे ऑफ टीचिंग से मैं बहुत ही इम्प्रेस थी। तो मैं जब घर पे हर सब्जेक्ट का, मैंने जो सेल्फ स्टडी करते थे ना घर आके हम
0: जी,
1: तो मैं हर सब्जेक्ट को वो टेक्निक से पढ़ना शुरू किया था एंड आई यूज टू लव स्टडिंग।
0: क्या बात subject, है
1: yeah.
0: बहुत खूब। क्या नाम था उनका? I mean, नाम है उनका
1: मिसेस पीशा रोटी।
0: मिसेस
1: पीशा रोटी ऐसा ही नाम था उनका, मिसेस okay. पीशा रोटी।
0: ऑलराइट ऑलराइट, बहुत खूब बहुत खूब। दोस्तों आपने सुना कि इनकी फेवरेट टीचर कौन थी और क्यों, तो चलिए अगला गीत सुनते हैं जो मालविका जी के परमिशन से मैं उनकी इन फेवरेट टीचर को ही डेडिकेट करना चाहूंगा। चलिए सुनते हैं।

0: बहुत खूब। तो मालविका जी आगे बढ़ते हैं, आप गायिका हैं तो आपका पसंदीदा गायक तो कोई होगा, गायिका तो कोई होंगी, कौन है वो?
1: हाँ जी, बहुत सारे लोग पसंद हैं, बट अगर आप खाली एक या दो ही पूछेंगे तो लता जी एंड आशा जी।
0: ओके,
1: बिकॉज ऑफ देयर वर्सेटिलिटी एंड मास्टरी ओवर देयर आर्ट, लाइक बहुत मुझे
0: बहुत खूब
1: इंस्पायरिंग लगते हैं। या
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो चलिए एक और गीत सुनाते हैं अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को।

0: बहुत बढ़िया, अब कुछ मजे करते हैं, कुछ फन। अपनी जिंदगी में सबसे पहली खाने की चीज आपने क्या बनाई थी और वो कैसे बनी थी?
1: हाँ जी, एक बार आई रिमेम्बर, आई थिंक हम सेवेंथ में थी, तब मेरी मम्मी गई थी अपनी बहन के घर। आई थिंक हम लोग थोड़ा बड़े हुए बाद फर्स्ट टाइम वो हमको अकेला, मतलब मेरे पापा एंड हम दो सिस्टर्स को छोड़ के गई थी छुट्टियों पर। तो तब मेरे पापा ने एग की डिश बनानी सिखाई थी, सनी साइड अप, जो हम उसको ये भी कहते हैं ना, बुलजाई भी बोलते हैं।
0: जी जी जी,
1: बहुत बढ़िया बनी थी, सिंपल डिश है, मगर पहली बार किया था तो बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक लग रही थी, उसको ऐसे गिराओ पैन में, उसको ऐसे करो, तो मजा आया था। या
0: लेकिन वो अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी, ऐसा?
1: यस
0: जी हाँ। क्या बात है, क्या बात है, सुन के ही अच्छा लगा कि वो कितनी टेस्टी बनी होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके का एक प्यारा सा गीत सुनते हैं मालविका जी की ही आवाज में।

0: मालविका जी, आपको और बेहतर समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी हॉबीज के बारे में हमें बताइए ना। जब भी आपको वक्त मिलता है तो क्या करना पसंद करती हैं आप?
1: हॉबी मेरी सिंगिंग, दैट्स माय पैशन आल्सो। या तो मैं पूरा दिन भी गा सकती हूँ, जैसे ही अपने काम वाम खत्म हो जाते हैं तो आई लिसन टू म्यूजिक एंड सॉन्ग मैं सीखने के हिसाब से सुनती हूँ। पहले मैं एंजॉयमेंट के लिए सुनती थी, पर काफ़ी सालों से सीखने के हिसाब से, तो सॉन्ग को के हर एस्पेक्ट को सुन के उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना, यू नो, अपनी गायकी में कैसे लाना, वो ये चीज़ें मेरी हॉबी हैं। या
0: गाने के अलावा, म्यूजिक के अलावा, संगीत के अलावा कोई हॉबी है आपकी?
1: यस, मुझे डांस भी अच्छा लगता था, बट ड्यू टू सम स्पाइन इश्यूज वो मैं डिसकंटिन्यू, अब मैं नहीं डांस कर पाती हूँ। आई ऑल्सो लाइक टू मेक ज्वेलरी, पर वो भी बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज, वो बैठ के वो करना वो अभी पॉसिबल नहीं। सो अभी तो मैं फुल फ्लेश पैशन मेरा सिंगिंग, आई कैन परस्यू चलते फिरते भी।
0: ओके, अमेजिंग, बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया बात। तो चलिए एक और गीत सुनवाते हैं हमारे सुनने वालों को।

0: और अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं वो बिल्कुल मजेदार है, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी थिंकिंग को देखने के लिए, परखने के लिए नहीं, देखने के लिए हम ये सवाल कर रहे हैं आपसे कि अगर आपको 24 घंटों के लिए गायब कर दिया जाए, मतलब आप गायब हो जाएं, तो उन 24 घंटों में क्या क्या करेंगे आप?
1: हाँ जी, 24 घंटे गायब हो जाऊं तो मैं एक्चुअली एक ही चीज करना चाहूंगी. आशा जी हैं, श्रेया घोषाल हैं, सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह, ये जो सिंगर्स हैं इनके रियाज को मैं सुनना चाहूंगी. वो जो क्योंकि वैसे तो मौका नहीं मिलता है ऐसे रियाज प्रॉपर उनका जो डेली रियाज करते हैं.
0: जी, आई
1: वुड लव टू लिसन टू हाउ दे डू द रियाज. या
0: ओके, तो मैं बहुत ही पोलाइटली सजेस्ट करूंगा कि आप उनके घर चले जाएं. जब गायब होंगे तो आपको कोई रोकेगा भी नहीं, आराम से उनके सामने बैठिए, तब सुनिएगा.
1: एब्सोल्युटली,
0: तब आप उनको देख भी पाएंगे, उनको सुन भी पाएंगे.
1: यस,
0: अमेजिंग, बहुत खूब दोस्तों आपने सुना. तो चलिए एक गीत भी सुनते हैं.

0: बहुत बढ़िया मालविका जी, आपकी जिंदगी में सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि अकॉम्प्लिशमेंट आज तक की डेट में क्या रहा है?
1: एक्चुअली काफी फुलफिलमेंट मोमेंट्स बोल सकती हूँ रहे हैं लाइफ में, पर लाइक एक सुपर ड्रामेटिक लाइक यस आई डिड इट जैसा जो मोमेंट होता है
0: जी.
1: ये कॉलेज टाइम का बता सकती हूँ, काफी ड्रामेटिक था. तो मैं सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए मैंने कराटे क्लासेस ज्वाइन किए थे.
0: ओके.
1: तो या तो हम लोग स्टेट लेवल चैंपियनशिप में खेल रहे थे, तो हम बेल्ट वाइज काफी जूनियर थे, हमारी पूरी टीम लाइक एक ही लेवल में थे. एंड हमारी पूरी टीम बहुत स्किल्ड भी थी इवन दो हम लोग जूनियर लेवल पे थे. तो जब स्पारिंग के कॉम्पिटिशन शुरू हुए, दैट इज जो फाइट्स होते हैं, फाइटिंग कॉम्पिटिशन, तो एक टीम थी जिनमें बहुत सीनियर बेल्ट के लोगों को हमारे लेवल के बच्चों के, मतलब जो किड्स थे हमारे लेवल के लोगों के साथ खेलने पर उतारा था, लेकिन उन्होंने टीचर ने, तो इट वाज अ चीटिंग, या इट वाज अ चीटिंग गन. तो ये हमारी टीचर को समझ में आया था, बट सब पता था, बट सम हाउ आई डोंट नो व्हाट पॉलिटिक्स इट वाज, मैं तो छोटी थी, मैं नहीं जानती थी, पर अलाउड हो गया था वो. एंड हमारे टीम के एक्चुअली सब लोग एक एक करके सब आउट होते जा रहे थे. मेरा टर्न आने तक लाइक मैं सबका ये ऑब्जर्व करके सम हाउ आई हैड, मतलब मेरा फोकस मैंने बनाया था, एंड मैं 5 राउंड्स जीती थी. एंड वो 5 राउंड्स के बाद मैंने अपनी टीम के लिए गोल्ड मेडल जीता था.
0: ओह माय गॉड.
1: बट या मुझे काफी चोट भी आई थी, एकदम जैसे फिल्मी स्टाइल में वो सब मैचेस हुई थी. बट वो जो स्टार्ट टू सी माय टीचर एंड लाइक यू नो माय टीम सो हैप्पी, इट वाज लाइक
0: क्या बात है. काश, हाउ आई विश मैं आपसे रिक्वेस्ट कर पाता कि आपकी अगर वो बाउट्स की उस फाइट की हम लोग वीडियो देख पाते तो शायद हम लोग एक लाइव मूवी देख पाते. क्या बात. दैट्स अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग, दैट्स रियली फैंटास्टिक. बहुत खूब. तो दोस्तों आपने सुना, तो चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं मालविका जी की ही आवाज में.

0: बहुत खूब। एक और फन क्वेश्चन, एक और मजेदार क्वेश्चन, क्रिएटिव। अगर आपको मौका मिले तो अंतरिक्ष से आए हुए किसी प्राणी से, किसी एलियन से मिलना चाहेंगी आप, और क्या पूछेंगी उससे?
1: हाँ, एलियन है। एवेंजर्स करके जो मूवी है उसमें लोकी करके कैरेक्टर है,
0: मुझे
1: बहुत ही पसंद आए। एंड जिस ढंग से उन्होंने उस मूवी में उसको उनको पेश किया उनका कैरेक्टर, तो मैं उनसे मिलना चाहूंगी बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी भी सिचुएशन में अपने माइंड को कूल रखते हैं।
0: wow.
1: फिर शैतानी में भी उनके एक प्यारापन होता है, एंड ही इज वेरी ह्यूमरस। तो पूछना तो मैं पता नहीं क्या चाहूंगी, वो मुझे नहीं समझ में आता, पर मैं उनके साथ रहना चाहूंगी एंड देखूंगी कि वो किस ढंग से उनका मतलब यू नो किस ढंग से वो सब चीजें डील करते हैं, उनका नजरिया, वो somehow I would like to experience that in his presence.
0: Okay, okay, fantastic. Loki the demigod. क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो दोस्तों आपने सुना, एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं मालविका जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूब। अब ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन भी हो सकता है और मैं फिर भी आपसे गुजारिश करूंगा कि इसका जवाब जरूर दें। आपके जीवन में आज तक की डेट में सबसे अच्छा तोहफा आपको क्या मिला, गिफ्ट आपको क्या मिला?
1: मेरे लिए सबसे प्रेशियस गिफ्ट है मेरी लाइफ, मेरे माता पिता ने मुझे दी है। एंड इस लाइफ के कारण मैं इतने सारे एक्सपीरियंसेस ले चुकी हूँ एंड ग्रोथ हो चुकी है विद दोज एक्सपीरियंसेस, लाइक वेरी थैंकफुल या टू गॉड माय पेरेंट्स।
0: ओके ओके, अमेजिंग, फैंटास्टिक। दोस्तों आपने सुना, तो चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुन लें।

0: और अब हम उस अपने प्रोग्राम के उस जगह पर आ गए हैं मालविका जी, जब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कोई मैसेज दीजिए ना।
1: जी, सुनने वालों से कहूंगी कि हमने माइंडफुली एंड रिस्पॉन्सिबली हम लाइफ जिए, खुद के लिए और दूसरों के भी लिए। एंड बहुत शुक्रिया आप सबने मुझे सुना, राज जी, समीर जी, आपका, रेडियो टंटिया, सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी फॉर दिस, इस मौके के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर मीना को थैंक यू, बिकॉज उन्होंने एनकरेज किया मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हर।
0: अमेजिंग, थैंक यू सो मच डॉक्टर मीना, एंड थैंक यू सो मच मालविका जी, आप आए हमारे प्रोग्राम में, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत की, आपके बारे में हमने जाना, आपके गीत सुने, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: थैंक यू समीर जी, थैंक यू।
0: बेहद शानदार गायकी, बेहद शानदार टैलेंट, एक और हसीन संगीत और गीत से भरी हुई शाम के लिए कल फिर हाजिर हो जाऊंगा एक नए टैलेंट के साथ, सुनना ना भूलिएगा।

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें।

0: ये लीजिए दोस्तों, एक और बहुत ही प्यारा मासूम सा सौंधा सौंधा, जहां से मिट्टी की खुशबू उठती है, ऐसा प्रोग्राम आज के कलाकार का लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। और आज जो टैलेंट हमारे साथ हैं, जो सिंगर हमारे साथ हैं, उनका स्वागत करते हुए आपके सामने उनको इंट्रोड्यूस करता हूं, वो है राजीव जी। बाकी जैसा मैं हमेशा करता हूं, कलाकार, गायक, संगीतकार, सिंगर अपने बारे में खुद आपसे बताते हैं, आपसे बात करते हैं, तो समहाउ आई फील उसका मजा ही कुछ और होता है। तो राजीव जी आइए ना, हमारी पूरी आज के कलाकार फैमिली से मिलिए, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कौन हैं आप, भला कहाँ हैं आप?
1: जी सर जी, थैंक यू वेरी मच सर। मेरा नाम राजीव पांडे है, आई एम फ्रॉम जबलपुर मध्य प्रदेश, बेसिकली फ्रॉम दिस प्लेस ओनली। एंड आई डिड बीएससी इन मैथ्स फैकल्टी इन ईयर ऑफ 86-87। देन आई हैव स्टार्टेड माय करियर 1 year इन ऑटोमोबाइल्स with telco, then I switch over to pharmaceuticals, and I worked in pharmaceuticals for 19 years even. Then from pharmaceuticals to insurance, I was there in Max Life Insurance for 9 years. Then after, sir, my wife Ratna Pandey, she is an entrepreneur, she is running her kindergarten school. I have 2 kids, my daughter Mokshita Pandey, she is working in IT company there in Pune. My son Manas is working in again a IT company in Bangalore. So we are 4 in my family, and my wife Ratna and myself, हम एक छोटा सा स्कूल चलाते हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप मिले आप राजीव पांडे जी से, शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को राजीव जी के ही गाए हुए इस गीत से, आइए ना लुत्फ उठाते हैं।

0: बहुत खूबसूरत। राजीव जी मुझे ये बताइए, जिस वक्त आप छोटे बच्चे थे, स्कूल जाते थे, उस वक्त किसी को तो आपने देखा होगा, कोई रोल मॉडल आपने बनाया होगा, आप उस वक्त क्या बनना चाहते थे कि मैं बड़ा होके ये बनूंगा? क्या इच्छाएं थी आपकी, क्या सपने थे?
1: सर सच एग्जैक्टली बहुत कुछ अच्छा याद नहीं है उस समय का, बट यस डेफिनेटली मेरे मदर एंड फादर बोथ एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे। माय फादर वाज अ प्रिंसिपल देयर इन वन स्कूल एंड मेरी मदर भी टीचर थी। हम लोग कुछ छह भाई बहन हैं। तो जब मैं छोटा था तो मैं अपने मेरे फादर बहुत अच्छे सिंगर थे, इज नो मोर नाउ, एंड मैंने अपने फादर को गाते हुए सुना। ही वॉज अ वेरी गुड वायलिनिस्ट ऑल्सो, मैंने उनको वायलिन बजाते हुए सुना। तो मुझे उस समय लगता था, मैं बहुत छोटा था, कि मैं भी अपने पापा जैसा गाऊंगा। एंड बाकी उसके अलावा एज सच उस समय कोई ऐसा कोई बहुत अर्ली एज में कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं थी। तो मैं कहूंगा रोल मॉडल मेरे फादर ही थे, जो मेरे सामने थे, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ।
0: बहुत बढ़िया, दैट्स रियली ट्रू। ऑफ कोर्स ज्यादातर ऐसा ही होता है दोस्तों, हम लोग अपने परिवार में अपने पिताजी से या अपनी माताजी से प्रभावित होकर कुछ तय करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और उसमें कुछ भी गलत भी नहीं है। आफ्टर ऑल वो ही हमारे रोल मॉडल होते हैं, सबसे पहले तो उंगली पकड़ के उन्होंने ही तो हमें चलाया था। बहुत सुंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हुए राजीव जी की ही प्यारी सी आवाज में एक और गीत का आनंद लीजिए, फिर हम वापस आते हैं राजीव जी के पास।

0: राजीव भाई, अब गानों की बात करते हैं, संगीत की, गीत की, म्यूजिक की। कौन सा गाना गाने में आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? मुझे पता है आप छूटते ही कहेंगे मुझे सारे गाने पसंद है, मुझे सारे गाने गाने में मजा आता है, लेकिन मेरे भाई फिर भी एक गाना तो आपको अंदर से कहीं दिल में बहुत तहे दिल से पसंद होगा, जिसको आप बार बार गुनगुनाना चाहते हैं, कौन सा गीत है वो?
1: जी सर, एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत अर्ली एज से अपने फादर को गाते हुए सुना, एंड ही वाज अ वेरी गुड सिंगर ऑफ मुकेश। वो मुकेश जी के बहुत गाने गाया करते थे, तो उन्हीं के मुंह से मैंने सुना हुआ था सुहानी चांदनी रातें मुझे सोने नहीं देती
0: जी,
1: हमारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। तो मैं मुकेश जी के गानों का बड़ा कायल हूँ और अभी भी मैं मुकेश साहब को बहुत ज्यादा गाता हूँ। वैसे तो सभी सिंगर्स के गाने गाता हूँ मैं, किशोरदा के, रफी जी के, अभी आशा भोसले जी का देहावसान हुआ तो उनके गाने बहुत मैंने अभी पिछले 4-5 दिनों में गाए। सो म्यूजिक इज इट्स अ बिग पैशन फॉर मी। तो वही मैंने बताया, मुकेश जी मुझे बहुत पसंद है, तो उनका वो गाना मुझे बहुत ही ज्यादा दिल के करीब है।
0: ऑलराइट, सो क्या हमारे लिए बस एक लाइन जरा सा गुनगुना देंगे?

बाखूब, क्या बात है, ब्यूटीफुल। तो दोस्तों चलिए ना आगे बढ़ते हुए एक प्यारा से गीत का आनंद उठाएं।

0: बहुत सुंदर। राजीव जी, कभी स्टूडियो में जाकर रिकॉर्डिंग करने का अवसर मिला, कोई मौका मिला, कभी हुई ऐसी रिकॉर्डिंग आपने की?
1: नहीं सर, एज सच मेरा अपना रिकॉर्डिंग का तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं।
0: ओके।
1: एक बार स्टूडियो में मैं गया था अपने फादर ही के साथ, उनकी एक रिकॉर्डिंग थी लॉन्ग बैक, अराउंड 30-35 ईयर्स बैक
0: जी,
1: वो मुझे याद है। बट हाँ, मेरा अपना कोई ऐसा लाइव स्टूडियो रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं हुआ है।
0: ऑलराइट। क्योंकि ये सवाल और ये मोटिवेशन या फिर इस तरीके का इंस्टिगेशन मैं हर कलाकार के साथ जरूर करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके की आपकी गायकी है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाना आपका कर्तव्य है। हम आपके और प्यारे प्यारे गानों के इंतजार में हैं, आप हमें अपने गानों से दूर नहीं रख सकते साहब, तो इसलिए जरूर जाइए, किसी स्टूडियो में जाइए, स्टूडियो में एक बार जाकर रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए।
1: या डेफिनेटली आई ट्राई। मुझे लाइव म्यूजिक में अभी सिंगिंग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है
0: जी,
1: बट डेफिनेटली आई ट्राई। मुझे बहुत ज्यादा सिंगिंग जो पसंद है, तो एक वो आयाम है जो छूटा हुआ है
0: जी,
1: उसे मैं पूरा करूंगा।
0: That's a point. कई बार होता है कि कोई आपको रिक्वेस्ट कर दे, पुश कर दे, तो एक नई राह मिल जाती है।
1: या डेफिनेटली, वही मैं बोला, आज समीर जी ने मुझे ये चीज पूछी और बहुत समय से मेरे दिमाग में भी है।
0: ब्यूटीफुल,
1: तो मैं बहुत जल्दी उस चीज को पूरा करने की कोशिश करूंगा।
0: डबल मौका हो गया साहब, चलिए।
1: यस।
0: दोस्तों, हम इंतजार करेंगे, बहुत जल्द हमें राजीव जी के बहुत ही प्यारे प्यारे गीत स्टूडियो में रिकॉर्ड किए हुए सुनाई देंगे। तब तक आइए ना इस गीत का आनंद उठाते हैं।

0: बहुत खूब, बहुत सुंदर। राजीव भाई मुझे ये बताइए, इतने सारे गीत हैं मुकेश के ही हैं, आपने कहा आप मुकेश के मुरीद हैं, कोई भी गाना जो आप गाने के लिए तय करते हैं कि ऑल राइट इस गाने को मुझे गाना है, उसको चूज कैसे करते हैं आप? उसकी लिरिक्स की वजह से, उसकी मेलोडीज, उसका म्यूजिक, या फिर सिंगर, या फिर सिचुएशन, रोमांटिक, दुख भरा, मतलब हाउ, कैसे चूज करते हो आप सॉन्ग?
1: जी सर, एक्चुअली जैसे कि मैं मुकेश साहब का बहुत बड़ा मुरीद हूँ
0: जी,
1: और आई थिंक उनके गाने गाने के लिए मुझे ज्यादा शायद जाके ये चेक भी नहीं करना पड़ता कि उनके उनके सॉन्ग्स कैसे गाते हैं,
0: okay.
1: उनके अंतराज कैसे गाए जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बचपन से करीब करीब सभी नहीं तो अराउंड 60-70% सॉन्ग्स उनके सुने होंगे, जो शायद मैं स्टार्ट करते ही उसको उसकी लय पकड़ लेता हूँ, उसके स्वरों को समझ जाता हूँ। और उसके अलावा सर, फ्रॉम द एज ऑफ 17-18 मैंने आई हैव स्टार्टेड लिसनिंग जगजीत जी।
0: ओके,
1: मेरे फादर ने मुझे 17-18 साल की उम्र में एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर ला के दिया था, जो कि उनके फ्रेंड ने उनको गिफ्ट किया था, और उसमें एक कैसेट उन्होंने मुझे दिया था, एंड दैट कैसेट वाज अनफॉरगेटेबल्स। एंड दैट वाज द ईयर यू कैन से 18 साल की उम्र से मैंने जब जगजीत साहब को सुनना चालू किया, तो मैं फिर उनका एक कहना चाहिए मुरीद हो गया। ही इज माय बिलोवेड इन सिंगिंग। मुकेश जी के बाद यदि मैं सबसे ज्यादा किसी को गाता हूँ, सबसे ज्यादा किसी को सुनता हूँ, पसंद करता हूँ, वो हमारे जगजीत जी हैं। तो जैसा आपने कहा कि एक्चुअली मैं जो सॉन्ग सेलेक्ट करता हूँ, मुकेश जी, जगजीत जी या बाकी हमारे और जो सिंगर्स हैं, तो रोमांटिक एंड सैड सॉन्ग्स डेफिनेटली आई लाइक टू सिंग। फास्ट सॉन्ग्स में गा लेता हूँ, बट नॉर्मली फास्ट सॉन्ग्स मेरी फर्स्ट चॉइस के नहीं होते हैं। मैं ये जो प्रसुकून वाले जो गाने हैं, गजल्स होती हैं जगजीत जी की, खान साहब की, मेहंदी अहसन खान साहब की, इनकी गजल्स गाता हूँ। और मैंने बहुत रिकॉर्डिंग्स की हुई हैं, आई हैव अराउंड 4,500 सॉन्ग्स रिकॉर्डेड,
0: ओके,
1: इंक्लूडिंग ऑल द सिंगर्स। या एक्चुअली आई एम बेसिकली स्टार मेकर, सो मेरी जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो मेरे कवर्स हैं, वो स्टार मेकर में ही हैं
0: जी,
1: और मैंने करीब करीब सभी सिंगर्स को ऑलमोस्ट गाया हुआ है, बट डेफिनेटली उसमें सबसे ज्यादा गाने जगजीत जी के और मुकेश जी के हैं।
0: जी, आई गेट यू पॉइंट, आई परफेक्टली अंडरस्टैंड। ये कुछ ऐसे रोल मॉडल्स हैं जिनसे हम लोग दूर रह ही नहीं सकते। बहुत खूब, चलिए दोस्तों फिर आइए प्यार से एक और बहुत ही प्यारा सा गीत का आनंद उठाते हैं, राजीव जी की ही प्यारी सी आवाज में।

0: रिश्तेदारों ने, भीड़ ने आपको घेर लिया होगा कि हमें एक गाना सुनाइए, ये सुनाइए, वो सुनाइए, उस चीज का एक्सपीरियंस बताइए, बिना माइक, बिना म्यूजिक क्या एक्सपीरियंस होता है वो?
1: बहुत बहुत एक्सपीरियंस है सर। आप ये मान के चले कि पिछले 6-7 सालों की बात करें, उसके पहले तो शायद बहुत बार ऐसा होता था कि यार कुछ सुना दो
0: जी,
1: यार मुकेश का वो गाना सुना दो, तो फिर क्योंकि वो दिमाग में बसा हुआ है और इतने सालों से गाता आ रहा हूं तो शायद म्यूजिक की जरूरत नहीं पड़ती और कोशिश रहती है कि शायद उस गाने को हूबहू हम निभा पाए। सो ऐसे बहुत से मौके मिले सर और कोशिश की उसको पूरा करने की।
0: ऑलराइट, तो कैसा महसूस होता है उस वक्त? भीड़ चारों तरफ होती है, कुछ डर लगता है, कुछ नर्वसनेस होती है, कैसा फील होता है?
1: नहीं सर, नर्वसनेस ऐसा सच नहीं होती, क्योंकि मैं मोस्टली जब गाने गाता हूं तो शायद मेरी आंखें बंद हो जाती हैं और मेरा जो चेहरा है वो थोड़ा ऊपर साइड चला जाता है।
0: ओके,
1: तो फिर और ऐसा नहीं, बीच बीच में हम यदि भीड़ को देखते भी हैं और उनसे इंटरेक्ट भी करते हैं, उनकी आई कॉन्टेक्ट भी करते हैं, तो हम चूंकि खोए हुए होते हैं गाने में तो ऐसी कोई नर्वसनेस एज सच आती नहीं है।
0: बहुत खूब, आई परफेक्टली अंडरस्टैंड। अपने संगीत में खो जाना, यही तो तपस्या है, यही तो मेडिटेशन है और यही तो मोहब्बत है। आइए दोस्तों, संगीत के इस मोहब्बत को हम भी स्वीकार करें और एक प्यारा सा गीत सुने राजीव जी की आवाज में।

0: राजीव भाई, आगे बढ़ते हुए मुझे ये बताइए, कब किसने आपको ये कहा कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए, सीखनी चाहिए? किसने मोटिवेट किया आपको? कौन थे वो? कौन है वो?
1: जी एक्चुअली मेरी वाइफ एक्चुअली जब हमारी शादी हुई, मैं जगजीत सिंह का बहुत बड़ा फला फैन हुआ करता था
0: जी
1: उसी समय। और जब मेरी मैरिज फिक्स हुई, जब मुझे पता चला कि मेरी वाइफ शी इज ऑल्सो हार्ड कोर फैन ऑफ जगजीत चित्रा जी,
0: क्या बात
1: तो
0: है।
1: वो तो सोने पे सुहागा हो गया। एंड शी इज द वन जो कि शी इज अ बिग क्रिटिक ऑफ माई सिंगिंग, जो कि एक्सपेक्ट करती है कि इफ यू आर सिंगिंग तो आप कोशिश करें कि उसको कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, किस पिच पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आप कोशिश करें कि उसको बेटर से बेटर करते जाएं। तो शी इज माई वाइफ रत्ना, जिन्होंने कि मुझे बहुत अच्छा गाने के बाद भी शायद कभी बोला होगा कि नहीं इसको एक बार और रिकॉर्ड करो, ये ऐसा नहीं है, थोड़ा ऐसा है। तो उनको भी बहुत ज्यादा संगीत का शौक है, गाने सुनने का, एंड काफी नॉलेज रखते हैं वो। फिर मेरे फादर के सामने जब मैं उनके गाने गाया करता था, उनके अपने स्वरचित जो सॉन्ग्स थे, जो अपना म्यूजिक वगैरह वो सब देख के हारमोनियम पे जब वो सुनाया करते थे, तो जब मैं उनके गाने गाता था तो वो भी बोलते थे कि नहीं एक काम करो, इसको ऐसे नहीं ऐसे गाना है। तो ऐसा मैंने संगीत की कोई शिक्षा तो नहीं ली, सुन सुन के सीखा हूँ, और थोड़ा बहुत जो करेक्शंस है वो मेरे फादर ने और मेरी वाइफ ने किया।
0: ओके, ऑलराइट ऑलराइट, आई गेट योर पॉइंट। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, हमें बहुत ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ज्यादातर कोई ना कोई
1: जी
0: एक ऐसा एंकर, कोई ना कोई एक ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर हमारे अगल बगल ही मौजूद होता है। बस वो हमको इशारा करता है और हम चल पड़ते
1: जी
0: हैं इस प्यार इस सफर पर। आइए इस सफर का लुत्फ उठाइए, एक प्यारा सा गीत और सुनिए, जो हम डेडिकेट कर रहे हैं राजीव जी की धर्मपत्नी को, जिन्होंने इनको मोटिवेट किया।

0: बहुत खूब, बहुत बढ़िया। चलिए, संगीत तो है ही हमारे भी रगों में, आपके भी रगों में, थोड़ा सा आपको और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। आपकी डेफिनेशन के हिसाब से, आपके समझ के हिसाब से, आपकी जिंदगी के अनुभव के हिसाब से, सफलता पाने के लिए, चलिए एक बार को गायकी में ही बात कर लें, गायकी में सफलता पाने के लिए क्या चीज आपको लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है जो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए?
1: हाँ सर, एक्चुअली यदि हमको गाने का शौक है, हमारा पैशन है, यदि गाना सिंगिंग हमारी हॉबी है, तो फिर वो ऐसा होता है कि हम कुछ भी नहीं गा सकते। हमको हमारी, सबसे पहले हमारी आवाज कैसी है, हमारी आवाज कैसे गानों को सूट करती है, उन गानों की एक फहरिश्त बना के उनको कोशिश करना चाहिए कि हम पहले किस प्रकार के गाने हम पसंद करते हैं। यदि हमको सॉन्ग्स पसंद है, यदि हमारी आवाज उसको सूट करती है, तो डेफिनेटली विल गो टू सिंग अ फास्ट सॉन्ग्स। जहां तक जैसे मेरी बात है, मेरी जहां तक मैं अपनी आवाज को समझता था कि एक सुकून, एक ठहराव वाला वाली गायकी मुझे बहुत पसंद है, जैसा कि मैंने आपको बताया मुकेश जी का और जगजीत जी का
0: जी।
1: तो मेरा यह मानना है कि हमको हमारे अपनी एक हमारी लाइकिंग होती है किस प्रकार के गाने हम गा सकते हैं, फिर हमको उसको चूज करना चाहिए। और लिरिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, शब्दों का उच्चारण सिंगिंग में बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ी बात उन शब्दों को जो संगीत में पिरोया गया है उस संगीत की समझ हमको जरूरी है, कहाँ से हमको स्टार्ट करना है, कहाँ हमको अपने सुर को बदलना है, कहाँ हमें लो सुर की जरूरत है, कहाँ हमें हाई नोट्स की जरूरत है, गाने की कैसी अदायगी है, वो सब चीजों को ध्यान में रख के यदि हम अपने गाने को गाएं तो शायद उससे अच्छा कुछ ना होगा। क्योंकि हम यदि गा रहे होते हैं तो ये बात जरूरी है कि हमको जो सुन रहे होते हैं उनको हमारी गायकी का एक आनंद आना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: तभी हमारे हमारे पैशन का, हमारी गायकी का एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जिसको बोलते हैं।
0: करेक्ट, वेरी वेरी करेक्ट सर, बिल्कुल सही फरमाया सर आपने। तो दोस्तों, इन सारी चीजों का ख्याल रखिए। हर चीज मैं मानता हूं, संगीत हुई या कोई भी कला है, वो एक पूजा होती है, एक डेडिकेशन होता है। फन उसके बाद आता है जब आपकी प्रतिभा निखर उठती है, फन तब आता है। तो फन पहले नहीं, पहले तो बहुत प्यार से उसकी तपस्या। चलिए एक प्यारे से गीत को सुने जो राजीव जी ने हम लोगों के लिए तैयार किया।

0: बहुत सुंदर, अमेजिंग। राजीव भाई, अब हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह आ गए जहां पर मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि जो हमारे आज के कलाकार के परिवार वाले हैं, हमारे श्रोता हैं, आपके फैंस हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, उन सबको आप इस प्रोग्राम के माध्यम से, अपनी गायकी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे?
1: जी हाँ, मेरा ये मानना है हमारे हमारे अपने नियर डियर्स के लिए, हमारे जानने वालों के लिए, उनके लिए जो शायद हमको सुन रहे होंगे अभी, कि आप जो भी काम करें उसको तहे दिल से निभाएं। आपको उसका क्या रिजल्ट आएगा इससे मतलब नहीं है, बट आप जो करने जा रहे हैं उसको तहे दिल से करें, बेस्ट नॉलेज के साथ करें, नॉलेज नहीं है तो गेन करें, और जो भी चीज करें बिना डरे हुए, बिना झिझक के साथ करें। एक कॉन्फिडेंस लाना कोई भी काम करने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। उससे एक बात तो पक्की होती है कि हमें 100% नहीं बट 80-90% रिजल्ट्स तो हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मिलते हैं। रही सिंगिंग की बात, तो संगीत एक ऐसी दुनिया है और गायकी, यदि जो गायक कलाकार हैं हमारे परिचित, हमारे जानने पहचानने वाले, जो भी गाएं अच्छा गाएं, और सबसे बड़ी चीज वो चीज गाएं जो आपको खुद को पसंद हो
0: जी,
1: जिसका लुत्फ आप खुद उठा पाएं। आप जब उस चीज को एंजॉय कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको सुनने वाले भी उसको एंजॉय करेंगे।
0: वेरी ट्रू, क्या बात कही है, बहुत खूब। तो दोस्तों, इसी विचार से, इसी थॉट प्रोसेस से इस प्रोग्राम को सुनते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। संगीत आपके साथ हमेशा हमेशा है। आज हमने सुना राजीव जी को। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत आनंद आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी, आपका भी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड इतनी देर में कुछ समझ ही नहीं आया कि कुछ कितनी अच्छी अच्छी बातें हुई, कितनी अच्छी अच्छी चीजें आपने मुझसे पूछी, और शायद एक बार में बैठ के बहुत सी चीजें याद की और आपको बताई मैंने जो लाइफ में हुआ।
0: वाओ,
1: सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन। थैंक यू
0: सर।

दोस्तों, आज के कलाकार के इस सुरीले से सफर में बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है आज की ये महफिल आपके दिल में एक मीठी याद छोड़ गई होगी। दोस्तों, कुछ गीत खत्म नहीं होते, बस दिलों में बस जाते हैं और जब भी याद आते हैं तो फिर से मुस्कुराहट बिखेर जाते हैं। तो हम फिर आएंगे नए सुरों और नए कलाकारों के साथ। तब तक अपने दिल को बस यूं ही गुनगुनाने दीजिए।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमस्कार दोस्तों, दिव्य दर्शन का एक और बहुत ही पवित्र और बहुत ही नया एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं। आज हमारे साथ केवीएस रमन साहब हैं। केवीएस साहब पहले भी हमारे दिव्य दर्शन में शरीक हो चुके हैं, पार्टिसिपेट कर चुके हैं। उन्होंने हमें बताया था आध्यात्म के बारे में, रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में। आज हम फिर रमन साहब का स्वागत करते हैं और कुछ और दिव्य दर्शन के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। रमन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। तो हमारे सुनने वालों के समक्ष आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में?
1: नमस्कार समीर भाई साहब, मैं आपको और आपके पूरे टीम मेंबर्स को और आपका जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं उन सबको मैं तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे दोबारा आपने एक शिरकत करने का मौका दे दिया है, और सुनने वालों को मेरी ओर से प्रणाम।
0: बहुत बहुत प्रणाम है सर, बहुत साधुवाद। जाहिर सी बात है, जो प्रोग्राम पहले आपके साथ हुआ था, हमारे सुनने वालों में से बहुत सारे लोगों ने इस बारे में रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की, गुजारिश की, डिमांड की कि हम लोग कुछ और बातचीत रमन साहब से करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनको आपसे बातचीत करके कुछ समझ आया होगा, कुछ रिलेट कर पाए होंगे उसी वजह से। तो चलिए रमन साहब, आज हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं सनातन धर्म की। मैं पर्सनली खुद भी सनातन धर्म को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूं कि प्रिसाइसली एग्जैक्टली सच में ये है क्या चीज। तो रमन साहब मुझे ये बताइए, सनातन धर्म वास्तव में क्या है? क्या ये सिर्फ एक धर्म है या शायद एक जीवन शैली? मतलब क्या है धर्म, इसके बारे में हम क्या समझें?
1: वैसे तो ये इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। ये सारी चीज, जैसे पहले भी हम लोगों ने अध्यात्म के बारे में बात की और आज हम सनातन धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये सब वास्ट चीजें हैं और हम लोग अपने जो सीमित एक नॉलेज के हिसाब से हम उसको एक दूसरे से बांटने की कोशिश कर रहे हैं जी। इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। सनातन धर्म को पहले समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है
0: जी।
1: जनरली सर, धर्म को हम लोग प्राय उसको हम रिलीजन के साथ जोड़ देते हैं। धर्म एक्चुअली, मेरे विचार से धर्म एक गाइड है या एक मार्गदर्शक कह सकते हैं। इट्स अ गाइड। और सनातन की अगर बात करें तो सनातन का मतलब है जो शाश्वत है, जो मिटने वाली चीज नहीं है, और वो सत्य है, और क्योंकि सत्य कभी मिटता नहीं है
0: जी।
1: डीपली कहें तो धर्म का अर्थ राइटियसनेस है। इस लिहाज से हम धर्म को एक मार्ग से, सही मार्ग से जीने का एक तरीका या शैली कह सकते हैं, और इन्हीं की वजह से हम ये निश्चय रूप से कह सकते हैं कि सनातन धर्म को जीवन का एक ट्रू एटर्नल लॉ ऐसा मान सकते हैं।
0: करेक्ट।
1: और ये एक हमें एक सही दिशा देता है और सही ढंग से जीवन व्यतीत करने का एक हमको मार्ग दिखाता है।
0: ओके सो इस चीज को समझना जाहिर से बात है रमन जी की जरूरी हो जाता है कि धर्म और धर्म क्या चीज हुई और फिर सनातन धर्म क्या चीज हुई। तो जैसा आपने बताया कि बिल्कुल सत्य है, धर्म तो राइचियसनेस हो गया और सनातन हो गया जो हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है और जो सच है। तो जाहिर से बात है उसमें त्रुटि की या कोई डिफेक्ट की या फिर कोई गलती की गुंजाइश है ही नहीं। तो क्या ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म ये एक ही चीज है या इनमें कुछ डिफरेंस है?
1: मेरे विचार से कि हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। धर्म जो है वो एक मनुष्य का अपना बनाया हुआ एक चीज है जो अपने रोजमर्रा इसमें हम काम चलाने के लिए हम उसको धर्म एक, एक, एक सही रास्ते पे चलने का एक हम अपने अपने आप से एक बनाई हुई चीज है। और हर आदमी अपने अपने परिस्थिति और अपने अपने बर्थ और जहां वो रहता है उसके हिसाब से और कुछ चीजें वो फॉलो करता वो धर्म है। मगर सनातन धर्म अगर बोले तो ये मात्र एक मनुष्य के लिए नहीं है, ये सारे सजीव और निर्जीव पर भी ये लागू होता है। सनातन धर्म जीने का एक एक ऐसा आयाम है, हमारे अस्तित्व या अस्तित्व का ही आधार है ऐसा हम मान सकते हैं।
0: ओके।
1: चाहे वह कीड़ा हो, चाहे वो कोई छोटा से छोटा इंसेक्ट हो, पक्षी हो, जानवर हो, पौधा पेड़ पौधे हो, ये सभी सभी अपने अस्तित्व का जो संचालन करने का जो नियम है, मूलभूत जो नियम है, उसको हम सनातन धर्म कह सकते हैं। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ सनातन धर्म।
0: परफेक्ट। मतलब सीधी सी बात हमें यह समझ में आ रही कि जो एक ऐसा नियम कानून कह लीजिए, प्रोटोकॉल कह लीजिए, फॉर्मेट कह लीजिए, या एक व्यवस्था कह लीजिए, अगर बड़ी सी प्यारी सी लैंग्वेज में कहें तो इस प्रकृति की जो व्यवस्था है, वो है सनातन। ऐसा मुझे लगता है रमन सर आप कह रहे हैं, करेक्ट?
1: जी सर।
0: ओके, अमेजिंग। फिर अगर सनातन शब्द को, जैसे एक वर्ड हुआ सनातन, उसको अगर हम थोड़ा सा और बेहतर समझने की कोशिश करें, यहां तो पहले हमने ये समझा कि सनातन एक व्यवस्था है जो पूरी प्रकृति को चलाती है या पूरी प्रकृति पर लागू है। अब हम सनातन को और समझें, इस वर्ड का, इस शब्द का मीनिंग क्या होगा?
1: सनातन धर्म एक्चुअली, जैसे हम लोग सब जानते हैं, एक संस्कृत शब्द है।
0: जी।
1: इस शब्द के कई मायने, कई अर्थ हैं, जैसे फंडामेंटल ज्ञान, आई मीन तात्विक ज्ञान, स्थायी विश्वास और एक सम्माननीय व्यवस्था। इन सबको हम सनातन के एक भिन्न भिन्न, आई मीन डिफरेंट डिफरेंट मतलब निकलते हैं। लेकिन जनरली सामान्यतः धर्म को हम दो प्रकार के में बांटते हैं, जो एक है सनातन धर्म, एक वर्णाश्रम धर्म।
0: जी।
1: इन दोनों में सनातन धर्म सभी के लिए सामान्य रूप से एक आध्यात्मिक पहचान, एक स्पिरिचुअल पहचान देता है।
0: जी।
1: स्पिरिचुअल पहचान देता है। सनात एक अगर वर्णाश्रम की बात करें तो वो जीवन के परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित कर्तव्य है। सभी जीवों के अलग अलग एक उसमें डेफिनेशन उसमें आ जाता है। मगर सनातन में जैसे मेन अगर की अगर बात करें तो सभी जीवों के साथ अगर हम प्रेम दिखाना, सेवा भाव, पियटी और अच्छे कर्मों का पालन करना, कि इन इन एक आप विस्तार रूप से अगर बोले तो इसको सनातन शब्द का ये मतलब अर्थ निकलता है। जी जी
0: करेक्ट करेक्ट